0: Box with Ketan.
1: Kia ora, namaste, satrikal, assalamu alaikum, bulab ka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke, thode rainy day ke aaj ke show jiska naam hai Lunchbox Show. मेरा नाम केतन है और आप मुझे अभी से लेके 3 बजे तक मेरी आवाज सुनेंगे. इट माइट गो इन कॉफी ब्रेक एज वेल, बट डिपेंड्स यार. मैं थोड़ा रुकता हूँ या फिर कुछ ऐसा टॉपिक आता है जहाँ मुझे लगता है कि यार मुझे रुकना चाहिए, तो मैं रुक जाता हूँ. बट यस, अभी के लिए एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना लैला लैला, अमित त्रिवेदी की आवाज में. बहुत ही खूबसूरत कंपोजर भी है, बहुत बढ़िया म्यूजिक बनाते हैं और ऑफकोर्स इनके जो टेस्ट है इतना, जैसे कि यार रहमान है, उनका म्यूजिक सुनते ही लोग बता देते हैं कि किसका है, ये उन्हीं का है. वैसे अमित त्रिवेदी का भी एक ट्रेंड है जो सचमुच वो इतना रॉ और अनरिकॉर्ड है. लाइक बेसिकली ये सारे लाइव म्यूजिक ज़्यादा रिकॉर्ड करना प्रेफर करते हैं और उसी वजह से इनका जो टेस्ट है कम्प्लीटली डिफरेंट है कम्पेयर टू अदर म्यूजिशियंस. बट यस, आप इनका ये गाना सुनिए. हम बात करेंगे होम सिक रेमेडीज की. मैसेज भेजिएगा मुझे आज, देखते हैं क्या बढ़िया बढ़िया मैसेजेस आते हैं आज. सो यस, 5599 पे आप टेक्स्ट भेजिए मुझे. बात करेंगे आज होम सिक रेमेडीज की.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. और बात करते हैं अभी होम सिक रेमेडीज की. कुछ मैसेजेस मिले हैं, कुछ नहीं बहुत ही कम मिले यार. आज तो लगता है सभी एकदम ऑन पॉइंट काम कर रहे हैं और मे बी दे आर नॉट यू नो फील लाइक टेक्सटिंग मी समथिंग. सो यस, आई मीन एज अ सब्जेक्ट उनके पास शायद हो नहीं हो, बट थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मैसेज किया है. मनोज भाई आप कहते हैं, आई मिस दोज इवनिंग व्हेन द होल फैमिली वुड सिट टुगेदर वॉचिंग अ मूवी एंड नोबडी कुड एग्री ऑन व्हाट टू वॉच. फैमिली का तो पता नहीं, लेकिन अभी भी यही होता है दैट वी डोंट एग्री ऑन व्हाट वी वांट टू वॉच. तो वही है. और अभी तो हमारा जो इहान है वो थोड़ा क्या, अभी तो 6 महीने का ही है. सो वो जब बड़ा होगा फिर तो आई डोंट थिंक सो वो हमें कुछ भी देखने देगा. इट विल बी ऑल टाइम्स वो जो गाना है ना, वही चलने वाला लग रहा है मेरे को. अच्छा आप मुझे टेक्स्ट करिए, आपके घर पे कौन सा फेवरेट सॉन्ग लगता है आपके बेबीज या फिर आपके किड्स को जो सचमुच उनसे ज्यादा आपको भी याद हो गया है अब. बताइए मुझे 5599 पे. और राधिका भी मैसेज करती है, माई होम सिक रेमेडीज इज मेकिंग माई ग्रैंड मदर्स चाय रेसिपी और ऑन रेनी ऑकलैंड आफ्टरनून. One sip and it feels like I'm back in her kitchen. क्या बात है. आज वैसे बहुत ही बढ़िया मौका है बिकॉज आज बारिश के चांसेस हैं. तो आज भी आप ये आपके ग्रैंड मदर की जो चाय है, ग्रैंड मदर्स की जो रेसिपी वाली चाय, स्पेशल सीक्रेट रेसिपी, उसे आप ट्राई कर सकते हैं. और अगर आसपास ही रहते हो तो ड्रॉप सम टू मीडिया वर्क्स यार, हमें भी ड्रॉप कर दीजिए, वी विल एंजॉय एज वेल. वैसे प्रकाश भी कहते हैं, आई मिस फैमिली सेलिब्रेशन वेयर समवन वुड ऑलवेज पुल आउट एन ओल्ड फोटो एल्बम एंड एवरीवन वुड स्पेंड आवर्स लाफिंग एट द पिक्चर्स. बहुत पते की बात बोली है. वैसे ये काफ़ी बढ़िया मोमेंट भी होता है, लाइक यू नो अभी भी, एक्चुअली ये पुराना नहीं, अभी जब भी मैं इंडिया जाता हूँ अपने घर तो आई ऑलवेज आस्क यू नो पुराने फ़ोटो देखना, यू नो जो मेरी भांजी के कुछ फ़ोटोज़ पड़े हुए वहाँ पे वो लगाना, ऐसी सारी चीज़ें देखना. इतना क्यूट सा अट्रैक्टिव सा फील होता है. बट यस, मूविंग फॉरवर्ड, आप ऑफिस शाउट आउट के लिए भी टेक्स भेजिए 5599 पे, बात करेंगे उस बारे में भी. लंच बॉक्स विद केतन.
1: मुझे पसंद है लड़का.
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
3: At Woolworths, whether it's casserole or stir fry, we've got chicken for every occasion. Like our fresh chicken drumsticks on special at just $4.99 a kg. Large tray only. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
4: Say no to mold and mildew. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without DVS home ventilation. Call 0800 DVS DVS.
5: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
6: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे.
5: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
7: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड.
8: MediaWorks complaints. How can I help?
9: My kids won't shut up.
8: I'm not sure that's our problem.
9: They keep reciting lines from one of your radio ads.
8: Aw, cute.
9: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
10: What do you want, son? I want me some of that real southern chicken.
9: 28 times.

0: times.
1: So where are you now?
0: Eating chicken.
2: Advertise with MediaWorks.
0: New Zealand listens to us.
3: A story of love, memory and longing against the backdrop of the partition of India.
4: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं.
3: Director Imtiaz Ali's romantic period drama मैं वापस आऊंगा, starring Diljit Dosanjh, Nasiruddin Shah, Shalmari Nagar and Vedang Raina.
4: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता है? इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता.
3: मैं वापस आऊंगा, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
2: Ready to escape and get rewarded with Singapore Airlines? Book your getaway with special fares to destinations across Europe, Asia and beyond and receive a bonus $150 Prezi card when you book online using your MasterCard. That's an extra $150 to spend in Singapore, Thailand, Vietnam, Delhi, London and more. Escape the cold and book your 2026 getaway today at singaporeair.com. Hurry, deals end June 26. T's and C's apply.
5: Non-stop Bollywood.
6: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
5: हम playing Bollywood's biggest hits.
7: Lunchbox with Ketan.
8: हीरा लड़का है. टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
7: हम office shoutout.
9: Well, कुछ मैसेजेस भी हैं. एक छोटा हाथी घूमने गया. अच्छा, ये उन्होंने मैसेज किया है रिगार्डिंग जब मैंने पूछा कि आपके बच्चों का जो कोई ऐसा गाना चलता होगा तो कौन सा है. ये कौन सा गाना, एक छोटा हाथी घूमने गया, मेरे को सुनना पड़ेगा यार. क्या पता यहाँ भी बोले कि भाई मेरे को भी सुनना ये गाना, एक छोटा हाथी घूमने गया, किधर घूमने गया. सुनता हूँ वीडियो, उसके बाद पता पड़ेगा. बट यस, ऑफिस शाउटआउट में आपका स्वागत है. सेगमेंट में आप दो मैसेजेस मिले हैं यार. आज तो हद ही हो गई यार. आज तो मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग. ऐसा यूजली होता नहीं है कि लोग मैसेज नहीं करते हैं, बट लुक्स लाइक काफ़ी बिजी, काफ़ी प्रोडक्टिव भी आज दिन होने वाला है सभी का. तभी कम मैसेजेस कर रहे हैं या मे बी दे आर नॉट ऑन द फोन राइट नाउ. बट यस, पहला मैसेज आया अमित भाई का. केतन भाई, आई ब्रॉट हेल्दी होममेड लंच टुडे बट आफ्टर सीइंग माय कोवर्कर्स हॉट बटर चिकन माय डाइट लास्टेड एग्जैक्टली 7 मिनट्स. एक्चुअली बताऊँ, मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ, बट नॉट बटर वाला, कुछ और ही ट्राई कर रहा हूँ. एनी गेसेस, मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ अभी? लाइक इट इज़ ऑफकोर्स चिकन वाला, बट एग्जैक्टली क्या है आप मुझे बताइए 5599 पे. उसके बाद राकेश का भी मैसेज आया. वो कहते हैं, बुला केतन, माई वाइफ पैक्ड एक्स्ट्रा रोटीज दिस मॉर्निंग एंड टोल्ड मी टू शेयर. आई शेयर्ड वन एंड एट द रेस्ट माई सेल्फ. ये हुई ना बात यार. आई थिंक योर वाइफ विल बी मोर हैप्पी राइट नाउ कि भाई चलो आपने तो ज़्यादा खाया है. बट दैट्स गुड यार, दैट्स गुड. यूजली क्या होता है, लोग एक खाते हैं और बाकी शेयर कर लेते हैं, बट यहाँ पे उल्टा केस हुआ है. बट गुड ऑन यू राकेश, गुड ऑन यू. आई एम विथ यू एक्चुअली. बढ़िया साहब, बने रहिए, और भी बातें करेंगे, और भी धमाकेदार बातें करेंगे. अभी थोड़ी देर में आपके लेके आऊँगा कुछ अमेजिंग. आज के दिन का क्या हिस्ट्री है उसके बारे में बात होगी. लेकिन अभी ये जो गाना है टॉप हिट ऑफ द आर का, तुझको जीने नना, ये मैंने डाला है, अपलोड किया है ऑन मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे. आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, मैंने और अपने बैंड के साथ, जिसमें मनप्रीत भाई जिन्होंने गाना लिखा है पापा टोए टोए, वो और आयुष भाई बहुत ही अमेजिंग गिटारिस्ट है. आई ऑनेस्टली फील कि मतलब ऐसा गिटारिस्ट, टच वुड, आयुष भाई जिस तरह से और जिस कलाकारी से वो गिटार बजाते हैं, आई डोंट थिंक सो, मेरी नज़रों में, आई कुड बी रॉन्ग एज वेल ऑफकोर्स, मैंने वो नहीं कह रहा हूँ, बट मेरी नज़रों में जितने गिटारिस्ट से मैं मिला हूँ, मुझे नहीं लगता कोई उनसे बेहतर है अभी आज की तारीख में. दैट्स व्हाट आई फील, आई पर्सनली फील. कोई ऑफेंड मत होना यहाँ पे. आई एम प्रीटी श्योर आप भी बहुत अच्छा बजाते होगे अगर कोई सुन रहा मुझे गिटारिस्ट. बट दिस इज माई ऑफिसली, मैं आपसे मिला नहीं हूँ फेस टू फेस, तो दैट्स व्हाई आई कुडंट से इट. बट यस, तो हमने एक रील डाली है तुझको ही गाना, उसी पे एक कवर सॉन्ग करके हमने डाला है, तो आप उसे चेकआउट करिए. काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले हैं, 60,000-70,000 क्रॉस हो चुके हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट 70,000, बट 60,000 तो डेफिनेटली क्रॉस हो चुके हैं व्यूज़. तो आप भी मुझे प्यार दीजिए वहाँ पे, और बट अभी के लिए एंजॉय करिए तुझको बाय अरिजीत सिंह एंड सुनिधि चौहान.
5: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

Welcome back. You are listening to Lunchbox और बात करेंगे और भी चीजों की, but yes, let me remind you कि अभी पॉडकास्ट की बातें बहुत ही जोरों शोरों से, और एक नया पॉडकास्ट भी रिलीज हो चुका है रोवा ऐप पे, आप वहां जाके भी कर सकते हैं रिकॉर्ड. एक नई गेस्ट आई थी हमारे बीच जिनका नाम है निवेदिता विज, जिन्होंने थैलेसीमिया और उनके जो इम्पैक्ट है साउथ एशियन कम्युनिटी को लेके किस तरह से करता है उस पर बात की है. तो ये पॉडकास्ट सुनने के लिए आप डेफिनेटली हमें ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए. एक्चुअली काफ़ी बढ़िया पॉडकास्ट है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और क्या क्या रीज़न हो सकता है डायग्नोसिस और ये सारी चीज़ें, कैसे आप कैसे कोई जो इस चीज़ से गुजरता है कैसे वो रिकवर कर सकता है, ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी अच्छे से उन्होंने डिस्कस की है वहाँ पे. सो यस, आप हमें 5599 पे ड्राइव लिखिए ताकि आपका आपके पास फुल एक ऑडियो पॉडकास्ट पहुँच जाए. साथ में आप बिट्स एंड कन्वर्सेशन विद विजय एंड पूजा का जो ब्रेकफास्ट शो है उसके बारे में भी सुन सकते हैं. हमें BF लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए. बट यस, अभी हाल फिलहाल तो आप इन्जॉय करिए ये गाना सांसों ने, सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाज़ में. बट यस, रोवा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए अपने प्ले स्टोर ऐप स्टोर से, क्योंकि उसके थ्रू आपको बहुत ही अमेजिंग कंटेंट मिलता रहेगा.

0: सासने सोनू निगम तुलसी कुमार की आवाज में आपने गाना सुना है। तुलसी कुमार ऑफ कोर्स इफ यू डोंट नो शी इज डॉटर ऑफ गुलशन कुमार। गुलशन कुमार कौन है आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। टी सीरीज के फाउंडर थे जो अब नहीं रहे, ऑफ कोर्स 1990s में उनकी डेथ हो गई थी एक शूट आउट में, शूट आउट नहीं बोलेंगे लाइक सम डॉन वाला सीन हुआ था कुछ, आके उनको गोली मार के चले गए थे। सो अभी तक ऑफ कोर्स किसने मारा है क्या है क्या नहीं है कुछ अते पते नहीं है ज़्यादा तक, बट यस अभी भूषण कुमार इज़ द वन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ टी सीरीज़। और इफ़ यू अगेन डोंट नो, टी सीरीज़ इज़ सेकेंड नंबर यूट्यूब चैनल है इन द वर्ल्ड। जी हाँ, आफ्टर मिस्टर बीस्ट, मिस्टर बीस्ट इज राइट नाउ ऑन सब्सक्राइबर नंबर 500 मिलियन, यानी कि हाफ अ बिलियन सब्सक्राइबर है उनके पास। 8 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसमें से 500 बिलियन सब्सक्राइबर उनके पास है। वाओ, नहीं 500 मिलियन उल्टा बोल दिया, 8 बिलियन में से 500 मिलियन सब्सक्राइबर उनके पास है। उसके बाद टी सीरीज है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, उनके सब्सक्राइबर है करीबन 320 मिलियन। एक टाइम पे मेरे ख्याल से म्यूजिकली सबसे पहला चैनल बने थे जब ये 100 मिलियन क्रॉस किए थे। बट अभी जो माइलस्टोन बीस्ट मिस्टर बीस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो सचमुच कोई कभी लिस्ट में था नहीं, तो उनके लिए स्पेशली क्रिएट करना पड़ रहा है, बिकॉज इवन यूट्यूब नेवर थॉट दैट समवन विल रीच टू दैट पॉइंट। सो यस, इट इज़ अमेजिंग यार। वो खुद यूट्यूब के खुद के सब्सक्राइबर इतने नहीं है यूट्यूब के थ्रू जितने मिस्टर बीस्ट के। वाह यार, अमेजिंग। वैसे 1971 में ऑकलैंड, अभी जब हिस्ट्री और ये सब इसकी बात अचीवमेंट की बात हो ही रही है तो व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट न्यूजीलैंड एज वेल। 1971 की बात है जब ऑकलैंड न्यूजीलैंड में पॉलिनेशन पेंथर पार्टी की शुरुआत हुई थी। 6 यंग पैसिफिक आइलैंडर्स ने की थी और ये ग्रुप पैसिफिक और माओरी कम्युनिटीज के खिलाफ हो रहे रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाता था। उन्होंने एजुकेशन सपोर्ट, लीगल हेल्प और कम्युनिटी प्रोग्राम्स चलाए ताकि लोगों को एम्पावर किया जा सके। 1970s के दौरान उनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम था वो डॉन रेड्स का विरोध करना। डॉन रेड्स में पुलिस पैसिफिक आइलैंडर्स के घरों पर सुबह सुबह छापे मारती थी और उन्हें टारगेट करती थी। पॉलिनेशन पैंथर्स ने इस जो ये रेसिज्म हो रहा था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया और इक्वल राइट्स की डिमांड भी की। अमेरिकन ब्लैक पैंथर मूवमेंट से इंस्पायर होकर उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन, सोशल जस्टिस और कम्युनिटी एम्पावरमेंट को प्रमोट भी किया। आज भी उनकी लेगेसी न्यूजीलैंड में रेसिज्म के खिलाफ संघर्ष और पैसिफिका प्राइड के रूप में याद की जाती है। अमेजिंग, अमेजिंग राइट।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम 80s के रेट्रो गाने।

rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.

0: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी, जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
1: मुझे भी।
0: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
2: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: Toy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: Asia is on sale now at Flight Centre. Fly economy return to Shanghai with Air New Zealand from $1,575. Book in store or online. Please T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
2: You already share a group chat, now you can share a discount too. Get 50% off Spark group plans for 6 months when you sign up to an eligible pay monthly leader plan. New Spark Mobile customers only. T's and C's apply.
3: Lunchbox with Kethan.
4: Aisa bajaunga na ki tere kaano mein roz meri aawaz gunjegi.
5: Chutney Shots.
6: चटनी शॉट्स के इस सेगमेंट में आपका स्वागत करते हैं। वेल यस, अभी बात करते हैं फटफट से खबर की। वेल, ऑकलैंड में एलिजेड स्ट्रीट रेसिंग के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेते हुए कई बॉय रेसर्स की गाड़ियों को इंपाउंड कर लिया है। अथॉरिटीज का कहना है कि डेंजरस ड्राइविंग को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा, विच इज ग्रेट। गवर्नमेंट के एक आईटी प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 साल और 33 मिलियन डॉलर्स खर्च होने के बाद भी प्रोजेक्ट से कोई रिजल्ट नहीं मिला और मिनिस्टर को भी एलिजली मिसलीड किया गया। पॉलिटिक्स और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी खबर में लेबर पार्टी के प्रपोज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेयर कैप की कॉस्ट पर इकोनॉमिक सवाल उठ रहे हैं। एक्सपर्ट्स इनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंपैक्ट को एनालाइज कर रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज में सदर्न कैलिफोर्निया के मिलिट्री बेस पर एक B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 लोगों को डेड माना जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। ऑस्ट्रेलिया के एक इमोशनल अपडेट, सिडनी शार्क अटैक विक्टिम के परिवार ने कहा है कि वो इस ट्रेजेडी से शॉक और डिवास्टेशन में है, जहां पे उन्होंने अपने परिवार के एक व्यक्ति को खोया है बाय द शार्क अटैक। स्पोर्ट्स की दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप ओपनर के कुछ ही घंटे पहले ऑल वाइट्स की मेजर इंजरी सेटबैक लगी है। फैंस अब टीम कॉम्बिनेशन को लेकर काफी चिंतित हैं। साथ ही ऑल वाइट्स और ईरान के बीच वर्ल्ड कप क्लैश पर सबकी नजर अटकी हुई है। और बेओ प्लेंटी से एक लोकल इशू, फकताने में प्रपोज्ड न्यू बरियल चार्जेस को कुछ कम्युनिटी मेंबर्स ने नेचुरली कल्चरली सेंसिटिव बताया और जिसको लेकर डिबेट शुरू हो गई है।
3: दिल से

0: The beat of Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Throwback.
2: वेलकम बैक. चलिए आज का सवाल आपसे पूछते हैं सार में, जिसका जवाब आप मुझे 5599 पे देंगे. जी हाँ, अपने नाम के साथ आप मुझे भेजिए कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर गेटिंग होम फ्रॉम वर्क. जैसे ही आप काम खत्म करते हैं आप क्या करते हैं, जैसे घर पहुंचते हैं काम खत्म करने के बाद. जल्दी से मुझे 5599 पे बताइए. मैं बताता हूँ अपना. मैं जैसे ही घर जाता हूँ सबसे पहले तो हाथ मुंह धोता हूँ, एंड देन आई जस्ट लुक फॉर ऑफकोर्स इहान. वो जैसे अब तो खैर उसको सेंसेस भी जो है ना डेवलप हो रहे हैं, तो ही ऑल्सो नो. और जैसे वो मुझे देखता है तो वो भी एक्साइटेड हो जाता है, एंड देन उसके हाथ पांव एकदम स्पाइडरमैन की तरह कड़कड़ करते रहते हैं. बट अमेजिंग फीलिंग. सो यस, 5599 पे आप भी मुझे बताइए आप क्या करते हैं वंस यू गो बैक टू होम. यस, ऑन 5599.

0: कैप्टन
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल जान लेते हैं। आज 16 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 50% चांस है बारिश के, 0.1 mm रिकॉर्ड होगी और आज का सनसेट होगा 5:12 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: हूँ मैं आप सभी के बीच। खेड़ा नमस्ते, मेरा नाम केतन है और आपका स्वागत करता हूँ आज के इस लंच बॉक्स शो में। पर यस, अभी से लेके मैं 3 बजे तक यहाँ पे हूँ। 12 बजे से शो शुरू किया था, जो भी कनेक्टेड हैं तब से उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और न्यू जॉइनिंग के लिए आपका स्वागत है फिर से। पर ये से बने रहिए, बिकॉज एस आर में आपके लिए लंच टाइम फ्रंट लाइन की भी बातें होगी, जहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट भेजेंगे, मैं बताऊँगा कब। उसके साथ आप बॉलीवुड की भी खबर सुनेंगे, क्या नई अपडेट आया है वहाँ से, और साथ में और भी चीज़ों की बातें होगी, जैसे कि हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है, प्लस स्पोर्ट्स के अपडेट भी, बिकॉज 1 बजे मैच जो है वो शुरू होने वाला है। जी हाँ, सो यस इट इज़ एक्चुअली गोइंग बिटवीन न्यूजीलैंड, ऑल वाइट्स खेलने वाली है, बहुत ही अमेजिंग वाला होने वाला है। सो यस आप बस ट्यून इन रहिए और सुनते रहिए मुझे। जी हाँ, उन्होंने जब लास्ट मैच खेला था इससे पहले, तब 1-1 से टाई हुआ था, सो यस ड्रॉ हुआ था तब। तो बस आप कनेक्टेड रहिए, उस खबर के लिए भी आप बस हमें सुनते रहिए ताकि आप तक खबर पहुंचती रहे। बट सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्ली बिल्ली सुखवीर की आवाज़ में, ये गाना है, एंजॉय करिए।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल, काफी बढ़िया खबर लेके आया हूँ। ऑल व्हाइट्स, जी हाँ, न्यूजीलैंड फुटबॉल टीम आज अपने 2026 फीफा वर्ल्ड कप के कैंपेन का पहला मैच ईरान के खिलाफ खेल रही है। लॉस एंजलिस में ये मैच हो रहा है। मैच न्यूजीलैंड टाइम के हिसाब से 1 बजे शुरू हुआ था, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है, 15 मिनट हो चुके हैं। और ये ऑल व्हाइट्स का 16 साल बाद वर्ल्ड कप में पहला मैच है, इसीलिए फैंस में काफ़ी एक्साइटमेंट दिख रही है। वेल, मैच से पहले न्यूजीलैंड को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि मिडफील्डर मैट गॉबर्ट हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। टीम की कैप्टनसी स्ट्राइकर क्रिस वुड के पास है, जबकि ईरान की टीम को मेहदी टेरमी लीड कर रहे हैं। ग्रुप जी के दूसरे मैच में बेल्जियम और इजिप्ट ने 1-1 से ड्रॉ भी खेला, इसलिए आज का रिजल्ट दोनों टीम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वैसे फैंस और मीडिया पर नज़र काफ़ी लगाए हुए हैं अभी हाल फिलहाल, बट यस, लाइव अपडेट अगर मैं आपको बताऊं तो 9 मिनट बीत चुके हैं मैच शुरू हुए और न्यूजीलैंड ने पहला गोल दाग दिया है।

0: woohoo, kya baat hai. Well, yes, kafi attractive, kafi interesting, pura main dekh raha hu, pad raha hu. But yes, it has been amazing start. Abhi dekhte hain aage kaise jata hai. Kafi badhiya chal raha hai match. Attacking jo hai Iran ki taraf se zyada rahi hai 62% abhi tak, but still New Zealand aage hai aur all whites jo hai wo aage hai aur 0-1 se lead le li hai New Zealand ne. Ji haan, aur ye goal lagaya hai, abhi waise dikha to nahi raha hai but jaise hi mujhe pata pad jata hai then I will definitely ji haan, kuch falls aur ye se, are kya baat hai, Sarpreet Singh. नहीं, इन्होंने तो एफर्ट किया था. ओके, मैं कंफर्म करके बताता हूँ आपको कि गोल एक्चुअली किसने किया है. बट एंजॉय यार, क्या बात है.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
1: इसके पीछे हम.
0: और हाँ, साथ में आप लंच टाइम रेंट लाइन के लिए भी मुझे मैसेज भेज दीजिए 5599 पे, जहां पे बात होगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं.
3: Drive show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला.
5: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
6: अच्छा, आप दिलजीत हो?
5: आए आए बताओगे यार.
3: Drive show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yar.
8: Kyun? Kya hua?
7: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi to itne hi documents mange ki bas pooch hui mat. Ek hafta ho gaya. No response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424.
9: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
10: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
11: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे.
10: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
12: सोना संसार 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड.
13: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
14: JB Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket on the 25th of June from 5 p.m. with grand opening specials for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket, Thursday, 25th June, 5 to 9 p.m. JB, you've done it again.
15: This dry July, do something good for yourself and for others. Go alcohol-free for 31 days and raise funds for Kiwis affected by cancer. Do good, feel good. Go dry this July. Sign up now at dryjuly.co.nz.
1: Lunchbox with Ketan.
16: मुझे पसंद है लड़का.
1: हम. Lunchtime Rant Line.
0: Lunchtime Rant Line में आपका स्वागत है. सबसे पहला मैसेज आया है केतन भाई, रवि का. मनुकाओ से उन्होंने मैसेज किया है. Why do Indian parents ask us to take a day off work for things that could be done on the Saturday? ये quite common है. ये मेरे साथ भी होता है. लाइक यू नो, व्हेन आई वाज इन इंडिया एंड आई वाज वर्किंग, सो आई लाइक, कल छुट्टी ले सकता है क्या तू? मैं कहा नहीं, मैं नहीं ले सकता. बट ये साहब मुझे बताइए यहाँ पे और कितने हैं जिनके साथ भी सेम सिचुएशन क्रिएट होती है यहाँ पे। नीलम कहती हैं पवरडे से, एवरी आंटी सेज आई वोंट कीप यू लॉन्ग एंड देन टॉक फॉर 45 मिनट्स। ये तो है, ये अंकल जी भी करते हैं एक्चुअली, नॉट जस्ट आंटीज बट यस अंकल जी। अरे बेटा क्या कर रहे हैं? मैंने कहा अंकल जी बढ़िया, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चले जाना, दो मिनट रुको, वैसे भी कहाँ मिलते हो तुम, कैसे हो, क्या कर रहे हो, बस करते करते करते आधा घंटा पौन घंटा कब निकल जाता पता नहीं चलता है। बट यस नेक्स्ट मैसेज है अश्विन भाई का, वो कहते हैं फीजी इंडियन मम्स कैन समहाउ टेल हु ओपन द फ्रिज जस्ट बाय द साउंड। ओहो उसके बाद नेक्स्ट है सिमरन बॉटनी से मैसेज करती है, व्हाई डू पीपल प्रेस द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बटन 20 टाइम्स लाइक इट्स गोइंग टू चेंज फास्टर। ये मैं खुद भी करता था पहले, बट नाउ ऑफ कोर्स वी डोंट वॉक अ लॉट, जब सिटी जाते हैं तभी हमें मौका मिलता है, यूजुअली मिलता नहीं वैसे, बट यस पहले मैं करता था। हमको लगता है शायद वो बजा है, दबा नहीं दबा ऐसा, पता नहीं क्यों, मेरे को भी नहीं पता यार क्यों हम करते हैं। यहाँ पे कोई है जो जवाब देगा इस बारे में? दिनेश भाई कहते हैं ऑकलैंड ट्रैफिक इज सो बैड, माय गूगल मैप्स अराइवल टाइम फील्स मोर लाइक अ सजेशन देन अ प्रेडिक्शन। ये बात तो है, यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लिटरली कोशिश कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, और जो भी आप टाइम बताओगे कि भाई ये टाइम है इस टाइम में पहुँच जाऊँगा, वो भी मोस्टली एक्यूरेसी पे नहीं चलता है यहाँ पे, वो तो चीज़ खैर कॉमन है। बढ़िया सा क्विक अपडेट, अभी 19 मिनट हो चुके हैं और न्यूजीलैंड अभी भी 0-1 से आगे है। जी हाँ, एक गोल कर चुकी है और एलिजा उन्होंने गोल किया है न्यूजीलैंड की तरफ से। बट यस अभी और भी अटेम्प्ट होते जा रहे हैं, दिख रहा है कि न्यूजीलैंड अभी काफ़ी अटैकिंग मोड पे आ चुकी है। सो लेट्स सी, अभी अब देखिए पहले 33% अटैकिंग था बट अभी 37% हो चुका है, यानी कि 4% जो है बढ़ चुका है, जिसमें 13% जो है वो गोल की तरफ गया है।
1: लंच के मंच पे Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेलकम बैक। अभी लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। न्यूजीलैंड में एक गवर्नमेंट आईटी प्रोजेक्ट पर 7 साल और $33 मिलियन का जो खर्चा है वो किया गया है, लेकिन प्रोजेक्ट से कोई मेजरेबल रिजल्ट या बेनिफिट नहीं मिला। आखिरकार इसे नवंबर 2025 में बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस के बारे में मिनिस्टर को सही तस्वीर नहीं दिखाई गई, जिससे उन्हें मिसलीड किया गया। वेल, एजुकेशन मिनिस्टर एका स्टैनफोर्ड ने कहा है कि प्रोजेक्ट की गवर्नेंस और रिपोर्टिंग में गंभीर प्रॉब्लम थी। रिव्यू में पता चला है कि प्रोजेक्ट लगातार डिले, बढ़ते खर्च और पुअर ओवरसाइट का शिकार रहे, फिर भी वार्निंग साइन को इफेक्टिवली एड्रेस नहीं किया गया। इस केस ने गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और अपोजिशन और एक्सपर्ट्स अब ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी को लेकर काफ़ी स्ट्रांग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिमांड कर रहे हैं, ताकि टैक्स पेयर का पैसा फ्यूचर में इस तरह से वेस्ट ना हो। $33 मिलियन हो चुका है, पानी में बह गया है। That's a big amount यार। I mean, मुझे लगता है कि कुछ तो बताना चाहिए कि ये किस प्रोजेक्ट में गया है, क्या है और ऐसा क्यों हुआ है, इसकी रिकवरी कैसे होगी। There is nothing। I mean, मेरे को लगता है कि कुछ तो अकाउंटेबिलिटी और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। What do you think? आप मुझे 5599 पे इसके बारे में बता सकते हैं। Would love to hear the feedback from you guys।

0: Jenny.
1: Throwback.
2: Well, अभी की लेटेस्ट खबर है ये बॉलीवुड से कि फिल्म काला हिरन द बैटल ऑफ लेगेसी जो रिपोर्टेडली सलमान खान के ब्लैक बक केस से इंस्पायर्ड है एक नए कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है। एक्टर सोनू मिश्रा ने फिल्म छोड़ने का फैसला किया और कहा कि वो ऐसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो उनके हिसाब से सलमान खान को एक साइडेड और नेगेटिव तरीके से दिखाती हो। उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआत में वो सलमान खान से मिलते जुलते कैरेक्टर के रोल करने को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे और दो दिन शूटिंग भी करी थी, लेकिन स्क्रिप्ट और एग्रीमेंट देखने की डिमांड के बाद उन्हें प्रोजेक्ट के इरादों पर शक हुआ और उन्होंने फिल्म से अलग होने का फैसला किया। सोनू मिश्रा ने ये भी क्लेम किया है कि फिल्म मेकर्स की एक तरफा नरेटिव पेश कर रहे थे और इसी वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं किया। इसे पहले एक्टर गोविंदा नामदेव भी फिल्म मेकर्स पर मिसलीड करने का आरोप लगा चुके हैं। वैसे इस बीच सलमान खान ने भी फिल्म के खिलाफ एक्शन लिया है। उनका कहना है कि फिल्म में उनकी इमेज और पर्सनैलिटी से मिलते जुलते एलिमेंट्स बिना परमिशन के यूज किए गए हैं और इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। Wow, that's a big thing is going. जी हाँ, well, yes, ये तो थी बॉलीवुड की, बट अभी फीफा में अपडेट इज नॉट अ हैप्पी न्यूज फॉर न्यूजीलैंड। जी हाँ, एक गोल ईरान ने भी मार दिया है। 38 मिनट हो चुके हैं एंड ईरान की तरफ से भी एक गोल आ चुका है। मार्क स्टेमनिक नहीं सॉरी रेमिन रिजाइन के नाम से खिलाड़ी है, उन्होंने 32वें मिनट में एक गोल करके इक्वलाइज कर दिया है आज का स्कोर कार्ड अभी तक का हाल फिलहाल। बट यस, इट स्टिल नीड टू गो ऑन, अभी 60 मिनट और भी बाकी है। सो यस, होप कि न्यूजीलैंड फिर से बढ़त ले ले और मैच का गुड पॉइंट पे ख़त्म करें।

0: गूंजेगी। करना नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे हम रेडियो 104.26 FM पे। जी हाँ, वेल यस, अभी और भी बातें करेंगे, बट यस लेट मी गिव यू सम अपडेट ऑन द FIH हॉकी वुमेन्स नेशन कप होने जा रहा है नॉर्थ हार्बर में 15 यानी कि कल से शुरू हो चुका है, 21 जून से होने वाला है। हम इज प्राउड टू ब्रिंग यू स्टिक विद हम, आपके पास बहुत ही बड़ा चांस है जहां पे आप एक विंटेज ब्लैक स्टिक्स वुमेन को खेलते हुए देखेंगे जो डिफेंड करेंगे अपने टाइटल को घर पे यानी कि होम सॉइल पे। 8 कंट्रीज, वर्ल्ड क्लास हॉकी और एक बहुत ही बढ़िया बड़ा इंटरनेशनल हॉकी इवेंट होने जा रहा है न्यूजीलैंड में काफी सालों बाद। आप टिकट ले लीजिए hockeynz.flicket.co.nz पे जाके, या फिर आप हमें टेक्स्ट भी भेज दीजिए hockey2559 ताकि आपको डबल पास जीतने का मौका भी मिल सके। सो यस, स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग टू हम, बिकॉज यहाँ पे इस तरह के और भी मौके आएंगे। अब जाइए और सपोर्ट करिए स्टिक विथ हम। जी हाँ, hockeynz.flicket.co.nz पे जाके आप टिकट खरीद सकते हैं।
1: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग लंच बॉक्स। और अभी की लेटेस्ट खबर यह है कि न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी ने वादा किया है कि अगर वो 2026 इलेक्शन जीतती है तो अपनी प्रपोज मेडिकार्ड स्कीम के थ्रू सभी प्रेग्नेंट वुमेन को फ्री मैटरनिटी स्कैन प्रोवाइड करेगी। ये पॉलिसी हेल्थ केयर कॉस्ट को कम करने और प्रेगनेंसी केयर को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए लाई गई है। मेडिकार्ड लेबर की वाइडर हेल्थ पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें हर न्यूजीलैंडर्स को साल में 3 फ्री GP विजिट देने का वादा किया गया है। पार्टी का कहना है कि हेल्थ केयर की बढ़ती लागत की वजह से कई फैमिली ज़रूरी मेडिकल सर्विस डिले करती हैं और फ्री स्कैन से माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ आउटकम्स बेटर हो सकती हैं। लेबर लीडर क्रिस हिपकिंस और हेल्थ स्पोक्सपर्सन आयशा विरोल के मुताबिक मेडिकार्ड का मकसद लोगों को हेल्थ केयर के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि मेडिकार्ड यूज करने की सुविधा देने का है। इस प्रपोजल को इलेक्शन कैंपेन का एक मेजर हेल्थ प्रॉमिस के रूप में देखा जा रहा है। क्या लगता है आपको कि उनका जो वाइल्ड कार्ड है मेडिकार्ड का वो काम करेगा इस बार? क्या लगता है आपको, और या फिर नेशनल पार्टी ही फिर से आएगी? आपको क्या लगता है, आप मुझे 5599 पे बता सकते हैं अपने रिव्यू। बट येस, एट द सेम टाइम लेट मी जस्ट पुट सम लाइट ऑन और भी चीज़ें यहाँ पे, जहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें हो रही है। अभी फीफा का भी अपडेट है, फटाफट देख लेते हैं। 46 मिनट हो चुके हैं, बट येस अभी भी ड्रॉ की तरफ ही जा रहा है मैच, एक एक गोल के साथ। लेट्स सी क्या अपडेट आता है। बट यस, देयर इज अ इवेंट हैपनिंग ऑकलैंड, आप सभी रेडी हो जाइए एक फुल ऑन लाफ्टर एंड एंटरटेनमेंट के साथ। गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर्स स्टारिंग विद लेजेंडरी सिद्धार्थ रंडेरिया, ये आ रहे हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस देने आप सभी के सामने एक अपने ब्रांड न्यू कॉमेडी शो के साथ, जिसका नाम है गुज्जू भाई फाइंड्स हिमसेल्फ। गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर, वो खुद एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफर होता है और जो एक काफ़ी हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी लेके आता है। तो यस, एक अमेजिंग शो है ये, सिद्धार्थ रंडेरिया, गुज्जू भाईज़ प्रोडक्शन, आर नोन टू सेट ऑल आउट वेवर दे गो, अपना हाउसफुल शो ही करके आते हैं। सो यस, बिफोर इट इज़ लास्ट मिनट, आप मौका गवा दें उससे पहले ही टिकट खरीद लीजिए premierTickets.co.nz पे जाके। फ्राइडे 3 जुलाई को ये इवेंट होने जा रहा है 7:30 बजे के बाद, विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर ऑकलैंड में ये शो होगा, विच इज गोइंग टू बी अमेजिंग अमेजिंग।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
5: कौन है?
6: Hunua और Waitakere।
5: अच्छा, Hunua west में?
6: किधर है Hunua?
3: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
3: Weekdays, 6 to 10 a.m.
8: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
9: क्यों, क्या हुआ?
8: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424।
10: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.in।
11: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now with up to 50% off selected sleepyhead beds. Get 50% off Serenity

0: size. Now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
1: TradeDepot.co.nz. Get 299 deals this week only at Trade Depot. Fridge freezers, 299. Washing machines, 299. Dishwashers, 299. Ovens, 299. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
2: Beating pump prices is easy when you take a bus, and you won't even have to wait long. There are 45 bus routes around Auckland that run at least every 15 minutes from 7 a.m. to 7 p.m. 7 days a week, and a whole bunch that keep running till midnight with reduced frequency, so you can spend your money on a night out instead of just getting there. Chances are, there's a frequent or late night bus that's going your way. Check the AT Journey Planner, then just turn up and go.
3: At Kogan Mobile, we want to help Kiwis experience mobile Aussie style. That doesn't mean saying, yeah, nah, hey, go on, fly, mangala. It means texting emojis without being charged 50 cents and calling your mum without having to call your accountant first. Right now, get a 180GB yearly prepaid plan for just $240. That's 15 gigs of data per month for less than $21. So say you beauty to true Aussie value from Kogan Mobile. T's and C's apply.
4: Bollywood ke sabse bade hit gaane
5: kabhi bhi kahin bhi mast malang jo lunchbox with Ketan.
6: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
5: Iske piche
4: hum
5: skip your replay.
7: चलिए स्किप और रिप्ले के सेगमेंट में आपका स्वागत है। अभी बहुत ही बड़ा शो चल रहा है, 3 जून से शुरू हो चुका है, 20 जून तक चलने वाला, यानी कि आपके पास 4 ही दिन है, इंक्लूडिंग आज अगर देखें तो 5 दिन, 16, 17, 18, 19, 20, 5 दिन बचे हैं आपके पास। क्यू थिएटर इन ऑकलैंड में ये बलून डॉग थिएटर शो हो रहा है, आप जाइए और इन्जॉय करिए। एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में फंस जाते हैं एंड देन एक फ्रेंडशिप होती है 5 साल के बच्चे के साथ, लोनली माइग्रेंट वर्कर की, और कैसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो है या फिर ट्रुथ है वो सामने आता है। ये जो प्रोडक्शन है वो इंस्पायर्ड हुआ है बाय रविंद्रनाथ टैगोर के बीलव्ड स्टोरी काबुलीवालक से, जिसे लिखा है जेकब राजन एंड जस्टिन लेविस की, डायरेक्टर बाय जस्टिन लेविस हिमसेल्फ। 3 जून को ये होने जा रहा है, तो एक आपके पास बहुत ही बढ़िया थर्ड से एक्चुअली शुरू हो चुका है, 20 जून तक होने वाला है, बट आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है। iticket.co.nz पे जाइए और टिकट खरीद लीजिए बलून डॉग के लिए। एंड ऑफ कोर्स एनकरेज एवरीवन टू ग्रैब टिकट्स एट द अर्लीस्ट, एंड ऑफ कोर्स अगर आपने देख लिया है तो आप लोगों को बताइए और उन्हें अपना एक्सपीरियंस बताइए कि शो कैसा था और कितने मज़ेदार था। तो यस, ये चीज़ आप बताइए उन्हें और उन्हें भी मोटिवेट करिए टू बाय द टिकट एंड गो एंड एक्सपीरियंस दिस अमेजिंग एंड अनफॉरगेटेबल शो।
5: Of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। और अभी बात करते हैं एक अमेजिंग खबर की। जी हाँ, दूसरा गोल हो चुका है न्यूजीलैंड की तरफ से। दूसरा गोल होते ही एंड ऑफ कोर्स इट्स द सेम पर्सन एलिजा, उन्होंने फिर से गोल मारा है 54 मिनट पे। अभी 60 मिनट हो चुका है, 60 मिनट का गेम हो चुका है। बट यस, न्यूजीलैंड ने फिर से बढ़त ले ली है फीफा 2026 वर्ल्ड कप के पहले मैच में। अब देखते हैं आगे कैसा हो जाता है। बट यू कीप कनेक्टेड विद अस बिकॉज यहाँ पे आपको हम देते रहेंगे अपडेट। बढ़िया, उसके साथ ही एक और इवेंट होने जा रहा है, द ग्रेट कॉमेडी नाइट। जी हाँ, जहां पे ऑफ कोर्स आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव ट्रिविजन एंटरटेनमेंट लेके आ रहे हैं उन्हें एक प्योर एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे न्यूजीलैंड में पहली बार। जी हाँ, सो यस, वीआईपी जो टिकट्स हैं वो बिक चुकी है सारी। सो नाउ यू वोंट बी एबल टू गेट एनीथिंग, इसलिए मैं कहता हूँ टाइम से ले लीजिए टिकट्स, बिकॉज एक बार टाइम हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स अभी जो बचे हुए टिकट्स हैं उस पर भी आप गवाइए ना ही मौका, फट से जाइए और टिकट ले लीजिए। 18 जुलाई को ये इवेंट होने जा रहा है, विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है। bookmyevent.co.nz से आप अभी भी टिकट ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है इन गेटिंग द टिकट्स, आप 0210432720 पे कॉल कर सकते हैं जस्ट इन केस अगर प्रॉब्लम होती है तो। आफ्टर पे ऑप्शंस भी वहां पे अवेलेबल हैं। सो यस, कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव होने जा रहा है। दोनों कपिल शर्मा भी आ चुके हैं ये, एंड ऑफ कोर्स अभी तो नाम बहुत बड़ा हो चुका है इनका। सो यस, आपको ये 18 जुलाई वाला शो जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए।

0: चलिए अभी एक अपडेट मैं दे देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में कुछ एरियाज में हाउस प्राइसेस की रिकवरी और ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसने ये सवाल खड़ा किया है कि क्या न्यूजीलैंड के होम ओनर्स भी इसी तरह की रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों देशों की हाउसिंग मार्केट की सिचुएशन काफ़ी अलग है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ शहरों में हाउसिंग शॉर्टेज और पॉपुलेशन ग्रोथ प्राइसेस को सपोर्ट कर रही हैं, जबकि न्यूजीलैंड में मार्केट अभी भी रिलेवेंट फ्लैट और कॉशियस बना हुआ है। वैसे न्यूजीलैंड में एवरेज हाउस प्राइसेस अब भी अपने पीक से काफ़ी नीचे हैं। इन्फ्लेशन एडजस्ट करते वक्त टर्म्स में प्राइसेस लगभग 30% तक गिर चुकी हैं और कई रीजन्स में बायर्स के पास अभी भी ज़्यादा बार्गेनिंग पावर है। वैसे हाई हाउसिंग सप्लाई, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और इंटरेस्ट रेट्स की सिचुएशन मार्केट को स्लो कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रोथ, प्राइस ग्रोथ कुछ ऑप्टिमिज्म मिल सकती है, लेकिन न्यूजीलैंड में तेज प्राइस बूम की गारंटी नहीं है। अगर इकोनॉमिक कंडीशंस इम्प्रूव होती है तो और बायर कॉन्फिडेंस वापस आता है तो मार्केट धीरे धीरे कवर कर सकता है, लेकिन फिलहाल मार्केट को स्टेबल या साइडवे फेस में माना जा रहा है, जो फर्स्ट होम बायर के लिए रिलेटिवली अच्छा मौका हो सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया ये रिगार्डिंग दैट। काफ़ी लोगों का सवाल भी होता है कि भाई क्यों हमारी सिचुएशन वहाँ की जैसी नहीं है। सो यस, दिस इज द आंसर। एंड फ्रॉम फुटबॉल, नॉट अ ग्रेट न्यूज अगेन। दूसरा गोल ईरान ने भी कर दिया है। 68 मिनट हो चुके हैं। 64 मिनट में मोहम्मद मोहिबी ने एक और गोल किया, यानी कि अब फिर से इक्वल हो चुका है स्कोर कार्ड ईरान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच का। जी हाँ, अभी देखते हैं, अभी भी 22 मिनट बाकी हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी जस्ट सब्स्टिट्यूट भी हुआ है कॉलिन, सो लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है। बट वैसे एक सवाल है मेरा यहाँ पे आपसे, न्यूजीलैंड पहली बार कब फीचर हुई थी वर्ल्ड कप में? जी हाँ, उसका जवाब आप मुझे दे सकते हैं 5599 पे। बट यस, व्हेन डिड न्यूजीलैंड फर्स्ट फीचर एट द वर्ल्ड कप? ये सवाल है मेरा आपका फीफा की तरफ से। सो यस, 5599 पे आप इसका मुझे जवाब भेज दीजिए जल्दी से। लंच बॉक्स विद केतन। मुझे पसंद है लड़का। हाँ।
1: Ladies and gentlemen, unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के।
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
1: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: अरे बबीता, thank you so much for giving me गुरुज नंबर यार।
4: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।
6: Beating pump prices is easy when you take a bus. And with 45 Auckland Transport bus routes that run at least every 15 minutes from 7 a.m. to 7 p.m. 7 days a week, chances are there's one going your way. Check the AT Journey Planner.
7: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
8: Oh my, oh my, Bray South Road, greater than ever.
9: South Auckland's buses just became a lot better.
8: Weymouth Road, way better buses.
9: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses and more.
8: Woody, no worries. MIT, A-OK.
9: Search AT Better South Auckland Buses for details.
8: Airport, got your transport.
9: Then turn up and go.
1: Non-stop Bollywood.
10: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
11: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
10: हम
1: TikTok.
0: टेक टॉक के सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे बात करेंगे हम कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बट यस अभी जो खबर है वो एक अपडेट है फ्रॉम यूके। यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 16 साल के कम उम्र के बच्चों को मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने से रोका जाएगा। और इस प्रपोजल में टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। प्राइम मिनिस्टर कियर स्टर्मर ने इसे बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी और मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी कदम बताया है। That is so true. But yes, यहाँ पे कोई है जो मुझसे बात करना चाहेगा regarding न्यूजीलैंड should also follow the same thing or not? यहाँ के बच्चों के लिए क्या ये जरूरी है to be banned, to make it ban all the social media platform? क्या लगता है आपको? आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0800-004-866 पे और बात कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कि क्या लगता है न्यूजीलैंड में ये चीज होनी चाहिए लागू या नहीं। बढ़िया से एक ने जवाब भी दिया है, 1982 इज द राइट आंसर फॉर द वन। जो मेरा सवाल था कि न्यूजीलैंड ने पहली बार कब फीफा वर्ल्ड कप खेला था, कोई भी वर्ल्ड कप खेला था वो कब खेला था, कौन से ईयर में पहली बार, तो यस 1982 इज द राइट आंसर। बढ़िया से यहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0800-004-866 पे और बता सकते हैं दैट न्यूजीलैंड को ये चीज फॉलो करनी चाहिए या नहीं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। हाय संदी।
4: हाय केतन, कैसे हो?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए।
4: बढ़िया बढ़िया। क्या फॉलो करना चाहिए?
0: हाँ?
4: क्या फॉलो करना चाहिए?
0: ये पहला माइक एडजस्ट कर।
4: हाँ ना, ये माइक थोड़ा ऐसा हिला हुआ है।
0: आप यूजुअली क्या ये माइक यूज नहीं करते ना, इसको आपको आदत नहीं है।
4: तो या तुम क्या पूछ रहे थे, क्या फॉलो करना चाहिए?
0: यूके ने भी अनाउंस कर दिया है दैट 16 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको प्रोहिबिट करेंगे फ्रॉम द यूजिंग द सोशल मीडिया। यस,
4: ऑस्ट्रेलिया में तो ऑलरेडी हो चुका है।
0: हाँ, मेरे को एक चीज मैं थोड़ा ताज्जुब हूँ, आई डोंट नो इफ आई एम ओके टू से इट और नॉट, बट न्यूजीलैंड इज फॉलोइंग अ लॉट इन मेनी वेज, बट मुझे लगा शायद इस वे में भी फॉलो करना चाहिए था कि भाई मेरे को पर्सनल लगता है दैट यहाँ के लिए तो डेफिनेटली 16 साल से कम बच्चे के लिए। हाँ, आपको क्या लगता है?
4: मतलब मैयर्स तो होने ही चाहिए, काफ़ी चीज़ों के ऊपर होते हैं 16 साल से कम। मेरे को लगता है मे बी 16 से बेटर है 14 मे बी समथिंग लाइक दैट, क्योंकि और बाकी पता नहीं है आज।
0: मतलब
4: 14 ईयर्स के नीचे,
0: तो 16 के नीचे वही हो गया ना,
4: मतलब कि 15 या 16 साल वाले को अलाउड होना चाहिए।
0: ओ,
4: वो कहने की कोशिश कर रही हूँ।
0: ऐसा क्यों?
4: मे बी विद द वर्क या काम के रिलेटेड, काम एज इन की जो उनके प्रोजेक्ट होते हैं उनकी चीज़ों को लेके, आई एम नॉट श्योर। वैसे जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पे बता सकते हैं, बिकॉज आजकल 15-16 साल के जो हैं वो उनके प्रोजेक्ट कई बार इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे उनको सोशल मीडिया पे जाके मे बी रिसर्च करनी पड़े या कुछ अच्छा। देखना पड़े या पोस्ट करना पड़े, तो ऐसी भी चीज़ें काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी बच्चे करते हैं। सो मे बी दैट माइट अफेक्टेड, जो वो जो मुझे लगता है, बट आई एम नॉट श्योर।
0: यार ये मेरे को नहीं पता था, ये तो थैंक यू बताने के लिए। एक्चुअली कोई है यहाँ पे जो क्लेरिफाई करना चाहे,
4: जो पेरेंट है जिनके बच्चे हैं, एंड व्हाट डू यू
0: 15-16
4: व्हाट इज योर टेक ऑन दिस?
0: हाँ, आप कॉल करिए हमें,
4: या फिर ऐसा टोटली बैन होना चाहिए 16 साल के नीचे।
0: हाँ,
4: बच्चे तो कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेंगे।
0: 16 साल के नीचे भी और जो 60 साल के ऊपर उनके लिए
4: बिलो 16 एंड अबव 60,
0: ये मेरे को लगता है। क्योंकि पता क्या है, अब जैसे मेरी मम्मी होगी रिटायर्ड, ठीक है, वो इंडिया में अभी, और इंडिया की मीडिया, इंडियन मीडिया आपको पता है कैसी है, न्यूजीलैंड में कुछ भी होता है ना वो इतना बड़ा चढ़ा के करते हैं। अब जैसे थोड़े दिन पहले भूकंप आया, तो वार्निंग मिली थी न्यूजीलैंड में कि यहाँ हो सकता है सुनामी। पता नहीं मम्मी ने कहा न्यूज पढ़ ली कि सुनामी आने का खतरा है, वो जो 2006 में हुआ था। अरे मम्मी मेरे को आधी रात में मैसेज करे जा रही है, सब ठीक है वहाँ पे, सब ठीक है। मैंने कहा मम्मी हाँ क्या हो गया, मतलब मैं थोड़ा टेंशन में आ गया कि इतनी रात को इतने का कॉल, मतलब मेरे को मैसेज करे जा रही है। तो मम्मी ने बोला हाँ ये न्यूज़ है, ये देखिए क्या है। मैंने कहा मम्मी मत फॉलो करो इसलिए, और मम्मी ने भी कहाँ पढ़ा, सोशल मीडिया पे। ऐसा भी नहीं कि अब उनको नहीं पता ना कि कैसे उसको फाइंड आउट करे, बट इसलिए मैंने बोला कि 60 साल के ऊपर वालों के लिए भी बैन होना चाहिए।
4: या एट वन पॉइंट उनको समझाने की जरूरत पड़ती है कि भाई फोन से निकलो, बाहर निकलो।
0: बच्चे एक्चुअली हाँ, बच्चे फिर भी समझ जाएंगे, हाँ थोड़ा बाहर घूम घूम के आओ,
4: फोन बंद करो।
0: अब वो पड़ोस वाली आंटी से पूछ के आओ कि भाई शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है।
4: वो बातें अभी कम हो चुकी है।
0: Do you miss that? Like,
4: yeah, yeah, miss I think so. 100%. मुझे लगता है कि below 16, above 60 बैन होना चाहिए.
0: But अपनी generation क्या क्या? क्योंकि अपन we are in that situation कि हमें पता है.
4: Yeah, yeah.
0: तो do you think that 60 के हम जब होंगे तो हम भी ऐसी हरकतें करेंगे?
4: हो सकता है, पता नहीं. Maybe उससे भी बढ़ के करेंगे. और हमारी आगे वाली generation care नहीं करेगी, करने तो जो करते हैं.
0: हाँ. Or you never know, yaar, maybe हो सकता है वो ज़्यादा smart हो in different level और वो हमें सिखा रहे हो.
4: Yeah.
0: You know, you never know. But लगता है आज कोई mood में नहीं है. आज messages भी मुझे बहुत कम आए.
4: अच्छा, आज ऐसा हो गया.
0: हाँ, पता नहीं क्यों. दो या तीन ही message आए हैं, किसी में तो आए भी नहीं. एक सवाल भी किया था मैंने कि घर जाने के बाद आप क्या करते हो. हाँ. पहली चीज.
4: हाँ.
0: तो मैंने अपना बताया कि भाई मैं जाता हूँ, हाथ पाथ धोता हूँ.
4: हाँ.
0: जो सैनिटाइजर होता है वो सब लगाता हूँ, एंड देन आई गो एंड प्ले विद इहान. ये मैंने बताया. तो आप क्या करते हो?
4: मैं घर जाते मेरे पहले स्वागत
0: आपके
4: होता
0: दो
4: है,
0: बेबीज है ना?
4: मतलब एक पेट है और एक नेफ्यू है. सो मेरे जाते घर में सबसे पहले स्वागत होता है मेरे पेट से.
0: आए है, है,
4: है. तो वो पहले ही ऐसा आ जाता है बाहर की. भाई उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है. लाइक हैविंग अ पेट इज लाइक जब तुम घर जाओ ना तो तुम्हें ऐसा स्वागत मिलता है जैसे तुम एक जंग जीत के आए हो. जैसे तुम एक वर्ल्ड वार से वापस आए हो. एवरी डे वैसा वाला स्वागत मिलता है. तो या इट्स टोटल डिफरेंट.
0: डू यू दैट थिंग कि ऑब्वियसली आपके घर पे कैमरा लगा हुआ है, यू नो, टू फाइंड आउट कि भाई आपका जो पेट है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. तो डू यू डू कि बिफोर यू एंटर यू एक्चुअली गो एंड चेक योर इन योर फोन कि भाई एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है?
4: नहीं,
0: थोड़ी सी एक्साइटमेंट नहीं होती है?
4: अभी वो जाके हो जाता है सब ना.
0: अच्छा.
4: पता चल जाता है क्या कर रहा है वो. But yeah, he's like that.
0: But cool, thank you so much, Sandy. चलो आपका, आप तो आए, बात हो गई किसी से. बाकी तो आज तो पता नहीं क्या हुआ है किसी की. मेरे को लग रहा है ये रुजवे की नजर लगी. रुजवे और
4: उस दिन बोला था ना,
0: दो तीन दिन से बहुत तारीफ कर रहा ना.
4: Yeah.
0: काफी क्रिएटिव है, क्रिएटिव लोग है. देखो क्रिएटिविटी, या फिर हो सकता है फीफा देखने बिजी हो लोग
4: इस समय. मैच बड़े इंटरेस्टिंग चल रहे हैं.
0: हां, इन न्यूजीलैंड का मैच है आज. वैसे भी फटाफट से स्कोर कार्ड भी चेक कर लेते हैं क्या अपडेट है. हाल फिलहाल तो वही ड्रॉ की तरफ ही है. दो हुए हैं, दो दो दोनों की तरफ से. 78 मिनट हो चुके हैं, यानी कि अभी भी न्यूजीलैंड के पास 12 मिनट है टू स्कोर वन मोर एंड टू विन दिस. बट लेट्स सी. Sandy is already here, so Sandy will give you update about the match. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं. You keep listen to our show. हम पे कॉफी ब्रेक में थोड़ी देर में मुलाकात होगी आपकी Sandy से. बट तब तक के लिए मैं निकलता हूँ, and I'll see you guys tomorrow same time 12 से 3. Bye bye, take care, love you.

इंग्लैंड एंड ईरान के बीच में 2-2 के साथ वैसे इनका ड्रॉ रहा. न्यूजीलैंड ने वैल्यूएबल पॉइंट जो है ये अपने ओपनिंग मैच में अर्न कर लिया है. सो ऑल वाइज दे शोड कि प्लेंटी ऑफ अटैकिंग इंटेंट है टीम में. 2 बार एक्चुअली में टीम ने लीड ली थी बट ईरान रिस्पोंडेड बोथ ओकेजन्स पे एंड इस केस में दोनों ही अभी पॉइंट्स को शेयर करने वाले हैं. की मोमेंट्स काफ़ी थे जिसमें एली वॉज द स्टैंडर्ड परफॉर्मर ऑफ न्यूजीलैंड स्कोरिंग बोथ गोल्स. कैप्टन क्रिस वुड प्लेड अ क्रूशियल रोल जहाँ पे उन्होंने असिस्ट एंड फोकल पॉइंट ऑफ अटैक उनका था. एंड ईरान ने इक्वलाइज्ड किया 2 बारी. जो न्यूजीलैंड के लिए काम किया उनका अटैकिंग थ्रेट था, जो पॉजिटिव अप्रोच थी उनकी. एंड फॉर अ टीम मेकिंग इट्स फर्स्ट वर्ल्ड कप अपीयरेंस सिंस 2010, सो न्यूजीलैंड ने इसको बहुत ही सही वे से, इस मैच को बहुत सही वे से हैंडल किया. सो आफ्टर 2010 दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड कप मैच ऑफ न्यूजीलैंड. सो गुड की शुरुआत अच्छी है, खैर हारी नहीं है टीम. सो ड्रॉ जो है न्यूजीलैंड को वेरी मच अलाइव रखता है ग्रुप में. सो न्यूजीलैंड इज इन ग्रुप जी विद बेल्जियम एंड इजिप्ट, ऑल्सो ड्राइंग 1-1. सो जितनी भी 4 टीम्स हैं दे सिट लेवल आफ्टर द ओपनिंग राउंड, जिससे जो ग्रुप है ये अभी वाइड ओपन हो चुका है. सो इनकरेजिंग परफॉर्मेंस रही ऑल वाइड्स की इस गेम में. मैंने एक्सपेक्टेड ईरान टू विन बट न्यूजीलैंड ने शो किया कि दे बिलोंग इन दिस टूर्नामेंट एज वेल. Quite an interesting game.

3:21 हो चुके हैं। वैसे अगर आप इस समय पर मोटरवे पे हैं तो फायर फाइटर्स दे आर पुटिंग आउट अ ट्रक फायर ऑकलैंड नॉर्थ वेस्टर्न मोटरवे पे। सो वहाँ पे आपको काफ़ी डिलेज मिल सकते हैं। एक वीडियो फुटेज है फ्रॉम द सीन जहाँ पे अ लार्ज ट्रक एंड द ट्रेलर दे आर ऑन द साइड ऑफ द मोटरवे जहाँ पे एटलीस्ट 2 फायर ट्रक्स है एंड वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस एंड ट्रैफिक कंट्रोल व्हीकल्स आर एट द सीन एज वेल। सो ड्यू टू ट्रक फायर बिफोर द रोजबैंक रोड ऑफ रैम एंड 2 लेफ्ट 2 वेस्ट बाउंड लेन्स जो है ये एक्चुअली में ब्लॉक्ड है। तो एक्सपेक्ट डिलेज अगर उस एरिया की और आप ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं। आपके सुपर सिटी में जो प्ले है एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्ले, ये 20 जून तक होने वाला है, इंडियन इंक थिएटर कंपनी का बैलून डॉग। जैकब राजन इसमें जो कि अवार्ड विनिंग परफॉर्मर है वो स्टेज पे वापस आए हैं इस वर्ल्ड प्रीमियर के साथ, बैलून डॉग के साथ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है रविंद्रनाथ टैगोर की जिसका नाम है काबुलीवाला, उसी के ऊपर बेस्ड है ये प्ले। लेकिन थोड़ा सा इसको ट्विस्ट दिया गया है। सो दिस इज सेट इन अ 21st सेंचुरी ऑकलैंड जहाँ पे एक कहानी है, एक फ्रेंडशिप होती है, अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप होती है बिटवीन 5-year-old गर्ल एंड लोनली माइग्रेंट वर्कर, जहाँ पे काफ़ी चीज़ों के बारे में दोनों को समझ में आता है। सो इसका जो सोल्ड प्रीव्यू सीजन था ये सोल्ड आउट था, लेकिन उसके बाद जो डिफरेंट डेज है ये ओपन अप हुए हैं। 20 जून तक अभी भी डेज है, क्यू थिएटर में आप जा सकते हैं ऑकलैंड में इस प्ले को इन्जॉय करने के लिए। और कभी कभी प्ले ना एक डिफरेंट फील, एक डिफरेंट वाइब आपको देता है, बिकॉज जब प्ले जाके आप देखते हैं तो देर इज़ नो कट। जैसे एक मूवी, एक सीरियल आप देखते हैं तो अगर कोई गलती करता है तो वो कट तो हो जाता है सीन, लेकिन प्ले में तो सिर्फ एक ही टेक रहता है। सो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है जितने भी प्लेज यहाँ पर होते हैं। सो इंडियन एक थिएटर कंपनी का बैलून डॉग जो है, इसकी टिकट्स अगर आपको लेनी है iticket.co.nz पे आप जा सकते हैं।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है हाँ।
4: अच्छा
3: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
4: मिसेस सिंह
5: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 30

Not Out का ये गाना आप सुन रहे थे. अमिताभ बच्चन एंड ऋषि कपूर दोनों ने अपनी आवाज वैसे इस गाने में दी है. फॉर अमिताभ बच्चन दिस इज नथिंग न्यू, किसी गाने में अपनी आवाज देना, गाना गाना. बट फॉर ऋषि कपूर डेफिनेटली समथिंग न्यू. वेल एनी वे, FIH हॉकी जो है वैसे इसके मैचेस भी हो रहे हैं. आज इसके मैच होने वाले हैं कोरिया वर्सेस फ्रांस के बीच में जो मैच है ये होने वाला है. चिली वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में जो मैच है ये एक्चुअली में आज शाम को 6 बजे शुरू हो जाएगा. न्यूजीलैंड इज़ ऑल ओवर एक्चुअली. देन मलेशिया न्यूजीलैंड के बीच में नेक्स्ट मैच रहेगा. देन स्कॉटलैंड कोरिया के बीच में मैच जो है ये कल होने वाला है. लेकिन ये मैचेस के जो अपडेट्स हैं ये तो यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे. आज मैंने न्यूज़ पढ़ी है अबाउट आलिया फातिमा रिजवी. यू नो आलिया फातिमा रिजवी क्लास 9 स्टूडेंट फ्रॉम लखनऊ इंडिया. इसने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हासिल की बिकॉज 2026 नेशनल ज्योग्राफिक स्लिंग शॉट चैलेंज इसने जीता है. एंड एक्चुअली में इसका प्रोजेक्ट था जिसका नाम था द पपेट टीचिज द प्लैनेट. सो द पपेट टीचिज द प्लैनेट में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ना जो हम ऐसा वेस्ट समझ के फेंक देते हैं उसका कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए ये बताया आलिया फातिमा ने. सो आलिया ने नोटिस किया कि जो टेलर्स हैं ये कई बार क्या करते हैं कि फैब्रिक का जो लेफ्ट ओवर स्मॉल पीसेस होते हैं वो फेंक देते हैं. सो इंस्टेड ऑफ लेटिंग द टेक्सटाइल एंड अप इन लैंडफिल्स उसने क्या किया उसको हैंडमेड पपेट्स बनाने शुरू कर दिए उन सब चीज़ों के. सो दीज पपेट्स आर देन यूज टू टीच चिल्ड्रन अबाउट सस्टेनेबिलिटी रिसाइकलिंग एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल बिकॉज उसका एक स्टोरी टेलिंग रहता है इन पॉपिट्स के जरिए. स्टैंड आउट हुआ बिकॉज वेस्ट रिडक्शन है बाई रीयूजिंग टेक्सटाइल स्क्रैप एंड ट्रेडिशनल इंडियन पपेट्री को उसे यूज़ किया टू स्प्रेड द मैसेज. एंड जहाँ पे यंग बच्चों के बीच में खुद ही यंग है लेकिन और भी बच्चों के बीच में इसने मैसेज को स्प्रेड किया. द जजेस लव्ड इट बिकॉज सिंपल कॉन्सेप्ट, लो कॉस्ट, स्केलेबल है एंड कल्चरली रूटेड भी है. यू नो बेसिकली उसने वो सारे पॉइंट्स को टिक किया. एंड ये जो चैलेंज था बेसिकली जो स्लिंग शॉट चैलेंज था इसमें 2300 सबमिशंस थी फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज जिसके कारण ये जो अचीवमेंट है ये और भी इम्प्रेसिव बनती है. सो इसका ये जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ इट वॉज अमंग द ग्लोबल विनर्स एंड अर्नड हर अ ग्रांट एंड इन्विटेशन टू द अवार्ड सेरेमनी इन वॉशिंगटन एज वेल. सो ये बच्ची अभी वॉशिंगटन जाने वाली है. सो इट्स अ इंस्पिरेशन एक्चुअली. काफ़ी वहाँ पे लोकल टेलर शॉप जो है अभी लखनऊ में वो क्या करते हैं कि यू नो दे आर मेकिंग दिस ट्रेडिशनल गुलाबो सिताबो पपेट जो है ये वो बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है. बट द थिंग इज़ कि एक छोटी सी बच्ची ने ये स्टेप लिया जिससे बहुत सारे और टेलर्स को भी वहाँ पे वो इंस्पायर कर रही है कि जो फैब्रिक फेंक दिया जाता है उसका आप यूज़ कर सकते हो, उसको आप कुछ बना सकते हो एंड वो एज अ खिलौना पपेट्स जो है एज अ खिलौना ही किसी के काम आ सकता है.

विशाल मिश्रा की आवाज में फ्रॉम द मूवी सैयारा ये ब्यूटीफुल गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे। वैसे एक ऑनलाइन सेल्स स्कैम हुआ है जिसे एक कीवी सेलर को घाटा पड़ा है अराउंड $16,000 का। सो न्यूजीलैंड सेलर हैज लॉस $16,700 बिकॉज इन्हें टारगेट किया इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑनलाइन मार्केट प्लेस स्कैम में। मार्केट प्लेस में रिस्क तो रहता है, वहाँ पे डील्स कई बार बहुत अच्छी मिलती है एंड कई बार ऐसी डील्स वहाँ पे दिखाई देती है कि भाई ये तो इतने कम में अगर ये चीज़ मिल रही है तो मतलब ये चाहिए चाहिए। तो कई बार इसका फ़ायदा स्कैमर्स भी उठाते हैं। सो इट्स हाईलाइट कि स्कैमर्स जो है अभी बायर्स को किस वे से ट्रिक कर रहे हैं। सो हुआ क्या है, सो अकॉर्डिंग टू RNZ रिपोर्ट जो सेलर है इट लिस्टेड एन आइटम फॉर सेल ऑनलाइन। सो वेन देवर कॉन्टेक्टेड बाई अ बायर, सो यहाँ पे कहानी उल्टी है, हु सीम जेन्युइन एट फर्स्ट बट द सिचुएशन जो है ये क्लासिक स्कैम पैटर्न में हुई। द बायर क्रिएटेड अ अर्जेंसी एंड ट्रस्ट कम्युनिकेशन थी जो थी इट मूव्ड ऑफ प्लेटफॉर्म। जो स्कैम है इट इन्वॉल्व फेक पेमेंट क्लेम्स एंड ओवर पेमेंट स्टाइल मैनिपुलेशन एज वेल कि मैंने भाई कर दिया अब तो मैंने ओवर पेमेंट कर दिया है। The seller was then guided into transferring or releasing money items under false pretense as well. So by the time ye jo fraud hua ki ye realize hua, seller already $16,700 ho chuka tha. Ye scam kyun kaam karta hai? Because normal marketplace ya trade making conversations kai bar aisi hoti hai. And jo scammers hai, जब वो बात करते हैं तो वो बहुत ही प्रोफेशनल एंड पोलाइट भी कई बार साउंड करते हैं एंड दे माइट क्रिएट प्रेशर एज वेल, जैसे कि जल्दी करो ये, आई हैव ऑलरेडी पेड, अर्जेंटली कंफर्म करो मुझे, इस वे से प्रेशराइज करते जाना जिसे अगला मतलब बहुत प्रेशर फील करना शुरू कर देता है और होता है कि भाई काम निपटाओ ये कर देते हैं। सो विक्टम उस समय पर जब जो विक्टम होता है उसके पास कोई चारा नहीं होता है व्हेन दे डू सच काइंड ऑफ स्टफ, बाद में लेटर रियलाइज होता है कि भाई उनके साथ ये स्कैम हुआ है। अथॉरिटीज़ इन न्यूजीलैंड इंक्लूडिंग NZ पुलिस एंड NZ पोस्ट ये एक्चुअली में काफ़ी वार्निंग्स दे रहे हैं कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग स्कैम्स आर राइजिंग, जहाँ पे काफ़ी लोग बायर्स को इम्पर्सनेट भी कर रहे हैं, सेलर्स को इम्पर्सनेट भी कर रहे हैं, दे आर फेकिंग पेमेंट सिस्टम एज वेल नाउ। सो टारगेट इस समय पर फेसबुक मार्केट प्लेस है एंड सिमिलर प्लेटफॉर्म्स है। सो मेक श्योर कि अगर आप काफ़ी डीलिंग करते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, ट्रेडमी पे, कहीं और पे, तो यू आर वेरी श्योर अबाउट कि आप कहाँ पे अपनी मनी स्पेंड कर रहे हैं या फिर आपको कोई कह रहा है कि मनी ओवर पेमेंट हो चुकी, इतनी मनी वापस करनी पड़ेगी, तो आप किसको ट्रस्ट कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे शॉपिंग करना बंद कर दो, बट जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट इट।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Feels like 15 over. Abhi ka temperature actually mein hai 14.6. Southwesterlies ka saath rahega. Ek haath odd shower ho sakta hai afternoon mein. Kal ka din mila julasa rehne wala hai. Aaj sunset hoga 5:12 pe.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
1: Good afternoon, 4:02 on the 16th of June 2026. Hi, good afternoon, Sandy.
4: Good afternoon, Ruzbe. कैसे हो तुम?
1: बहुत ही बढ़िया. आप कैसे हो?
4: बढ़िया एकदम. तो मेरा डे कैसा जा रहा है so far?
1: डे तो बहुत बढ़िया जा रहा है यार. Very chilled day.
4: Chilled day तुम्हारा क्या? तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो रही है ना?
1: जी, it is my final day of the छुट्टी यार.
4: How's it?
1: It's good.
4: मुझे ऐसा तुम्हें ऐसा छुट्टियों में ज्यादा अपने आप को प्रोडक्टिव फील किया तुमने?
1: बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव फील किया मुझे लग रहा है. मतलब मेरे को मैं इनफैक्ट कल ऐसी जोक मारा था मेरे वाइफ से. मैं बोला आई हैव नेवर बीन सो एक्साइटेड टू गेट बैक टू वर्क.
4: मुझे लगता है ना तुम्हें ना थैंक गॉड करना चाहिए तुमने चिल किए इन छुट्टियों में. नशीन ने ज्यादा काम नहीं करवाया. अगर तुम्हारी मम्मी यहाँ पे होती.
1: एक मिनट एक्सक्यूज मी, आपको ये ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं चिल यहाँ पे बोलता हूँ तो मतलब बहुत चिल हो गया?
4: मतलब एज कम्पेयर
1: भाई उसने बहुत काम करवाया.
4: हाँ क्या?
1: इनफैक्ट मेरी माँ उतना काम नहीं करवाती जितना उसने काम करवाया मेरे से.
4: वही कह रहे हो लेते अगर उसमें की मम्मी यहाँ पे होती ना ये बंदा बैठा नहीं होता. मैं भी और खर्चा करके बैठा होता छुट्टियों के बीच में. चलो ये काम भी करवा ही लेते हैं घर का.
1: मतलब आप ये सारे घर के खर्चों का इल्जाम मेरी माँ पे डाल रहे हो?
4: नहीं जरूरी काम.
1: नुशीन के साथ बहुत हैंग आउट कर रहे हो आप शायद से. या दैट्स
4: ऐसा नहीं है.
1: समथिंग आई नीड टू टेल माय मॉम.
4: ऐसा कुछ नहीं है भाई. एनीवे सो आपका क्या होता है जब आप छुट्टी लेते हैं? डू यू वर्क?
1: लोग ट्रैवल करते जब छुट्टी करते लेते तभी. सैंडी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डोंट थिंक कोई छुट्टी लेकर मेरी तरह अपना
4: चिल करता है.
1: चिल मतलब क्या? वही मजदूरी करता है. मजदूरी.
4: ये बताइए आपकी छुट्टियां जब आप लेते हैं मैंडेटरी लीव्स जब आप लेते हैं आपका क्या आइडिया रहता है? आप घर पे रहते हैं, घर पे काम करते हैं या टीवी देखते हैं? व्हाट डू यू डू? और डू यू गो फॉर समथिंग प्रोडक्टिव या डू यू ज्वाइन समथिंग? काफी लोग ये भी करते होंगे ना, कुछ कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करते होंगे ये सब चीजें.
1: मैं छुट्टी से पहले बोल रहा था ना एआई पूरा. मैं तो एआई का कोर्स करने वाला हूं.
4: एआई कितना सीखा तुमने?
1: एआई कुछ नहीं सीखा मैंने क्योंकि आई एम गोइंग बैक टू बेसिक्स.
4: इंटरनेट
1: नहीं, कंप्यूटर कैसे यूज करते वो भी टाइपराइटर से चालू करने वाला हूँ मैं भी.
4: ओके सीपीयू ले लिया तुमने. पेंटियम होता था ना सीपीयू?
1: पेंटियम 4 ना. ओ गॉड अभी भी होता है सीपीयू सैंडी?
4: अभी भी
1: होता है.
4: मतलब मैं ये स्टूडियो में देख के नहीं ऐसा लगता है कि सीपीयू होता है. स्टूडियो में गाइस कोई सीपीयू नहीं है.
1: है सीपीयू सैंडी?
4: है लेकिन मतलब हमारे रीच का नहीं है.
1: नहीं नीचे है सीपीयू.
4: हाँ वही ना, हम उसको नहीं
1: हम देख
4: कर
1: नहीं
4: सकते.
1: पाते उसको हम कुछ नहीं हम उसको दबा के रीस्टार्ट नहीं कर सकते.
4: नहीं वो नहीं कर सकते
1: जैसे हम पहले करते थे सीपीयू को रीस्टार्ट. ऐसे कुछ भी हो रहा है तो ऐसे दबा देना वो बटन.
4: या
1: रीस्टार्ट का एक अलग बटन होता था और पावर ऑन ऑफ का बड़ा बटन होता था आपको सीपीयू में.
4: आदत ही नहीं रही यार अभी.
1: क्लिक्स की आदत हो गई अभी ना. नो बटन्स
4: स्क्रॉल.

0: hilega, hilega, hilega, machega, machega, machega, machega.
1: Yo yo, Honey Singh and Homies की ओर से आप सुन रहे थे ये गाना मचेगा मचेगा. इसके they needed a lyricist for this song, I think.
2: Yeah, lyricist की थोड़ी कमी हो गई तो उन्होंने मचेगा मचेगा.
1: ये मतलब जो draft track होता है ना, जहाँ पे अभी मैंने ना recently एक Spotify का एक वीडियो आया था आमिर खान और ये सब लगान की टीम सेलिब्रेटिंग 25 इयर्स ऑफ लगान,
2: पे सलमान खान की नई लुक नजर आई सबको. तुमने सलमान खान की नई लुक नहीं देखी?
1: वो टकला हो गया ना.
2: हाँ, उसे सारे बाल निकाल दिए. मैं पहले मैंने जब वो लुक देखी ना तो आई थॉट कि दिस इज लाइक इयर्स ओल्ड लुक सलमान खान की. शायद अभी उसकी रील आ रही है. फिर मैंने और सारी जगह पे देखा, मैंने बोला हाई ला, ये तो अभी की है. मतलब सलमान खान लेकिन लग वैसा ही रहा है बहुत साल पहले वाला. मतलब विद टकला लुक ही इज लुकिंग मोर गुड.
1: ही लुक्स मोर बेटर एवरी टाइम सैंडी व्हेनेवर यू सी हिम. सो वो उसमें दो राय है ही नहीं.
2: या वो बात अलग है.
1: या या सो
2: बट इज लुकिंग या बेटर.
1: हम सलमान के बारे में नहीं बात कर रहे थे अभी,
2: हम बात कर रहे थे लगान के बारे में.
1: हाँ, 25 years of लगान जब हुआ ना, तो उसमें वो लोग ने one thing that they spoke about is जो rough track बन रहा था, मितवा, नहीं मितवा नहीं, चले चलो.
2: ओके,
1: चले चलो ये जो था, ये चले चलो वर्ड नहीं आया था, धुन बनी थी बट नशा नशा नशा नशा ऐसे करके बनी थी. तो वो चले चलो के बदले नशा वर्ड था. एंड आशुतोष गोवारिकर एंड आमिर खान ने बहुत फॉर्मली बोला था जावेद अख्तर को कि ये वर्ड नहीं निकलना चाहिए. नशा नशा तो हमें चाहिए. एंड उसके ऊपर जावेद अख्तर ने बहुत बढ़िया जोक भी मारा है. बोले कि ये गांव के लोग हैं जिनके पास पीने को पानी नहीं है,
2: तुम नशे की बात कर रहे हो.
1: तीन गुना लगान के ऊपर चढ़ा हुआ है और नशा नशा चाहिए इनको गाने में.
2: वाओ.
1: या या सो दे देन चेंज्ड इट. लाइक जावेद अख्तर वाज वेरी फर्म, ही इज लाइक कि नहीं ये अच्छा लगेगा, चलिए चलो.
2: Yeah.
1: And then Chale Chalo became like a hit.
2: Yeah, it's a nasha nasha hota to kaisa hota gana na wo.
1: Yeah.
2: Yeah, shayad is gaane ko bhi shor machega, koi Javed Akhtar chahiye tha.
1: Yeah, yeah, 100%. So anyway, talking about aaj drive show mein kya kya hone wala hai aapke liye.
2: Oh yeah.
1: To dher sare competition ho rahe. Karan Aujla is coming to our super city. Kal humne launch kiya ye. आपके लिए और उसमें काफी लोगों ने इंटरेस्ट जाहिर किया है.
2: या आज भी आपको मौका मिलेगा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए. करण औजला के शो के लिए टिकट जीतना है तो कैसे जीतना है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहेगी थोड़ी देर में. बट फॉर फिलहाल वैसे बताते हैं रुजबे इस प्ले के बारे में. दो प्लेज होने वाले हैं, दो प्लेज हो रहे हैं, एक प्ले हो रहा है, एक होने वाला है. और ये जो होने वाला है ये है गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर.
1: नहीं नहीं फिर से बोलो.
2: गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर.
1: अरे क्या बात है.
2: क्या जिसमें लेजेंडरी ये कॉमेडियन है सिद्धार्थ, ये आके यहाँ पे
1: सिद्धार्थ रंदेरिया
2: ये यहाँ पे आके परफॉर्म

0: परफॉर्म करने वाले हैं. सो ही इज़ क्वाइट बिग इन गुजरात, लेकिन यहाँ पे उनका शो मुझे लगता है पहली बार होने वाला है.
1: मैंने नहीं, इनका नहीं, पहले हुआ है
0: इनका.
1: नहीं, हुआ है.
0: ओके, सो ये सेल आउट हो जाएगा, इसलिए अपनी टिकट जल्दी से खरीद लीजिएगा premierticketsco.nz पे जाके. फ्राइडे 3 जुलाई को शो होने वाला है 7:30 PM ऑनवर्ड्स विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में.
1: जी, थोड़े टाइम में आपसे कुछ न्यूज भी यहाँ पे शेयर करेंगे. देयर सम मोर इन्फॉर्मेशन कमिंग अलोंग अलोंगसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान. क्या प्लान हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड, इसके बारे में बात करेंगे आपके साथ बस थोड़ी देर में.
2: डेली डोज ऑफ विजडम, विट एंड वाइल्ड कन्वर्सेशंस,
3: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्बी.
4: आपका प्रोफाइल देखा, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए.
5: 80s के रेट्रो गाने.

0: डिस्को हो या रॉक एंड रोल, तुमसे है तुमसे प्यार, डाउनलोड रोवा टू लिसन हम 80s जुकबॉक्स।
1: हो गई इंतजार की,
2: हम दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
3: वो Indelible Homes वाली कहानी सुनाओ ना।
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
5: And award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
6: Kahani of Indelible Homes.
7: Please use your imagination for the following ad.
8: If I won Powerball, the first person I'd tell would be... and would surprise all our friends by...
7: Imagine winning $7 million this Wednesday. Play in store or online.
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
12: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
13: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
14: Are you ready to go home?
15: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
16: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
17: ड्राइव शो आपके लिए जारी है और वैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के बारे में काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं। 30-year इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान ये अभी इस बार का बोल रहे हैं कि ये रिफॉर्म करने वाला है लैंड ट्रांसपोर्ट फंडिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर क्रिस बिशप है इन्होंने कहा है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने कमीशन किया था इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स उसी के अराउंड ये जो आगे का प्लान है ये होने वाला है एंड रोड्स ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस जो है इनके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान देने वाली है।
18: ओके
17: तो गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू निगलेक्ट दोज वंस विच आर रोड्स ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस या और उनका मानना यह है कि ये काफ़ी नेशन शेपिंग और बड़े प्रोजेक्ट्स है जो कंट्री को रिक्वायर्ड है कंट्री इज रिक्वायरिंग। मुझे एक चीज़ यहाँ की अच्छी लगती है यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट्स काफ़ी अलाइन होके काम करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें
18: जिस चीज़ के ऊपर डिस्प्यूट की जरूरत नहीं है नहीं करते
17: मतलब जैसे कि अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पिछले गवर्नमेंट ने इशू किया था रिक्वायरमेंट्स और ये बोल रहे हैं कि हाँ ये जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है तो ये बहुत ज़रूरी होता है मुझे लग रहा है फॉर एनी कंट्री
18: किसी कुछ चीजों को लेके सेम जगह पे आके बात करना
17: या एंड मतलब लुकिंग एट न्यूजीलैंड फर्स्ट बेसिकली नॉट न्यूजीलैंड फर्स्ट बट लुकिंग एट
18: न्यूजीलैंड
17: पहले फर्स्ट आई होप नॉट
18: उन्होंने पार्टी का नाम भी देखो ना कैसे चुना है.
17: या वही तो.
18: सो ट्रिकी.
17: बट यहाँ पे नेमिंग की अगर बात करें तो मोस्टली बिजनेसेस ऐसे ही नेम होते हैं ना.
18: हाँ कैसे.
17: जो बेच रहे हैं वही चीज बोलेंगे.
18: हाँ.
17: उसी का नाम दे देंगे. एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है इसके लिए जो शेयर करूंगा आपके साथ थोड़ी देर में. लेकिन अभी आपको गाने भी सुनाएंगे और प्लस आपके साथ थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे. कुछ है सैंडी जिसके ऊपर आप.
18: बात तो वैसे आज वर्ल्ड कप बाय द वे रुज़बे फुटबॉल वर्ल्ड कप आज ईरान और न्यूजीलैंड के बीच में था.
17: काफी ऑफिसेज में स्ट्रीम हुआ ये मैच.
18: आज यहाँ पे भी स्ट्रीम हो रहा था बाहर किचन में जो बिग स्क्रीन है वहाँ पे न्यूजीलैंड का फुल मैच स्क्रीन हुआ एंड लोग अपना काम छोड़ के बैठे हुए.
17: किसको सपोर्ट किया आपने
18: इसमें. अभी तो कोई ऐसी फेवरेट टीम नहीं थी बट न्यूजीलैंड बिकॉज
17: न्यूजीलैंड और ईरान के लिए सपोर्ट किया. कोई फेवरेट टीम नहीं थी.
18: फेवरेट नहीं है ना. मतलब फेवरेट एज इन की जिसको हमेशा से फॉलो किया हो उनके प्लेयर्स को फॉलो किया हो ऐसा नहीं था.
17: ऐसा तो मेरे लिए एक भी टीम नहीं होगी.
18: बट यू आर कीपिंग इंटरेस्ट ना. कौन सी टीम थी तुम्हारी. ब्राजील ना.
17: ब्राजील. आपकी फ्रांस है ना.
18: बहुत सारी टी-शर्ट्स मिल रही है ब्राजील की अभी बाहर.
17: वो फेक वाली.
18: नहीं रियल वाली भी.
17: वो रियल वाली भी मिल रही है.
18: हाँ मॉल्स वगैरह में हर जगह पे भरी हुई है.
17: फेक वाली होगी तो दो.
18: या काफी लोग अर्जेंटीना की भी खरीद रहे हैं ना. अर्जेंटीना के बहुत फैंस होते हैं.
17: तो ब्राजील जीता कि नहीं अब तक वर्ल्ड कप में अभी फीफा में.
18: पता नहीं ब्राजील का तो पता नहीं लेकिन आज ईरान और न्यूजीलैंड के बीच में जो मैच था उसमें दोनों का ड्रॉ हो गया. तो दोनों को ने एक्चुअली में पॉइंट्स जो थे वो शेयर किए हैं. 2-2
17: मिले उनको.
18: तो या 2-2 उनका था पॉइंट्स थे. तो इस मैच के पॉइंट वो शेयर करने वाले हैं.
17: या बिकॉज कोई ड्रॉ हो गई ना मैच.
18: या ड्रॉ हो गया.
15: Football updates brought to you by BFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर.
1: Accurate traffic.
2: Beat fuel prices with AT.
3: Fine overnight for Auckland, a low of 10 degrees. We've got a crash on the southern at Manukau just after the Redoubt Road off-ramp. The right southbound lane is blocked there. The breakdown on the Harbour Bridge has now cleared. Still a bit of congestion in the area and still quite heavy westbound on the northwestern. There was a truck fire earlier near Rosebank Road.
2: Beat pump prices by taking public transport. Tag on with any smart card and go.
4: At Bunnings, you can keep the cold air out for less with an Adored fabric draft stopper, just $10.95. It doesn't cost a lot to winterproof your home. Shop online or in-store. Lowest prices are just the beginning.
5: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
7: मुझे भी
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
8: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
9: We've got double glazing.
8: Have you still got that cold, damp feeling?
10: Yeah, we do.
8: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
11: At Kogan Mobile, we want to help Kiwis experience mobile Aussie style. That doesn't mean saying, yeah, nah, hey, go on, flyman galah. It means texting emojis without being charged 50 cents and calling your mum without having to call your accountant first. Right now, get a 180GB yearly prepay plan for just $240. That's 15 gigs of data per month for less than $21. So say you beauty to true Aussie value from Kogan Mobile. T's and C's apply.
12: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
13: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
12: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
14: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं.
15: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड. ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.

0: टनसल टाउन में आपके लिए बॉलीवुड की खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं यहाँ पे। लेकिन सैंडी, उससे मुझे याद आया कि आज ट्यूसडे है और आज वो गेम खेलने का टाइम है, मतलब 5 बजे के बाद कैरेक्टर गेस, जहाँ पे आपको कैरेक्टर ढूंढना है, सोचना है।
1: आज मुझे एक कैरेक्टर सोचना है और आपको रुजबे के साथ मिलके गेस करना है किस कैरेक्टर के बारे में मैंने सोच के रखा है।
0: जी, 5 हिंट मिलेंगे हमें और 5 सवाल होंगे हमारे पास।
1: 5 हिंट 5 सवाल होंगे और इसमें आपको गेस करना होगा। तो आप जो सवाल पूछेंगे रुजबे के साथ मिलके, उसका जवाब मैं सिर्फ हाँ या ना में दे सकती हूँ।
0: दैट्स राइट। सो आपका साथ बहुत जरूरी है क्योंकि आपके साथ के बिना मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल होगा करना,
1: और मैंने अभी तक कैरेक्टर सोच के नहीं रखा है।
0: ओके, सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत स्ट्रेसफुल होता है सैंडी कैरेक्टर के बारे में सोचना।
1: आई नो,
0: बिकॉज सडनली ना व्हेन यू आर थिंकिंग यू फील के ओके इट्स नॉट जस्ट like one person that you're competing with.
1: Yeah.
0: You're competing with a bunch of them together collectively. वो लोग इतना quick सोचते हैं ना कि क्या ही बताना है।
1: मुश्किल होता है। So we'll see. 5 बजे के बाद ये रहेगा।
0: ये बोल रहे start now please। अरे ऐसा नहीं होता है।
1: Start now अभी नहीं यार।
0: I know it is a very exciting segment। हमें भी बहुत मजा आता है करने के लिए।
1: लेकिन वो हम सिर्फ 5 बजे के बाद आपके लिए यहाँ पर खेल सकते हैं। लेकिन start now एक चीज हम जरूर कर सकते हैं।
0: बताओ।
1: करण औजला के शो के लिए एंट्रीज।
0: बताओ कैसे करना है।
1: सो ग्लोबल सेंसेशन करण औजला, जो कि पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके ऑकलैंड में बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, मैसिव होने वाला है। सो करण औजला का शो होने वाला है स्पार्क अरीना में 25 अगस्त को, एंड उनके साथ वैसे स्पेशल गेस्ट हिट मेकर इक्की ये भी परफॉर्म करने वाले हैं। सो एक ऐसी नाइट जहाँ पे म्यूजिक एनर्जी ये दोनों रहने वाले हैं। यू गॉट अ चांस टू विन द टिकट ओवर हियर बिकॉज प्री सेल जो है ये 17 जून कल से शुरू हो जाएगी सुबह 10 बजे से। लेकिन यहाँ पे टिकट जीतने का मौका है, आपको करना क्या है, के ए इज अ कीवर्ड स्पेस एक सवाल का जवाब लिख के भेजना है 5599 पर, और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे आप जीत सकते हैं डबल पास फॉर द शो।
0: आज का सवाल ये है कि के ए लिखकर आप भेजिए, आप करण औजला का लेटेस्ट गाना कौन सा रिलीज हुआ है। लेटेस्ट गाना,
1: लेटेस्ट गाना आपको कौन सा पता है जो करण औजला का रिलीज हुआ है।
0: या
1: ये आज आपको लिख के भेजना है।
0: इफ यू आर करण औजला फैन देन यू हैव टू नो ना कि कौन सा लेटेस्ट गाना।
1: यू स्ट्रीमिंग ऑल द सॉन्ग्स देन।
0: तो कौन सा है, कौन सा लेटेस्ट गाना जो करण औजला का रिलीज हुआ है। आप के ए स्पेस आपका जवाब और फिर आपका नाम 5599 पर आप लिख कर भेजिए।
1: Yeah, so you are in the draw. वैसे टिकट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन विजिट hum.trova.nz या फिर livenation.co.nz, वहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी।
0: बट अभी तो प्री सेल चल रहा है, मतलब अभी तक तो खुला भी नहीं है। प्री सेल भी नहीं खुला है।
1: नहीं अभी खुला है। या 17 जून से शुरू हो जाएगा, यानी कि कल से प्री सेल जो है ये ओपन अप हो जाएगा।
0: राइट, तो और भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लाते रहेंगे। सुनील का आंसर आ गया यहाँ पे सैंडी, ये सही है क्या आंसर जो
1: बताते हैं बाद में,
0: बताएंगे थोड़ी देर
1: देख के बताते हैं।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now.

0: जसविंदर नरोला की आवाज में सुन रहे थे आप, ये गाने का नाम है ये जो हल्का हल्का सुरूर। बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, ट्रिब्यूट है टू उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, वो एल्बम में से है ये। बट या व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। वैसे यहाँ पे हमें मैसेज है कृष्णी लाभ का, एंड आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे पूछा हमें। बट 5 बजे के बाद आपके लिए यहाँ पे कैरेक्टर गेस्ट लेकर आने वाले हैं। सैंडी आर यू रेडी? मतलब एकदम स्ट्रेस में लग रही है सैंडी।
1: नहीं, नहीं, नहीं, फुल रेडी है रुज़बे।
0: फुल रेडी? सोच लिया आपने?
1: सोच लिया मैंने एक कैरेक्टर।
0: अच्छा, सोच लिया है?
1: एक कैरेक्टर सोच लिया है जिसके हिंट मैं आपको देने वाली हूँ 5 बजे के बाद।
2: Accurate traffic.
3: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
4: Fine overnight for Auckland, a low of 10 degrees. We've got reports of a crash on the northern just past the Onewa Road interchange, affecting northbound traffic from the city to Silverdale 1 hour. On the northwestern, still pretty heavy from city to Te Atatū. The southern, that crash at Manukau has now cleared, but it's still very slow southbound from Green Lane to Manukau, 48 minutes, 1 hour 9 to Drury.
3: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
5: Your calendar

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
4: 5:02 Power Drive at 5 आपके लिए शुरू हो गया है. You're listening to the Drive Show with Sandy and Rizbe. Hi Sandy, good evening.
5: A very very good evening Rizbe. Game से पहले FIH Hockey Women Nation Cup जो है वैसे 21 जून तक ये North Harbour में हो रहा है, जहाँ पे हम is bringing stick with हम, जहाँ पे आपको बहुत सारे passes जीतने का मौका यहाँ पे मिला over the time. तो आज जो मैच है, आपको बता दूं कि आज कोरिया और फ्रांस के बीच में मैच फिलहाल चल रहा है, इट्स इन प्रोग्रेस. फ्रांस ने सो फार एक गोल कर लिया है.
4: अरे क्या बात है. hockeynz.flickit.co.nz पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे. ये जो कप है इज गोइंग ऑन अंटिल द 21st of June, तो ये वीकेंड है. अगर आप जाके देखना चाहते हैं मैचेस नॉर्थ हार्बर स्टेडियम में, बहुत मज़ेदार होगा. ये हॉकी लाइव देखने का मौका आपको मिल रहा है
5: या तो वहाँ पर आप ज़रूर पहुँचेगा. Now, आज के गेम शुरू करते हैं.
4: Okay, so time for the game. Character guess. Character guess में होता ये है कि सैंडी आज एक कैरेक्टर के बारे में सोचेगी और वो हमें 5 हिंट्स देगी इसके अराउंड. एंड हमारे पास 5 सवाल है सैंडी को पूछने के लिए, जो यस एंड नो वाले जवाब देगी सैंडी हमें जिस सवालों के.
5: Yeah.
4: So the सवाल has to be such कि उसका आंसर either yes या no हो.
5: Yeah, हाँ या ना में आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं मुझसे. तो आज का जो कैरेक्टर गेस में जो पहला हिंट है रुज़बे,
4: पहला हिंट आ गया. यस,
5: पहला हिंट है दिस पर्सन इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फिटनेस.
4: स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फिटनेस,
5: या इट्स अ वेरी गुड हिंट.
4: ओके,
5: सो यू नो वेयर यू कैन स्टार्ट. क्या क्या चीजें इसमें, लेकिन क्या ही क्या चीजें इसमें आ सकती है. ये वाइड भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है. ये
4: देखो, स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फिटनेस, तो मतलब मेरे मन में भी स्पोर्ट्स आ रहा है. गौरव वर्मा कह रहे हैं विद्युत जामवाल.
5: कुड बी
4: वेरी वेरी क्लोज. मतलब वेरी क्लोज एज इन,
5: और ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स बहुत जल्दी गेस करते हैं और हम उनके आंसर्स इग्नोर करते हैं.
4: हाँ, ओह गॉड,
5: ऐसा बहुत बार हुआ है हमारे साथ.
4: ये आज बहुत ट्रिकी खेल रही है. 0800-004-866 कॉल कीजिए यहाँ पे. क्या ऐसा पहला सवाल हम पूछ सकते हैं सैंडी को, जल्दी बोलिए यहाँ पे कॉल करके. बट आपने बोला है स्ट्रेंथ एंड फिटनेस ना, क्या?
5: या सो दिस पर्सन इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फिटनेस.
4: स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फिटनेस, अच्छा ठीक है. हाय, गुड इवनिंग.
6: हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू?
4: एक नंबर, हाउ आर यू?
6: I'm good, thank you.
4: बोलिए.
6: सैंडी वो उसका डैड कोई फिल्म एक्टर तो नहीं है?
4: अरे ऐसा नहीं, एक मिनट रुको, पहले मेरे साथ डिस्कस तो करो यार.
6: हाँ यार, ना हमें बताना है ना.
4: हाँ लेकिन अपना सवाल यूज हो जाएगा ना. क्यों, आप किसके बारे में सोच रहे हो ऐसा डैड फिल्म एक्टर?
6: मैं तो कुछ ऐसे नाम जैसे एनिमल रिलेटेड है और फिजिकल फिटनेस भी है उसकी ना.
4: नाम ओ वैसा टाइगर श्रॉफ बोल रहे हो आप?
6: अभी तुमने बोला हिंट देना है ना, नाम नहीं लेना है डायरेक्ट.
4: नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ ले सकते हो आप, सैंडी के साथ.
5: आप रुज़बे के साथ डिस्कस कर सकते हो.
6: सैंडी तो सुन रही है ना.
4: हाँ वो चलेगा, वो उसका मैं फेशियल एक्सप्रेशन देख रहा हूँ ना यहाँ पे.
6: अच्छा नहीं है, मतलब
5: कितना ट्रिकी खेली, नाम एनिमल जैसा.
4: नहीं लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक अपने को मालूम नहीं है कि ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी है या ये कोई स्पोर्ट्स में है.
6: अच्छा वही वही, इसलिए मैंने पूछा
5: क्या है, पता नहीं. और भी कैटेगरीज होती है ना रुज़बे.
4: अभी फिजिकल फिटनेस एंड
5: दिस पर्सन बीन एसोसिएटेड विद स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फिटनेस.
4: स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फिटनेस,
6: ऑब्वियसली ना, शेयर तो स्ट्रेंथ का वो है ना. और फिर फिजिकल फिटनेस
4: Associated with strength and physical fitness.
6: Associated, अच्छा अच्छा, फिर तो सलमान खान नहीं है.
4: Okay.
5: अभी भी जिम लगाता है वो.
4: हाँ वही तो. 60-70 की उम्र
6: है. अभी लेटली तुमने?
5: हाँ बहुत अच्छा लग रहा है यार.
6: लगता है बेचारा
5: बेचारा, क्या हैंडसम लग रहा है वो.
4: अरे यार तुम लोग डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ यार, ये क्या है? प्रूव करो तुम लोग कि दो लड़कियां साथ में आ जाती है तो कुछ और ही बात करना चालू कर देती है।
5: सो ओके, द फर्स्ट हिंट आपको मिल गया है, अब सोचो क्या सवाल पूछना चाहोगे।
4: सोचते अभी सवाल सोचते मुझे लगता है मुझे लगता है ये पूछना चाहिए कि इज दिस पर्सन नोन फॉर फेमस फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन स्पोर्ट्स।
5: ये तुम्हारा सवाल है?
4: ये मेरा सवाल है,
5: अभी जवाब चाहिए विदाउट एनी डिस्कशन।
4: अभी कोई और है नहीं डिस्कशन करने के लिए।
5: तो इसका जवाब है, तुम्हारा सवाल है कि ये स्पोर्ट्स में इनका कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है, मतलब स्पोर्ट्स प्लेयर है कि नहीं है, ये सवाल है।
4: इज दिस पर्सन नोन फॉर फेमस फॉर, एक मिनट, आस्क फॉर हिंट टू बिफोर क्वेश्चन, ऐसा अभी आ गया है क्वेश्चन, सॉरी सैंडी, यू हैव टू गिव अस वन सेकंड हिंट।
5: कितने शाने लोग नहीं है।
4: नाइस,
5: ओके,
4: हां सेकंड हिंट,
5: सेकंड हिंट विल बी दिस पर्सन हैड अ long-standing public image tied to strength, discipline and simplicity rather than glamour.
4: This person had long-standing
5: public image tied to strength, discipline and simplicity rather than glamour. मतलब कि glamour वाली जो दुनिया से ज़्यादा, this person always preferred simplicity.
4: Oh, wow.
5: Yeah.
4: This is very difficult, यार. मेरे को अभी भी लग रहा है कि ये
5: कोई सवाल पूछो ना, तुम्हें क्या लग रहा है?
4: ओए बाबा रामदेव भी आ गया आंसर। और दो लोगों ने भेजा,
5: दो लोगों ने दिया है बाबा रामदेव।
4: बट बाबा रामदेव ग्लैमर के साथ भी काफी एसोसिएटेड थे, ग्लैमर तो था ना काफी, मतलब यार ऐसा तो नहीं है कि
5: नहीं।
4: सिर्फ अच्छा, बहुत डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए। ओके, तो मुझे पहले तो पूछना है कि इज दिस पर्सन नोन फॉर फेमस फॉर स्पोर्ट्स।
5: आंसर इज नो,
4: नो नॉट नोन, नॉट फेमस फॉर स्पोर्ट्स,
5: या नॉट फेमस फॉर स्पोर्ट्स,
4: नॉट फेमस फॉर स्पोर्ट्स,
5: या
4: ओके। अच्छा तो एक सवाल हो गया ना मेरा भी,
5: या
4: अच्छा अभी एक और सवाल पूछना है।
5: हाँ पूछो।
4: सो इज दिस पर्सन लिविंग?
5: दिस पर्सन इज नॉट लिविंग,
4: दिस पर्सन इज नॉट लिविंग,
5: या दिस पर्सन इज नॉट अलाइव।
4: अच्छा ओके, सो दो दो तो हो गए,
5: काफी आंसर्स आ रहे हैं और काफी वैरायटी आ रही है।
4: देखो नॉट लिविंग मतलब दारा सिंह हो सकता है, दारा सिंह एक आया है हमें पास यहाँ पे एक मैसेज। विस्पी खराड़ी मेरे को नहीं लगता है, बॉडी बिल्डिंग फॉर वर्ल्ड रिकॉर्ड बिनाइफर आई डोंट थिंक वो हो सकता है, दारा सिंह के काफी आ रहे हैं।
5: फ्रांस
4: इज नॉट प्लेइंग टुडे, प्लीज डोंट गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन।
5: फ्रांस के बारे में बोला नहीं हमने,
4: छोड़ो ना इतना बार डिफेंसिव रहो यार, छोड़ो ना। हाँ ठीक है,
5: हम हॉकी की बात कर रहे थे, वो फुटबॉल की नहीं, उनको लगा फुटबॉल की बात कर रहे हैं।
4: अच्छा फुटबॉल, अच्छा फुटबॉल की बात है, प्लीज डोंट हियर हाफ इन्फॉर्मेशन।
5: हमने हॉकी की इन्फॉर्मेशन दी थी आपको,
4: मतलब लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत टाइम है।
5: वही ना,
4: पूरा ढंग से सुनो ना फिर।
5: कोरिया फ्रांस का हॉकी का मैच,
6: मैंने फिर से कॉल किया।
4: हाँ बोलो बोलो, और कोई नहीं कॉल कर रहा है।
6: अच्छा, आप ही बोलो। रिलेटेड टू फिजिकल स्ट्रेंथ कि वैसे इमोशनल, वैसे मेंटल
4: स्ट्रेंथ? नहीं नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ बोल दिया है। सुनो ना,
5: बीन एसोसिएटेड विद स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फिटनेस,
4: स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फिटनेस,
5: बीन एसोसिएटेड विद इट। ओके,
4: अभी तक अपने को पता नहीं है लड़का है कि लड़की है एक्चुअली में देखा जाए तो,
5: ये भी नहीं पता है अभी आपको।
4: बट नॉट लिविंग है, नॉट लिविंग,
5: द पर्सन इज नॉट अलाइव।
4: हाँ
5: ये आपको पता है,
6: होगा ना जिसने, जिसका नाम तुमने लिया,
4: दारा सिंह।
6: हाँ मुझे लगता था,
4: मुझे भी लग रहा है,
6: मैं तो गांधी जी बोलने वाली थी, बट अभी वो तो नहीं हो सकता फिजिकल फिटनेस।
5: अभी देखो बहुत हिंट है, अभी सवाल भी है, हिंट भी है, सवाल पूछने, सवाल पूछो,
4: अभी हिंट बाकी है ना। एक और हिंट हो जाए सैंडी, जल्दी फटाफट एक हिंट दे दो यार।
5: एक और हिंट मैं आपको देती हूँ, इस पर्सन की जो शादी हुई वॉज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टॉक्ड अबाउट वेडिंग।
4: एक मिनट, ये तो पूरा फुल टॉस गया यार। इस पर्सन की जब शादी हुई वाज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट.
5: इस पर्सन की जो शादी हुई
4: हाँ
5: वाज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टॉक्ड अबाउट वेडिंग.
4: ओके नॉट लिविंग बोल रहे हो ना आप.
5: दिस पर्सन इज नॉट लिविंग. या
4: क्रेजी हो रहा है ये.
5: क्रेजी हो रहा है.
4: बात करते हैं. हाय हेलो.
7: हेलो
4: हाँ जी आपका स्वागत है. बताइए.
7: थैंक यू. धर्मेंद्र तो नहीं है बिकॉज़ ही इज नो मोर.
4: नहीं वही है. नॉट लिविंग ही है. मतलब दैट इज व्हाट द हिंट इज आल्सो. लाइक हमने आंसर हमने क्वेश्चन सो बेसिकली द पर्सन इज नॉट लिविंग करंटली. सो धर्मेंद्र स्टिल कुड बी. बट धर्मेंद्र जी की शादी ऐसी हुई थी जो बहुत टॉक ऑफ द टाउन रही थी हमेशा. मतलब काफी चर्चे में रही थी शादी.
7: हां हां आई थिंक सो.
4: अच्छा.

0: अरे तो ग्लैमर तो फिर धर्मेंद्र तो निकल जाते ना उसमें से, धर्मेंद्र इज ग्लैमर। ऐसा और कौन है जो नोन फॉर सिंप्लिसिटी?
1: सो या दिस पर्सन हैड अ लॉन्ग स्टैंडिंग पब्लिक इमेज टाइड टू स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी रादर देन ग्लैमर। And this person,
2: simplicity rather than glamour. I thought simplicity with glamour. Okay.
1: Simplicity rather than glamour means ki this person always preferred ki, like not always the you know party person, not always this. ऐसे होता है जो.
0: Simple इंसान है.
1: This person ki जो marriage थी was India's one of the most talked about wedding.
0: India's most talked about wedding. अच्छा दीपक सोची वही मैं भी फुल टॉस हो गया मेरे को। चलो ठीक है,
1: अभी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं घुमा रही हूँ यहाँ पे कि रुजबे घुमा रहे
0: मैं कहाँ घुमा रहा हूँ यार, मैंने किधर घुमाया किसी को, आप ही घुमा रहे हो। एक गाना सुन देते
1: गाना सुनते, we'll be back।

0: You're listening to Humbling, Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे गाने तो लेकर आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ आज पहेली बहुत ही डेंजर वाली हाथ लगी है. हम कैरेक्टर गेस में
1: सो फार जो आपको हिंट मिले, जो आपको पता है कैरेक्टर के बारे में, दिस पर्सन बीन एसोसिएटेड विद स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फिटनेस. दिस पर्सन हैड अ लॉन्ग स्टैंडिंग पब्लिक इमेज टाइड टू स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी रेदर देन ग्लैमर. एंड और मिक्किया मैंने बोला कि हाँ, इनकी जो शादी हुई वो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट वेडिंग.
0: देखो अभी आंसर इज महात्मा गांधी को ही बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन शादी इनकी थोड़ी टॉक ऑफ द टाउन रही थी यार, टॉक रही थी यार, तो वो वहां पे मेरे को नहीं लगता महात्मा गांधी हो सकते हैं. दूसरी बात क्या है, वो फिजिकल, एक तो वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं, नॉट नोन फॉर स्पोर्ट्स है.
1: अभी तीन सवाल है ना पूछने के लिए,
0: तीन सवाल है पूछने के लिए,
1: तो पूछो.
0: अब इनसे पहले बात करेंगे. हाय.
2: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
2: शबनम.
0: शबनम क्या है यार, कुछ हेल्प करो आज यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है.
2: मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट मंसूर अली खान, पथौड़ी फादर ऑफ.

0: Saif Ali Khan.
1: Oh, Mansoor Ali Khan Patrol. But not a sports person, not known for sports.
0: Okay.
1: Politician ho sakte hai ya nahi pata nahi. Actually ek wo bhi aaya hai. Thank you so much Shabnam. Thanks ya. Participate karte rahiye ya aise.
2: या तो अगला सवाल पूछ सकते हो या फिर मैं एक हिंट दे सकती हूँ. दोनों में से क्या चाहिए? सवाल पूछना
1: एक,
2: है
1: एक पहले मैं लाइफलाइन यूज करना चाहता हूँ. फोन अ फ्रेंड. हाय हेलो.
3: सॉरी मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था. सुनील दत्त.
1: हाँ, बताइए क्या कह रहे थे आप.
3: सुनील दत्त.
1: सुनील दत्त लग रहा है आपको. बट नोन फॉर हिज स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फिटनेस. सुनील दत्त
3: काफी बड़े पब्लिक फिगर थे इंडियन.
1: नहीं नहीं known for strength and physical fitness.
2: तो हर एक चीज जो है ना वो फिट होनी चाहिए.
1: हर एक चीज फिट होनी चाहिए ना. चलो ठीक है. नहीं नहीं कोई बात नहीं यार. ट्राई करते रहेंगे हम लोग ऐसे कभी ना कभी
2: मिलेगा आंसर.
1: तो चला एक और हिंट दे दो यार.
2: नेक्स्ट हिंट मेरा ये है कि 5599 पर जितने भी आंसर्स आए हैं ना
1: हाँ
2: उसमें से सही आंसर भी है.
1: सही आंसर है यहाँ पे ऑलरेडी.
2: यस.
1: अच्छा कितने बजे आया.
2: दिस इज माय नेक्स्ट हिंट.
1: कितने बजे आया सही आंसर.
2: वो थोड़ा बताऊंगी. मैंने इतना हिंट दे दिया है कि तुम्हें सही आंसर मिला है रुजबे.
1: ओह गॉड.
2: या
1: आपने वो भी नहीं बताया ना अब तक कि ही है कि शी है.
2: तुमने पूछा ही नहीं.
1: बट अगर आया है आंसर देखो मैं पढ़ लेता हूँ.
2: तुम्हारे पास तीन सवाल है. ठीक है तीन सवाल अभी तुम्हारे पास है. तुम सवाल पूछो ना. देन यू विल थोड़ा वो पास पहुंचोगे तुम आंसर के.
1: देखो अभी तक हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आया है हिंट में. दारा सिंह आया है अभी भी. ठीक है. ब्रूस ली आया है. वो मुझे नहीं लगता वो हो सकता है. मैरी कॉम भी नहीं है क्योंकि अलाइव. इनसे बात करते हैं. हाय हमारा भी स्टैंडर्ड देखो ना. ऐसे ना जो विडर मैं कौन जानता है जो विडर.
4: She became famous because of wedding attire she wore. She had muscles and she wore like a sexy sari.
1: ये सही आपने सही सोचा है. लेकिन देखो सोचने वाली सैंडी भी है ना यहाँ पे.
4: खतरनाक छे क्वेश्चन यार.
2: या लेकिन जवाब आ चुका है और रुजबे एक तो बार तो वो जवाब बोल भी चुका है.
1: अच्छा
2: देखो मेरे पांच हिंट खत्म हो गए.
1: नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है.
2: ऐसे ही होता है. तुमने सवाल नहीं पूछ रहे हो. तुम्हारे पास तीन सवाल है रुजबे.
1: Known for strength and physical fitness.
4: दारा सिंह
1: मेरे को भी वही लग रहा है. क्या इनका क्या इस पर्सनैलिटी का लड़का है लाइक बच्चा है जो एक्टर है.
2: यस.
1: अरे ये भी है. यस
4: है.
1: ओके ओके. So I think it's time then.
2: तुम्हारे पास दो और कितने सवाल है. तुम्हारे पास दो और सवाल है.
1: दो सवाल है कि एक सवाल है. और
2: कितने सवाल पूछे तुमने.
1: I think दो सवाल है ना. तो एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ ना अभी ऐसा. Is it दारा सिंह.
2: No.
1: Yeah. Oh no. God.
2: Understand all the hints ना रुजबे. सिर्फ तुम स्ट्रेंथ और फिजिकल फिटनेस देख रहे हो. दिस पर्सन हैड अ लॉन्ग स्टैंडिंग पब्लिक इमेज ऑफ स्ट्रेंथ डिसिप्लिन सिंप्लिसिटी रादर देन ग्लैमर. मतलब उस पर्सन के पास लाइफ में ग्लैमर की कमी नहीं थी लेकिन दिस पर्सन ऑलवेज प्रेफर्ड सिंप्लिसिटी इन द लाइफ.
1: इज इट धर्मेंद्र.
2: यस.
1: अच्छा ओके ओके ओके कूल. थैंक यू.
2: जो फोन जिनका कटा सही जवाब था उनका. अगला मेरा हिंट वैसे यही होने वाला था कि दिस पर्सन बीन रोमांटिकली सीरियस ऑन स्क्रीन सो मेनी टाइम्स कि इवन क्यूपिड नीडेड अ ब्रेक.
1: वाओ वाओ ओके.
2: सो उनकी जो शादी थी बिकॉज़ इट वाज अ सेकंड वेडिंग विदाउट गेटिंग डिवोर्स. एक्चुअली
1: जिन्होंने मैं कॉल किया उन्होंने सही गेस किया था. फिर
2: हेमा मालिनी के साथ इट वाज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट वेडिंग एट दैट टाइम पे. एंड ही प्रेफर्स सिंपलिसिटी बिकॉज़ ही यूज्ड टू लिव इन अ फार्म हाउस. पार्टीज वगैरह में नहीं जाते थे. ही यूज्ड टू लिव इन अ फार्म हाउस.
1: दैट्स राइट. That's right. Yeah. So, आज का कैरेक्टर थे धर्मेंद्र, क्या बात है. And yeah, you're right, known for physical
2: strength. अरे ढाई किलो का, हाँ वो.
1: And physical fitness. नहीं ढाई किलो का उनका बेटा.
2: तो बेटे का था, but वहीं से आया ना.
1: Yeah, yeah, yeah. वहीं से आया, सही है. वेल थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग. आई होप आपने भी उतना एंजॉय किया जितना हमने एंजॉय किया आज. ये बहुत स्ट्रेसफुल हो गया यार ये सेगमेंट, मेरे को लगता है मेरे लिए अभी.
0: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी.
5: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्बी.
6: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं.
0: Accurate traffic.
7: Denza Premium Plug-in Hybrid SUVs.
8: Fine overnight for Auckland, a low of 10 degrees. On the northern, it's heavy from the city to Northcote Road, taking an hour to get to Silverdale. On the northwestern to Massey, 51 minutes. Slow from the city to Paitiki Road. The southern, pretty heavy in both directions between Princes Street and Market Road to Drury. It's an hour. And the southwestern, heavy from Puhinui to Mangere Bridge.
7: Visit Denza Auckland City. Plug-in hybrids from $89,990 plus on-road costs today.
9: Reliance Ventilation System.
10: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
9: Moisture और ventilation का problem लगता है.
10: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
9: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
11: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
12: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर. दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमचे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, राइड्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन. कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800-4SUN-TOURS. दैट्स 0800-478-686. लिमिटेड spaces.
13: Trade Depot is your number one online store for home improvement products. Acoustic wall paneling from $99. Solar panels just $179. Bed frame and mattress just $379. Save hundreds on beautiful home improvement products. Only at Trade Depot in Onehunga or shop online.
5: Trade Depot.co.nz.
14: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
15: Are you ready to go home?
16: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
17: Power Drive at 5.
18: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Bollywood's most wanted.
19: Gundi Khadda. सीधा अंदर आऊं
20: मैं लाऊं अपना ए गेम.
18: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. आपके लिए एक से गाने यहाँ पे लेकर आते हैं. एंड इसके साथ साथ खबरें भी. एक इम्पॉर्टेंट थिएटर प्ले हो रहा है, मतलब बहुत ही बढ़िया एंटरटेनिंग थिएटर प्ले हो रहा है. इंडियन इंक थिएटर कंपनी ये लेकर आ रहे हैं आपके लिए बलून डॉग. दिस इज इंस्पायर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर्स बिलव्ड काबुलीवाला. उनकी एक स्टोरी थी काबुलीवाला, उससे इंस्पायर्ड ये प्ले है बलून डॉग, जो सेट इन 21st सेंचुरी ऑकलैंड. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल टेल दैट फॉलोज द अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप बिटवीन अ 5-year-old गर्ल एंड अ लोनली माइग्रेंट वर्कर.
1: या तो जो ओरिजिनल कहानी है उसमें भी ऐसा ही कुछ है कि एक छोटी सी बच्ची होती है और एक वेंडर आता है काबुल से, वो हमेशा आता है. एंड उन दोनों के बीच में दोस्ती होती है, तो उसी से इंस्पायर्ड एक्चुअली थोड़ा सा ट्विस्ट दिया इन्होंने कहानी को अकॉर्डिंग टू ऑकलैंड.
0: जी, iticket.co.nz पे इसके टिकट्स आपको मिलेंगे. क्यू थिएटर में हो रहा है ये शो फ्रॉम 3rd of June. तो ये ऑलरेडी अभी लास्ट 4 days में पहुंचा है, बिकॉज 20th June तक ही ये रहेगा. एंड iticket.co.nz पे आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं. जेकब राजन जो मेंबर ऑफ न्यूजीलैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये है इनके पास और ये वापस से आ रहे हैं स्टेज पे. एंड इनके साथ लीड में नए एक्टर्स को भी लेकर आ रही है. वन ऑफ द एक्टर्स वी ऑलरेडी नो ऑफ हिम, जहांगीर, उनको काफ़ी बार देखा है परफॉर्म करते हुए.
1: ओके,
0: सो या इट्स गोना बी अ ग्रेट शो.
1: एंड कुछ ही दिन अभी बाकी है गाइस, सो डेफिनेटली गो एंजॉय द शो. 20th June तक है. एंड यू नो थिएटर के बारे में, प्ले के बारे में मैंने पहले भी बोला है रुजबे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, बिकॉज बाकी सीरीज वगैरह में जब आप मिस्टेक करते हो शूटिंग के टाइम पे आपका कट होता है, यू गेट अनदर टेक, बट इन प्लेस ऐसे जो होते हैं वहाँ पे दूसरा टेक नहीं होता है, जस्ट वन शॉट.
0: तो इसलिए आप रियल उसमें परफॉर्मेंस और एक्टिंग देख सकते हो लोगों की. एंड द एफर्ट दैट दे पुट इन, या इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ एफर्ट. और इस प्ले ने तो एक्चुअली टॉर भी किया है काफ़ी, अलग अलग जगहों पे ये परफॉर्म हुआ है. एंड इस बार अभी ऑकलैंड में हमें मौका मिल रहा है इसको विटनेस करने का. सो या वी शुड डेफिनेटली मेक द मोस्ट ऑफ इट. क्यू थिएटर आप भी चले जाइए 20 June के पहले, कभी भी आप जा सकते हो, या फिर ऑनलाइन टिकट्स चेक कर लीजिए iticket.co.nz पे, आपको और डिटेल्स मिल जाएंगे.

0: head sleep easy queen beds from only $7.99. On sale now.
1: Hum. Accurate traffic.
2: Winter immunisations are available now.
3: Fine overnight for Auckland, a low of 10 degrees. On the northern, it's heavy from the city to Northcote Road, taking an hour to get to Silverdale. On the northwest into Massey, 51 minutes. Snow from the city to Paitiki Road. The southern, pretty heavy in both directions between Princes Street and Market Road to Drury. It's an hour. And the southwestern heavy from Puhinui to Mangere Bridge.
2: Book your winter immunisations, including flu. Search Book My Vaccine or ask your healthcare provider.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
4: Moisture और ventilation का problem लगता है.
5: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.
8: Flooring Extra. Adore your floor.
9: Roadside drug testing is here. New Zealand police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA, and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drug-driving.
10: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
11: Dragon!
12: The global phenomenon returns.
13: You are the Queen of Dragons. You have absolute power within your grasp.
14: I'm going to kill my brother, or die in the attempt.
12: Watch the series the world will be talking about.
15: There will be no doubt who the gods have chosen to rule.
13: This is the moment you become queen.
12: HBO original House of the Dragon streams June 22, only on HBO Max.
16: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now. With up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
17: Radio pe gaano ki farmaish ki ja sakti hai. Apno ke naam sandeshe bheje ja sakte hain. Magar radio pe apne tradition ki khushbu bhejni ho to nahi bhej sakte na. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log into www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
18: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead sleep easy queen beds from only $7.99. On sale now.
19: Power Drive at 5.
20: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
21: You're listening to Hub, playing Bollywood's biggest hits. वैसे आज न्यूज़ की अगर बात करें तो जो सोशल मीडिया बैन है इसकी बात फिर से आ गई है सामने for under 16.
22: Yeah.
21: सोशल मीडिया बैन.
22: केतन भी इसके बारे में बात कर रहा था आज.
21: क्या बोल रहा था केतन, बताओ यार.
22: केतन कह रहा था कि अंडर 16 एंड ओवर 60 बैन होना चाहिए, कि अब जो बड़े लोग हैं, जो एल्डरलीज हैं, वो भी आजकल ज़्यादा लाइक फ़ोन नहीं छोड़ते हैं, बिकॉज उनको भी लेट सीखा, लेकिन अभी उनको लेट सीखने के बाद इतना ज़्यादा आदत पड़ गई है कि फ़ोन इज़ एवरीथिंग फॉर देम.
21: वो मैं अग्री करता हूँ, क्योंकि उनके लिए फ़ोन is actually everything full time.
22: Yeah, full time.
21: मेरे को ना बिलीव नहीं होता है. मेरे डैड
22: बोला पड़ता है कि बाहर जाओ, थोड़ा निकलो बाहर.
21: नहीं नहीं, मतलब लिटरली एक ऐसा टाइम होता था जब मेरे डैड मेरे को बोलते थे, और वो टाइम पे हमारे फोन में लिटरली सिर्फ स्नेक का गेम होता था, ऐसा कुछ ना, इतने हाईटेक नहीं फोन थे ना वो टाइम पे. वो टाइम पे बोलते थे कि ये क्या है, फोन के ऊपर पूरा ध्यान है तुम्हारा, फोन ले लेना चाहिए तुम लोगों का, ये वो. और अभी वही इंसान फैमिली डिनर टेबल पे फोन के साथ, फोन पे बिजी कुछ ना कुछ करते हुए. तो मतलब टाइम्स हैव चेंज, बट ऑनेस्टली मेरे को अबव 60 के जो लोग हैं उनसे, मुझे उन जनरेशन से मुझे थोड़ी सिंपैथी है, क्योंकि वो जनरेशन ने खुद के लिए बहुत कम जिया है. वो अपने बच्चों के लिए, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा जिया है उन्होंने. तो अगर अभी एक फोन पे अगर वो अपना, उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है,
22: तो व्हाई नॉट,
21: तो कर लेने दो यार.
22: ये भी बात है. एनीवे वैसे
21: बढ़िया अंडर 16 डू यू थिंक अंडर 16 के लिए फोन बैन होना चाहिए.
22: मेरे वही केतन से बात हो रही थी, आई सेड कि मुझे लगता है अंडर 14 शायद बैन होना चाहिए, थोड़ा एज को वो कर देना चाहिए, लाइक 15 16 में स्टिल यू आर मे बी एट द एज जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू डू सम कंटेंट.
21: यू आर राइट,
22: सो दैट काइंड ऑफ स्टफ.
21: तो मे बी अंडर 14 13 रखना चाहिए.
22: ओके 13
21: 13 13 14 हाँ 13 बहुत हो गया.
22: या
21: बट उसमें फिर ऐसा भी होना चाहिए कि अंडर 13 तुम्हारे चाइल्ड अकाउंट्स भी नहीं हो सकते लाइक इंस्टाग्राम अकाउंट्स और वो सब, क्योंकि काफी पेरेंट्स अपने नाम पे इंस्टाग्राम अकाउंट खोल देते हैं बट वो बच्चे ऑपरेट करते हैं.
22: या
21: इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट एज वेल.
22: या अरे बच्चों के कितने पेजेस होते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे.
21: या या बच्चे और पेट्स, पेट्स के भी बहुत पेजेस होते हैं.
22: पेट्स के तो चलो कंट्रोल्ड बाय पेरेंट्स मतलब या बाकी लोगों के थ्रू ही होते हैं, बट बच्चों के
21: क्या
22: तो
21: बात कर रहे हो,
22: खुद भी कई बच्चे करते
21: रॉटवाइलर नहीं करते खुद हैंडल अपना पेज
22: कहाँ ना
21: ऐसा बोलते भी आई एम फीलिंग क्यूट टुडे ऐसा वैसा करके वो डालते हैं.
22: उनकी फीलिंग उनको पता होती
21: अच्छा,
22: है.
21: अच्छा या मेरे को ऑनेस्टली ना जब भी पेट्स की बात मैं जा रहा हूँ अभी करने के लिए, लेकिन जब पेट्स ओनर्स जब अपने डालते ना कि यू नो आई एम फीलिंग दिस दैट ऐसे करके, तो वो खुद की फीलिंग्स वो कुत्ते के नाम पे डाल के डाल
22: रहे हैं. आई एग्री, आई 100% एग्री, इसलिए मैं नहीं करती हूँ.
21: अरे आप
22: क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे पता है जो मैं कह रही हूँ वो फील नहीं कर रहा है. आई अंडरस्टैंड हिम वेरी वेल बट या आज वही केतन ने पूछा ना कि घर जाती हो तो सबसे पहले काम क्या होता है. मैं उसको बताया घर जाती हूँ तो वो ऐसे वेलकम करता है, माइल्स बेड टॉक का नाम है, ऐसे वेलकम करता है जैसे मैं जंग जीत के आई हूँ कहीं से.
21: हाँ फुल एक्साइटेड ना,
22: फुल एक्साइटेड जैसे बरसों बाद उसने मुझे देखा है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा होता है.
21: हाँ.
22: लेकिन उसके लिए वो गैप इतना ज्यादा होता है. So that's the yeah.
21: But that's the love, na.
22: That's the love exactly. Yeah, yeah. His way of showing the love.
21: Yeah, that's cool. Yeah. मेरा हमारा जो अभी मेरा खुद का तो pet नहीं है ना, लेकिन पड़ोस
22: neighbor का
21: जो
22: तुम्हारा ही है.
21: हाँ वही पड़ोस का जब आता है तो वो बहुत moody है. उसका depend है. कभी आएगा तो सीधा आएगा भागते भागते full प्यार में. कभी अपना ही खुद का घूमेगा. फुल इग्नोर करेगा और जाके दरवाजे पे खड़ा रह जाएगा.
22: इसका मतलब है जब उसका पेट भरा हुआ है तो वो अपने ही मस्त है. जब उसको अभी और खाना है तो वो आएगा.
21: हाँ ऐसा कुछ तो भी मैं को भी
22: ये होते हैं ये सब. हाँ, ऐसे ही है
21: वो जो भी बोलते हैं ना कि पेट्स आर द नहीं क्या डॉग्स आर द मोस्ट क्या बोलते हैं वो मोस्ट
22: लॉयल
21: नहीं यार मोस्ट क्या अनगिविंग क्या नहीं क्या के मतलब
22: सेल्फलेस
21: लव देते वो तो वो मिथ है.
22: हाँ वो मिथ है आई एग्री.
21: वो तो ऐसा तो नहीं हो सकता. वो बहुत सेल्फिश होते हैं. इफ कांट यूज अ बेटर वर्ड बट सेल्फिश इज क्वाइट एन अप्रोप्रिएट वर्ड. डॉग्स आर सेल्फिश. यस यस दे आर व्हिच इज ओके ना. वी आर ओके विद इट. डोंट फील बैड. लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. 1 2 3 4

0: सिर्फ लेके आए मुलाकात तो गई आपसे। हम थ्रोबैक
1: मैं पहले कभी इतनी खुश नहीं रही, ना ही इतनी कंफ्यूज्ड। मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। मैं जा रही हूँ, कहाँ पता नहीं, लौट कर आऊंगी पता नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना।

You're listening to the Drive Show with Sandy and Rusbe. आप सुन रहे थे ये गाना सुनील चौहान और जयेश गांधी की आवाज में. लेकिन आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं, तैयार रहिए ऑकलैंड, क्योंकि ट्राई विजन एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ट्राई विजन इवेंट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं अ नाइट ऑफ प्योर एंटरटेनमेंट. कृष्ण अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव इन ऑकलैंड, ये आ रहे हैं हमारे सुपर सिटी में. पहली बार 18 जुलाई विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में इनका शो होने वाला है. bookmyevent.co.nz पे आप इसके टिकट्स बुक कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऑनलाइन बुक करने में दिक्कत हो रही है तो आप कॉल कीजिए 0214327020 पे और आपको और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी. लेकिन हाँ, ग्रेट कॉमेडी नाइट, कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर ये आ रहे हैं ऑकलैंड में. तो bookmyevent.co.nz पे इसके टिकट्स आपको मिल जाएंगे.

0: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
1: Good evening, I'm Bridget Hastie with the latest at 6. The Resident Doctors Association is requesting no further changes to its regulatory body. Health Minister Simeon Brown has replaced the Medical Council's leadership, concerned recent instructions on cultural appreciation pushed a political agenda. But Association President Rosa Tobin-Stickings says that's an essential part of medical care.
2: We need to have an awareness of how culture not only impacts our patients, but also our own culture, what we bring to that interaction.
1: All 16 recommendations in the Infrastructure Commission's 30-year plan have been given government approval. The plan, released in February, sets out how New Zealand can improve its infrastructure long-term. Infrastructure Minister Chris Bishop says progress is already being made across the board. Central Hawke's Bay residents are being urged to call police if they see boy racer gatherings on the region's roads. Deputy Mayor Jerry Greer is concerned they're causing damage and police can only respond if they're told.
3: That's the message to our community, is report, report, report.
1: And the government has more than 150 outdated acts in its sight as part of a legislative clean-up. A prime example given is the 1919 Wellington Milk Supply Act, which gave Wellington Council a milk monopoly after World War I and almost led to a court case 5 years ago. To football updates brought to you by Hisense, the All Whites twice had the lead against Iran in their World Cup opener this afternoon, but Iran came back to force a 2-2 draw in a highly entertaining match. Elijah Just scored both goals for the All Whites, one in each half. And at least one change for the Hurricanes for Saturday night's sold-out Super Rugby Pacific Grand Final. Lock Caleb Delaney is under concussion protocols. Nick Berry will ref the big game.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
4: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस
5: सूचित किया जाता है शैलेंद्र सैम निव इश्वानी के पिता बिंदमती के पति सिंगाटोका फीजी के भूतपूर्व निवासी तथा सिंग्स लॉयर के मंगल सिंह की मृत्यु हो गई अंतिम संस्कार बुधवार 17 जून को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-663-101 पर कॉल कर सकते हैं शैलेंद्र सैम निव इश्वानी के पिता बिंदमती के पति सिंगाटोका फीजी के भूतपूर्व निवासी तथा सिंग्स लॉयर के मंगल सिंह की मृत्यु हो गई अंतिम संस्कार बुधवार 17 जून दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-663-101 पर कॉल कर सकते हैं सूचित किया जाता है रवि बा फीजी के भूतपूर्व निवासी माउंट वेलिंगटन ऑकलैंड के राम करण के भाई मैंगरी के नवनीत करण पिंकी नीली और पूनम के पिता मैंगरी ऑकलैंड के जय करण प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार बुधवार 17 जून को 1 बजे मांगरे लॉन सेमेट्री 85 मैकेंजी रोड मांगरे में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-834-3575 पर कॉल कर सकते हैं रवि बा फीजी के भूतपूर्व निवासी माउंट वेलिंगटन ऑकलैंड के राम करण के भाई मांगरे के नवनीत करण पिंकी नीली और पूनम के पिता मांगरे के जय करण प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार बुधवार 17 जून को दोपहर 1 बजे मांगरे लॉन सेमेट्री 85 मैकेंजी रोड मांगरे में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-834-3575 पर कॉल कर सकते हैं सूचित किया जाता है ज्योति रचना और परमीत की मां एलाइट सिनेमा लंबासा फीजी के भूतपूर्व मालिक मगन भाई पटेल की पत्नी रेवा पटेल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार थर्सडे 18 जून को दोपहर 3 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-903-255 पर कॉल कर सकते हैं ज्योति रचना और प्रमित की मां एलीट सिनेमा लंबासा फीजी के भूतपूर्व मालिक मगन भाई पटेल की पत्नी रेवा पटेल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार थर्सडे 18 जून को 3 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-903-255 पर कॉल कर सकते हैं सूचित किया जाता है लोथोका फीजी के भूतपूर्व निवासी शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलिन ऑकलैंड के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी माला रक्षा और सीमा की मां सत्यवती प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार शुक्रवार फ्राइडे 19 जुलाई को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-647-520 पर कॉल कर सकते हैं। लोतोका के भूतपूर्व निवासी शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलिन ऑकलैंड के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी माला रक्षा और सीमा की माँ सत्यवती प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार फ्राइडे 19 जून को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-647-520 पर कॉल कर सकते हैं।
4: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
6: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हाँ।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
3: छह बज चुके हैं ट्रेंड मेकर्स में. आपका स्वागत है. आज 16 जून. हाय सैंडी, गुड इवनिंग.
4: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग. ट्रेंड मेकर्स में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अमाल मलिक को.
3: जी, अमाल मलिक का आज बर्थडे है और उसी मौके पे आज का जो आवर है उसमें अमाल मलिक के सारे हिट सॉन्ग्स आपको सुनने मिलेंगे और उनकी आवाज भी.
4: तो आप सेगमेंट्स में सुनेंगे आज अमाल मलिक के कुछ इंटरव्यू बिट्स जो मैंने और रुजबे ने काफी इंटरव्यूज की है अमाल मलिक की. तो जो हमने कोई इंटरव्यू की थी लास्ट इंटरव्यू ना, उसके कुछ बिट्स आप सुनने वाले हैं इस इंटरव्यू में, इस सेगमेंट में. बट टू स्टार्ट ऑफ, ये जो सेगमेंट आप सुनने वाले हैं ना इंटरव्यू का, दिस वाज इन 2017 बिकॉज़ ही टॉक्ड अबाउट एमएस धोनी उस समय पर.
3: नाइस. सो 2017 ऑलमोस्ट 9 इयर्स बैक. मतलब
4: 9 इयर्स बैक. बट थिंग इज कि द पैशन इन हिज वॉइस अबाउट मेकिंग द म्यूजिक उस इंटरव्यू में, और उसके बाद जो सेगमेंट सुनेंगे वो 2026 की इंटरव्यूज है. You will feel the same passion.
3: Yeah, absolutely. Sandy की आवाज भी काफी same ही sound कर रही है.
4: Yeah.
3: तभी से लेकर अब तक. बस खासना नहीं है उस आवाज में.
4: Yeah, आज काफी better था.
3: आज better था.
4: Yeah.
3: Well, ऐसे ही आज ये जो hour है trend makers में, आपको मस्त वाले गाने भी सुनने मिलेंगे अमाल मलिक के और कुछ प्यारी प्यारी बातें. तो enjoy कीजिएगा और सुनिएगा.
4: या टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय. नहीं, या अभी बाय. आप सुनिएगा इंटरव्यू के बिट्स यहाँ पर.
5: अमाल, बीइंग अ म्यूजिक कंपोजर, यू नो, आपके सामने अगर किसी मूवी के लिए लिरिक्स रखे हुए हैं कि माइंड में एक्टर का भी वो घूम रहा है कि इसके ऊपर ये एक्टर है, ये लिरिक्स है,
6: फिल्माया जा रहा है उसके,
5: तो वो चैलेंज होता है एक, लाइक
6: एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है. व्हेन इट देयर आर टाइम्स लाइक माय मोस्ट टफेस्ट एंड एम्बिशियस प्रोजेक्ट एमएस धोनी, उसमें एक गाना था जब तक. इस द वर्ड्स एंड यू नो फ्रेजिंग होती है जो एक एक लाइन की. इसमें जो पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, एंड आई वाज वर्किंग फर्स्ट टाइम विद नीरज पांडे, एंड ही इज अ डायरेक्टर हु इन ऑल ऑफ हिज फिल्म्स हैज नेवर हैड म्यूजिक. यू नो हिज फिल्म्स हैव बीन मोर अबाउट बैकग्राउंड स्कोर एंड ड्रामा एंड व्हेन
7: मोर अबाउट द स्टोरी
6: एंड स्पेशल छब्बीस. देयर हैव नेवर बीन अ साउंडट्रैक म्यूजिकल फिल्म. And Dhoni's life had a lot of things, romance and heartbreak and the death of his girlfriend, his ups and downs. Kahin na kahin, when this these lines, Manoj Muntashir saab ne likhe the, jab tak teri aanch mein boond boond mein jal na lu. This is one line. So, and the director comes to you and says, ki, I have approved these lyrics. These are not going to change. You have to make a tune on this.
5: Okay.
6: And he's like, this is my situation anyhow. And you know, it could have also been ki jab tak teri aanch mein, whatever, I'm just thinking. But somewhere, to simplify it and make it, you know, I like doing things in a simple way, so I just broke those words into a simpler melody ki jab tak teri aanch mein boond boond main jal na loon. So this scanning had never happened, and I was really lucky. It's also the people who are choosing the music, you know. Aisa bahut baar hota hai ki हम एक एज जितने कंपोजर्स है, मैं हूं या जितने भी नए कंपोजर्स है, वी वुड ऑलवेज वॉन्ट टू गिव आर बेस्ट, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हु सिलेक्टिंग. समटाइम्स दे माइट सिलेक्ट अ ट्यून विच यू जस्ट फील कि देयर इज मे बी नथिंग इन इट, एंड
5: वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं
6: आपको कभी. तो समटाइम्स इवन आई फाइट फॉर इट एंड आई से कि यू नो आई कैन डू बेटर, जस्ट गिव मी अनदर डे. सो इस फिल्म में क्या था, देयर वाज I was not making music for Sushant Singh Rajput per se. You know, it was like making music for Dhoni. Okay. So, and when you don't know someone personally, then reading the script, getting to know the guy, unki life kaisi hai, and he cannot romance the way Shah Rukh Khan does, you know. So, and Dhoni had, had a phone conversation where he had mentioned, I had done Besabriya and he loved that song. And after that he said ki, love songs mein, just see that it doesn't get too filmy because
7: it shouldn't get too cheesy. Yeah.
6: So, so to manage those things and still make an album which commercially also has to do well and film ke script ke saath jana, wo I think bahut bada challenge tha.

0: 27 गाने बने और उसमें से 7 चुने पिक्चर के लिए, तो वो मेहनत, वो टाइम देना, एक डायरेक्टर मुझे दे रहा है ये टाइम की, लो बेटा आप करो 3 महीने काम, वो है ही नहीं. देयर इज ऑलवेज बीन फास्ट फूड काइंड ऑफ म्यूजिक, की रात को फोन आया 2 दिन में गाना दे दो, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा पंजाबी डाल दो, ये सो पीपल आर वर्किंग अराउंड दैट. जब आप ब्रीदिंग स्पेस दो एक आर्टिस्ट को, वो लाएगा ही ऐसा अमेजिंग स्कोर.
1: बिकॉज इट्स ऑल डेटा ड्रिवन ना, कि कहाँ से अपने को कौन सा ऑडियंस पुल करना है, पंजाबी इतना क्राउड है.
0: देयर इज नो प्रॉब्लम इन फॉलोइंग डेटा, बट देयर इज एक हैशटैग, एक और जो मैंने कहीं लाया लिखा था किसी पोस्ट पे, इट्स कॉल्ड आर्ट ओवर एल्गोरिथम. तो आप आर्ट भी रखो, मैं नहीं बोल रहा कि आप डेटा स्टडी मत करो. इवन आई नो टू प्लान कि आई नो पीपल लव माई लव सॉन्ग्स, आई ऑल्सो सेड दैट आई बिलीव दैट आई एम द शाहरुख खान ऑफ म्यूजिक एंड आई फील कि मैं बेस्ट हूँ म्यूजिक, रोमांटिक म्यूजिक में. तो अगर मैं जानता हूँ कि उनको क्या पसंद है, इसका ये मतलब नहीं कि आई कैन नॉट पुश द एनवेलोप एंड ट्राई एन एफ्रो सॉन्ग और ट्राई अ क्लबिश वाइब. एंड सो यू हैव टू मेक योर ऑडियंस ऑल्सो रियलाइज कि मैं ये हूँ बट मैं ये भी हूँ, दैट आई कैन डू दिस काइंड ऑफ म्यूजिक ऑल्सो. सो दैट टाइम टू टाइम, वेदर आई हैव डन अ कौन तुझे और आई हैव डन एक्सट्रीमली रोमांटिक सॉन्ग्स है बोल दो ना जरा या रोके ना ना, तो साइड में देर इज अ सूरज डूबा है, देर इज अ सौ आसमान, देर इज अ सैया सुपर स्टार, देर इज आशिक सरेंडर हुआ, कर गई चुल, सो वो भी एक साइड एज एन आर्टिस्ट है. सो आई थिंक वो एवरी वन शुड गेट दैट स्पेस टू शो. आई थिंक एक अच्छा क्रिएटर मिले और डायरेक्टर हो विद अ विजन, so I think good music can happen. Anyone can make a good song.
2: जो एक चीज अभी अच्छी लग रही है ना, नाउ पीपल नो कि इस गाने के पीछे इज अमाल मलिक. यू नो
0: Yes.
2: पीपल न्यू द सॉन्ग्स कि ये गाना है, ये पॉपुलर गाना है, दिस इज अ हिट सॉन्ग, बट नाउ दे नो कि अमाल मलिक इज, एंड देयर इज अ डिफरेंस
0: बिल्कुल.
2: बिटवीन अरमान मलिक एंड अमाल मलिक. अरमान मलिक भाई अलग है, अमाल मलिक
0: वो तो
2: अलग
0: हम लोग
2: है.
0: में लाइफ लॉन्ग कंफ्यूजन है, मैं कल दाढ़ी निकाल दूं तो मैं अरमान मलिक सबका छोटा भाई लगूं, तो ऐसा होते ही रहता है. बट या दिस थिंग रियली वर्क आउट वेल, बिकॉज ये एक अंडरस्टैंडिंग भी थी मुझे, दैट्स अ वेरी वेरी बिग शो दैट आई एम गोइंग ऑन. और मैं खुश था बिकॉज मैं चाहता था कि मेरे कम्युनिटी से, यू नो ऑल दीज इयर्स आई हैव ऑलवेज वॉइस्ड ओपिनियंस अबाउट कि हाउ म्यूजिक डायरेक्टर्स और लिरिक्स राइटर्स हुआ द ऑथर्स क्रिएटर जो है गाने के, उनको कोई क्रेडिट नहीं करता सही से, उनके बारे में बताता नहीं है. इवन लास्ट मेरे ही डेकेड में ये चीजें हुई है, जहां मैं बड़े बड़े लेबल से लड़के या रेडियो स्टेशन से भी बात करके मैंने बोला आप म्यूजिक डायरेक्टर लिरिक्स राइटर का नाम लेके आप गाना इंट्रोड्यूस करो, और यूट्यूब पे 16-16 लाइन के क्रेडिट्स पहले बार मेरे गानों में आए, बिकॉज इट इज टू ऑलवेज बी म्यूजिक लिरिक्स सिंगर एंड लेबल का नाम, एंड कोई भी गिटारिस्ट का नाम नहीं है, किसने मैंडोलिन बजाया, किसने माउथ ऑर्गन बजाया, किसी को क्रेडिट नहीं देते थे. सो मी एट 24 वेज दैट फाइट अगेंस्ट लेबल सेइंग कि नो माय एंटायर टीम्स क्रेडिट विल कम, क्योंकि दैट इज वेयर दे विल बी एबल टू आल्सो यू नो शो कि मैंने इस गाने में किया है, मैं सक्सेसफुल गाने का हिस्सा हूँ. कैसे प्रूव करेगा कोई म्यूजिशियन कि मैं था इस गाने में, इज देयर लाइवलीहुड ऑल्सो. ये चीजें बॉलीवुड में बहुत रही है, विच आई थिंक मेरे जनरेशन में सिर्फ सैडली मैंने जाके लड़ाई की इन चीजों पे. अपनी कम्युनिटी वेयर आई बिलोंग फ्रॉम एंड इफ आई एम द पर्सन हुज वॉइस्ड ऑल दीज इयर्स, देयर इज अ मूवमेंट, देयर इज अ रिबेलियन, देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग दैट अ लॉट ऑफ यंग आर्टिस्ट जो जो मिलते हैं मुझे बोलते सर आपने वो जो बात बोली, आपने जो स्टैंड लिया, इसकी वजह से हम इंस्पायर हुए एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड दैट हाउ टू टेक आर नेक्स्ट स्टेप इन दिस इंडस्ट्री.

0: Trend Makers.
1: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
2: मुझे भी।
1: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
3: सन टूर्स के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 फॉर सन टूर्स, दैट्स 0800 478686। लिमिटेड स्पेसेस।
4: At Bunnings Trade, no matter where you are, we're here to help. Our builders team with dedicated account managers has got you covered at every building stage, from the front fence to the back gate. Call 0800 134 872 to find out more. Bunnings Trade, helping business is our trade.
5: Here at Arnott's New Zealand, that sound can mean something really special. It's time for a bloody important meeting. A group of us head off to our local blood donation centre to give blood and plasma. Together, that's a lot of lives our team is helping save.
6: Join Bella and the team at Arnott's New Zealand. Head to nzblood.co.nz, book your donation, then send a bloody important meeting invite to your crew. Give blood, give plasma, save lives.
7: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
8: HBO Max says they're all killer, no filler.
9: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
8: Exactly.
9: Right, we'll see. What have they got?
8: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, one battle after another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
9: Whoa, okay, I get it. Fair call.
8: HBO Max, all killer, no filler. Stream now.
0: The beat of Bollywood.
10: World's best Hamari Good Brands me.

0: फाइनल्स में मेरा बहुत इम्पोर्टेंट एक दिन था. वेर आई वाज वर्किंग एंड देयर वाज अ शूट. आई होस्टेड अ रियलिटी शो ने रियलिटी शो विद अर्जुन बिजलानी. वी हैड डन अ शो कॉल्ड स्टार परिवार वेर आई वाज द म्यूजिकल होस्ट. तो मैं होस्टिंग मैंने भी की थी तभी. सो आई टू गेट आउट ऑफ माई वैन एंड हम जब सेट पे जाते थे सुबह 7-8 AM कॉल टाइम. वन लेडी यूज टू कम एंड शी वुड कैसे पता नहीं व्हाट हर सेंटीमेंट शी वुड स्टॉप मी. शी वुड प्रे डू आरती गिव मी ब्लेसिंग्स. आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग एंड आई हैज टू गो. तो मैं गया अंदर बोला आई डिडंट वांट टू से आई सेड आई डोंट नो द पर्सन ओनली आई सेड बट ठीक है शी इज डूइंग समथिंग शी इज ब्लेसिंग मी शी इज लाइक ठीक है. आई डोंट वांट टू मेक समवन फील एनीथिंग रॉन्ग कि भाई मैं इगोस्टिक हूं नहीं. कभी कभी होता है यू डोंट सी इट बट वो आके वैन के बाहर 4 घंटे ये रुके हैं. और फिर उसके बाद शाम को आई केम बैक फ्रॉम द शॉट फिनिशिंग द होल शेड्यूल. आई आस्क्ड आंटी आप कौन हो आप इतने देर से आप मेरे वैन के आपको लगता है मैं कोई आपने मुझे गलत तो नहीं पहचान लिया मुझे डाउट था ऐसे कोई और.
1: अर्जुन कपूर
0: शी टोल्ड मी अ वेरी समथिंग विच शुक मी यू नो दैट नाइट आई मेट मॉम डैड. आई टोल्ड देम कि ऐसा आज सुना मैंने विच मोटिवेटेड मी 100x. शी सेड कि आई लॉस्ट माई हस्बैंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड इट इज ओनली थ्रू मैं रहू या ना रहू एंड चले आना दैट आई फील ही स्टिल अराउंड एंड आई स्पीक टू हिम एंड आई सिट ऑन माई बालकनी एंड आई हैव चाय एंड आई पुट वन कप देयर ऑल्सो एंड आई फील मैं वो गाना चला देती हूँ और वो सामने यानी आई कैन ऑल्सो क्राई ऑन इट. इट्स क्रेजी बट शी सेड. तो लाइक मेरे एक म्यूजिक प्रोड्यूसर दोस्त मेरे मैनेजर हम लोग सबका Times just it just froze in that second when she said that. Nah? Then I looked at her and I hugged her and I said I'm glad. Ki. I said main kuch aisa kar paya life mein. I am only not able to talk right now, but that is the truth. Because it's crazy, na? Like this is the room, this is the place. Ek chota sa studio hai in Mumbai where maine apne dil se whatever I felt in my life, I have put it out. And it's like people's reason to live, people's reason to converse with people they've lost. There was another artist, a very big artist, who I'll not name at all, who had messaged me and said that I was in a dark space and I felt that life should end right here, how it's going. A singer, a musician, not from my industry, somewhere outside. And said ki I would listen to a song called Tere Mere, which is from the movie Chef.
1: Chef.
0: Stopped me from taking my life.
1: Wow.
2: Oh my God.
0: So if these things my music can do, then I've been sent here for some other higher purpose. Main aise nahi bheja gaya mujhe aur bahut gaane karne logon ke liye. That inspired me ki jitna bhi mushkil ho, people say whatever. Brand me, tag me, call me bad boy, call me Kabir Singh or music, anything. But they cannot cut this connection that I have with my listeners and my people.

0: You should make these kind of more songs, Roke Na Roke Naina.
1: Yeah, I know. I think
0: These.
1: now with movies like Saiyaara and other romantic films
0: Yeah.
1: coming, if I get a chance to do something, main launga. I think mere liye romantic music has become a challenge also now in a way. I mean, it's something that comes naturally to me. With all the love that's piled up on a song like Chale Aana or like Bol Do Na Zara Kaun Tujhe, meri responsibility badh jati hai ki main bahut gehra aur achha gana lau. Kyunki I don't want it to be a song that comes because I'm actually all these years I've only worked to like make music which remains. There's never been a plan ki hit hona hai. Wo hit hua hai kyunki upar kuch cosmic beautiful conspiracy hui aur mom dad ki blessings hai and that's about it. But the plan is never to let go of melody and good lyrics. I think how much are the soundscape changes, AI comes through, things happen. The value for a good song, the value for a real emotion in a song is what people will miss. And I think I'm here to
0: Amazing.
1: bring that. Till I'm in this world, I think people will keep listening to good melodies from me.
0: Yeah, 100%. This is your strength, actually.
2: I think
0: यही चीज है.
2: it's very important also because melodies ही है जो 90s की जो हमें अभी भी याद है ना, जो भी
0: रूटीन
2: हमें याद है,
0: नॉस्टैल्जिक.
1: क्योंकि क्योंकि सिंपल थी, रिलेटेबल थी, राइटिंग अच्छी थी और दैट वाज द की. यानी वो एफर्ट दिखता है कंपोजर ने कुछ, टीम ने, जिसने भी, सिंगर्स ने, सब ने कुछ बनाया पीस ऑफ म्यूजिक दैट दे वांट दिल से निकाल के. इट्स लाइक अ पीस ऑफ देयर हार्ट दे पुटिंग एवरी टाइम इनटू द वर्ल्ड. वो एफर्ट आज थोड़ा कम है बट देर आर पीपल एंड आई थिंक द मोर पीपल स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम देयर हार्ट एंड पुटिंग म्यूजिक आउट देयर, नॉट जस्ट की नंबर्स या एल्गोरिथम इसको मैच कर रहे हैं, तो होगा.
0: यस
1: आपको क्या प्रॉब्लम अगर आपको कम व्यूज आए, क्या प्रॉब्लम अगर कम स्ट्रीम्स आए. मेरा ये थॉट प्रोसेस ही नहीं है. इट्स अमेजिंग, इट फील्स ग्रेट, इट्स इम्पोर्टेंट. वैलिडेशन है, आप नंबर वन आ गए, है ट्रेंड हो रहा स्पॉटिफाई आईट्यून्स, अमेजिंग, इट फील्स गुड. बट किसी एक आदमी को भी आपके काम को सुन के लगता है अरे यार दिस सॉन्ग इज माइन या दिस सॉन्ग सेव्ड मी. आई हैव हैड दोज मोमेंट्स इन माई लाइफ. माई रीजन ओनली टू डू म्यूजिक वॉज ऑब्वियसली माई लेगेसी, माई लीनेज, एवरीथिंग वॉज देयर. इट पुश्ड मी स्लोली टुवर्ड्स इट. बट माई फादर्स ड्रीम्स, माई अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आई फेस्ड इन लाइफ, ये सब रियल चीजें से ही ये गाने बने. आई हैव निभाउड द स्क्रिप्ट बट आई हैव नेवर फॉरगॉटन कि ये गाना फिल्म के बिना या स्क्रिप्ट के बिना, अगर आप गाड़ी में सुनो, रेडियो पे सुनो, अकेले में स्ट्रीम करके सुनो, यू शुड फील कि ये मेरा गाना है.
0: यस
1: इफ इट डजंट फील दैट वे इन वॉट एवर फॉर्म, इट शुड फील रिलेटेबल. आइदर इट्स मेड सम टेकन यू बैक द लिसनर टू अ टाइम वेर ही फेल्ट और शी फेल्ट कि ये मैंने जिया है, ये आई रिलेट टू दिस वर्ड, दिस लिरिक्स, व्हिच हैपेंस विद अ सॉन्ग लाइक चले आना और मैं रहूं या ना रहूं. मुझे लोगों ने
0: या
1: आके बोला है. एंड इफ यू सी कॉमेंट्स ऑल्सो, यानी आई नो एवरीथिंग कैन बी फैब्रिकेटेड टुडे, मार्केटिंग, प्रमोशन, कमेंट्स, पैकेज, सब कुछ होता है सोशल मीडिया के एज में. बट व्हेन यू सी पीपल राइट देयर स्टोरी, आई वाज इन सेवेंथ स्टैंडर्ड एंड दैट वाज द लास्ट टाइम आई सॉ हर और ये सब, देन यू नो दैट इट इज टचिंग सम अदर कॉर्ड एंड
0: आई विल
1: कुछ
0: गिव
1: अलग
0: यू
1: रेट
0: एग्जाम्पल,
1: हो.
0: रिसेंट एग्जाम्पल अमाल. सो व्हेन योर मॉम वाज हियर, ज्योति मलिक, वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट. So there was a guy over there. He came a student like 4 months ago over here in New Zealand, and he was doing a live singing.
2: वो
0: So
2: लाइव गिटार पे
0: live
2: गाने परफॉर्म
0: guitar वो कर रहा
2: कर रहा था.
0: था,
1: या आई
2: and
1: नो,
2: that too
1: मंडे
2: on a Monday night. Yeah,
0: night.
2: it was so
0: Okay,
2: shocking.
0: मैंने उसको
2: न्यूजीलैंड
0: बोला, मैंने बोला कि आपको कोई गाना गा सकते हो, अमाल मलिक का कोई गाना पता है? He said, okay, what about मैं रहूँ ना रहूँ? मैं क्यों, okay, if you can do the lyrics without looking at the phone. उसको पूरा गाना याद था
1: में,
0: without looking at the
1: ये
0: phone.
1: म्यूजिक की जीत है. आई थिंक दैट व्हेन इट्स डन देन इट डन द सॉन्ग इज इन हिज सोल. यानी नो अमाउंट ऑफ मार्केटिंग, नो अमाउंट ऑफ दैट कैन कीप इट देयर फॉर सो मेनी इयर्स. यानी वो थोड़े वक्त के लिए हो सकता है, अगर उसको, इफ ही आर नॉट एज अ म्यूजिशियन, ही मस्ट हैव लिव्ड इट, फेल्ट इट. आई हैड मेड दैट सॉन्ग फॉर माई ग्रैंड फादर, बट उस गाने की सिंपलिसिटी ऐसी कि वो हर रिश्ते पे जाता है. यू कैन फील इट फॉर अ फ्रेंड, यू कैन फील इट फॉर फैमिली, फॉर समवन यू लव, हर चीज पे. एंड दैट इज द सॉन्ग ऑल्सो यू ब्रॉट अप, मैं रहूं, दिस इज व्हाट आई से ऑल्सो, कि मैं रहूं या ना रहूं, लोग मुझे इस गाने से याद रखें. माई ड्रीम इज दैट हाउ मच एवर आई डू, पीपल शुड नो दैट दिस बॉय एट 25 मेड सम पीस ऑफ म्यूजिक विच इज कॉल्ड मैं रहूं या ना रहूं, एंड इट ब्रोक थिंग्स, इट ब्रोक बैरियर्स, एंड इट वॉज सो सिंपल कि उसको कुछ और चाहिए नहीं था. इट केम इन लाइक अ ब्लेसिंग.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: बबीता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर। यार
2: क्यों क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
4: Nissan Big Deals ends June 22nd. Up to 5K savings and accessories on select new Navara models. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8, backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
5: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
6: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. The failure of a multi-million dollar border security project upgrade has sparked integrity concerns within MB. Immigration Minister Erica Stanford has ordered an investigation. She claims it was doomed from the start. The annual rate of food price inflation saw a slight uptick in May. Stats NZ says food prices rose 3.2% per annum. Foodstuffs says at its stores, white bread was up 37%. Conversely, tomatoes were 32% cheaper than last May. The Infrastructure Commission's National Infrastructure Plan has received the government's blessing. The 30-year plan was developed independently by the Commission. In sport, football updates brought to you by Hisense. The All Whites drew 2-2 with Iran in their World Cup opener. The All Whites led twice with a goal in each half from Elijah Just. Next, the All Whites play Egypt on Monday afternoon from 1. And the teams for Saturday's Super Rugby Pacific Grand Final will be released at 4 tomorrow afternoon. There's one change at least for the Hurricanes. Lock Caleb Delaney is under concussion protocols.
5: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
7: World's best. Hamari good brands nahi hai.
5: Hum. Night Cafe on Hum. A moment. Krish ka magic. Only on Hum.
8: A very good evening, everyone. Welcome to the show. मैं क्रिश आ गया हूँ, हाजिर खिदमत हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ नाइट कैफ़े में, जो हमारा बहुत ही प्यारा शो होता है। वीक नाइट्स हम लेकर आ जाते हैं मंडे टू थर्सडे। आज 8 to midnight मैं आपका साथ दूंगा, और आज तो स्पेशल भी है क्योंकि ट्यूसडे नाइट है, 16th June है, और आज द मोस्ट अवेटेड सेगमेंट जो हमारा होता है कोक स्टूडियो रिलोडेड, जिनको सुनना है कोक स्टूडियो के गाने, वो आ जाते हैं हमारे करीब, रेडियो के करीब, इन गानों को सुनने के लिए। तो वो शुरू करने का टाइम आ चुका है आपके लिए। देर ना करते हुए, प्रेजेंटिंग टू यू कोक स्टूडियो रिलोडेड।
5: ये है कोक स्टूडियो रिलोडेड ऑन हम।
8: वेलकम एवरीवन, कोक स्टूडियो रिलोडेड में आपका स्वागत है, जहां पर कोक स्टूडियो भारत और कोक स्टूडियो पाकिस्तान के गाने हम पेश करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं अबाउट कोक स्टूडियो। आज हम बहुत कुछ लेकर आए हैं कोक स्टूडियो पर बातें। काफ़ी गाने जो मैं आज प्ले करूंगा वो आपने पहले हम पर नहीं सुना है, तो एक के बाद एक जो नए नए सॉन्ग्स हैं वो लेकर आते हैं। वंडरफुल कॉम्बिनेशन और इन्फ्यूजन ऑफ वेस्टर्न और क्लासिकल सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स, रीजनल सॉन्ग्स, ये सभी कुछ जो होता है वो हम लेकर आते हैं। पहले तो मैं आपको सुनाता हूँ दो बैक टू बैक सॉन्ग्स, और फिर आज कोक स्टूडियो इन्फॉर्मेशन का जो सिलसिला है, जो कन्वर्सेशन है, वो आपके साथ हम शुरू करेंगे। आपको बताएंगे इन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कोक स्टूडियो भारत और कोक स्टूडियो पाकिस्तान। फिलहाल एंजॉय करें ये प्यारे गाने जो पहली बार आप हम पर सुनने जा रहे हैं। क्रिश के साथ हैं, वेलकम टू द शो एवरीवन।

0: Radio Reloaded.
1: कोक स्टूडियो रिलोडेड आपके लिए जारी है। कोक स्टूडियो पाकिस्तान और भारत के गाने आप तक हम लेकर आते हैं। कुछ और फन फैक्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं। इंडिया का म्यूजिक इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा है, इट्स लार्जर म्यूजिक इंडस्ट्री, लेकिन कोक स्टूडियो पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल और सॉन्ग्स हिस्टोरिकली काफ़ी ग्रेटर इंटरनेशनल कल्चरल इम्पेक्ट दिया है और काफ़ी लोगों ने कहा है कि इट इज़ वन ऑफ पाकिस्तान्स मोस्ट सक्सेसफुल कल्चरल एक्सपोर्ट्स जो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया फॉलो करती है, पूरी दुनिया इस इन गानों को सुनते हैं। काफ़ी फैंस का कहना है कि ओरिजिनल पाकिस्तानी सीजन्स लाइव जैम सेशंस की तरह फील हो रहा था। केमिस्ट्री बिटवीन म्यूजिशियंस परफॉर्मिंग टुगेदर इन वन रूम, ये एक सिग्नेचर फीचर है ऑफ अर्ली कोक स्टूडियो पाकिस्तान और जिससे कोक स्टूडियो गाने बहुत मशहूर हुए थे। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे कोक स्टूडियो सॉन्ग्स मैं आपको सुनाता हूँ बैक टू बैक। एक और दो गाने राहत फ़तेह अली खान और खुरंतवलीन बालोच की आवाज़ों में जो दो गाने आप सुनेंगे और उसके बाद में और भी इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स लेकर आएंगे अबाउट कोक स्टूडियो।

0: Studio Reloaded on Hum.
1: कुक स्टूडियो रिलोडेड जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ इंटरेस्टिंग खबरें भी लेकर आ रहा हूँ। और अगर मैं कंपैरिजन करूँ कुक स्टूडियो भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो फॉर्मेट ऐसा है कि भारत का जो कुक स्टूडियो गाने हैं ये रिलीज़ करते हैं इंडिविजुअल सॉन्ग्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और कोई टी वी एपिसोड नहीं होता है। वहीं पर जो ओरिजिनली फेमस लाइव स्टूडियो परफॉर्मेंस होते थे कुक स्टूडियो पाकिस्तान में, इसमें आर्टिस्ट रियल टाइम में गाते थे। इसके अलावा लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो कुक स्टूडियो भारत के काफ़ी गाने काफ़ी लैंग्वेजेस में गाया जाता है। कुक स्टूडियो सॉन्ग्स हिंदी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, तमिल, बंगाली एंड मेनी अदर रीजनल लैंग्वेजेस। वहीं पर अगर कुक स्टूडियो पाकिस्तान के गानों को देखें तो उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची और सराइकी और अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी इस गाने को गाया जाता है। टैलेंट डिस्कवरी पर बातें करेंगे बहुत ही जल्दी, कुछ और प्यारे गाने आपके नाम।

कोक स्टूडियो रिलोडेड जारी है, क्रिश का साथ है, प्यारे प्यारे कोक स्टूडियो सॉन्ग्स जो पहली बार के लिए आप हम पर सुन रहे हैं वो भी पेश कर रहे हैं, कोक स्टूडियो इन्फॉर्मेशन भी लेकर आ रहे हैं। वैसे टैलेंट डिस्कवरी की बात करें तो कुल मिलाकर वेल मोर देन 50 आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग्स में इन इट्स फर्स्ट सीजन। वहीं पर कोक स्टूडियो पाकिस्तान में देखा जाए तो काफ़ी स्टार्स बने और काफ़ी ने अपने करियर को रिवाइव किया कोक स्टूडियो सॉन्ग्स से, और काफ़ी फोक और रीजनल म्यूजिशंस को जो काफ़ी दो तीन चार डेकेड्स से गा रहे थे उनको जो नाम मिला है इन गानों को गाने के बाद वो इतिहास गवाह है। और इसलिए कोक स्टूडियो पाकिस्तान के इन फनकारों को हम सलाम करते हैं, कितने प्यारे प्यारे गाने इन्होंने दिया है। मेन फोकस कोक स्टूडियो भारत के है, रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। वहीं पर कोक स्टूडियो पाकिस्तान में ब्लेंड्स सूफी फोक क्लासिकल कवाली और मॉडर्न जॉनर्स जैसे पाकिस्तान डाइवर्स कल्चर्स को लेकर गाने बनाया जाता है। कुछ और प्यारे गाने आपको सुनाते हैं।

0: डिस्को हो या रॉक एंड रोल, तुमसे है तुमसे प्यार, डाउनलोड रोवा टू लिसन हम 80s जुकबॉक्स।
1: हो गई इंतजार की
2: हम। Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic holiday destinations in the Pacific. Fly return to Samoa from just $795 or to Tonga return from only $735. Take that well-deserved holiday in Fiji and beyond with Fiji Airways. Sail on now. Book today at fijiairways.com or call your travel agent.
3: From friends to lovers to chaos. Get ready for a crazy ride. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
4: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है।
5: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आते हैं और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
3: Cocktail 2, releasing in cinemas on 19th June. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
6: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
7: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
6: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
8: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
9: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
10: Studio Reloaded. Aapka moment, Krish ka magic, only on Hum.
11: कोक स्टूडियो रिलोडेड आपके लिए जारी है कुछ ही देर तक और ये चलता रहेगा 9 PM तक। ये प्रोग्राम है आपके लिए कुछ और प्यारे कंपैरिजन जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, लेसन ऑन फैक्ट्स अबाउट कोक स्टूडियो भारत और कोक स्टूडियो पाकिस्तान, ये लेकर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो कोक स्टूडियो का जो बिग पाकिस्तान का बिगेस्ट हिट पसूरी था, इंटरनेशनल फेनोमेनन बन गया और पाकिस्तान म्यूज़िक टू का इंट्रोडक्शन हुआ टू मिलियंस ऑफ लिसनर्स आउटसाइड साउथ एशिया। और भारत के जो गाने हैं वो रीजनल डाइवर्सिटी पर फोकस करता है, जैसे बॉलीवुड सेंट्रिक म्यूजिक प्रोजेक्ट्स होता है वैसा कुछ नहीं, लेकिन एक्टिवली आर्टिस्ट जो स्मॉलर टाउन से होते हैं, लेसर नोन म्यूजिकल ट्रेडिशंस जो होते हैं, ऐसे गानों को कोक स्टूडियो भारत में लेकर आया जाता है। कोक स्टूडियो रिलोडेड में आज के लिए इतना ही, एक और गाना आपको सुनाते हैं और याद रहे 9 PM टॉप ऑफ द आवर पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स रहेगा, फॉलोड बाय नॉन स्टॉप म्यूजिक आपके लिए।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: निसान बिग डील्स सिर्फ 22 जून तक सिलेक्ट न्यू नवारा मॉडल्स पर पाइए $5,000 तक की बचत प्लस एक्सेसरीज भी। टेक एडवांटेज विद द बिग वन ऑन एक्स ट्रेल एंड डिस्कवर द पेट्रोल V8 बैक्ड बाय निसान्स अप टू 10-year वारंटी। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
3: Good evening to you with the latest at 9. I'm Jeff Bryan. The 30-year infrastructure plan has received backing from parties across Parliament. The Coalition has agreed to all 16 recommendations, with more work needed on 3. Labour and the Greens have also broadly backed the government response. One person is critically injured and has been taken to hospital after an assault in central Auckland earlier this evening. One person is in custody. A decision to refocus the medical council away from politics is cause for concern among some of those it regulates. Health Minister Simeon Brown has appointed a new chair and deputy chair, concerned about an ideological agenda. In sport, football updates brought to you by Hisense, and the All Whites came close today to a first World Cup finals win. They led twice against Iran. It finished 2-2. The All Whites play again on Monday afternoon from 1 o'clock, taking on Egypt. Tomorrow, it's the opening group matches for two of the heavyweights, France and Argentina. And at 1:30 in the morning, the White Ferns will be starting their second group match at the T20 Cricket World Cup in England. They're playing Sri Lanka in Southampton.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
4: Night Cafe on Hum.
2: Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
5: नाइट कैफ़े में आपका स्वागत है। वेलकम बैक एवरीवन। आपके लिए चलो अभी शुरू करते हैं नाइट कैफ़े 8 to 9। आपने सुना कोक्स रेडियो रिलोडेड स्पेशल सेगमेंट जो हमारा होता है आपके लिए नाइट कैफ़े के अंदर। अभी नाइट कैफ़े शुरू करते हैं और वेलकम एवरीवन। इट्स 16 जून, स्पेशल डे है, आपको याद करेंगे बहुत ही जल्दी। बेस्ट विशेज हम आपको देना चाहेंगे। हैप्पी बर्थडे टीम हम की ओर से अभी मैं आपको विश कर देता हूँ। और अगर कोई स्पेशल ओकेजन हो उसके लिए भी बहुत सारी बधाइयाँ। ऑनलाइन लिसनर्स, नाइट शिफ्ट वर्कर्स, आपको भी शामिल करते हैं। आपके लिए है बैक टू बैक सॉन्ग्स। अभी से लेकर 30 मिनट्स तक आप सुनेंगे बगैर डिस्टर्बेंस के आपके प्यारे गाने। एंजॉय एवरीवन।

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: एक के बाद एक आपके फेवरेट सॉन्ग्स हम लेकर आते हैं हम पर बिकॉज वी प्ले बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स में क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. दी एफ आई एच हॉकी वीमेंस नेशंस कप ये नॉर्थ हार्बर में आ रहे हैं फ्रॉम 15th to 21st of June और हम इज प्राउड टू ब्रिंग यू स्टिक विद हम. ये आपका चांस होगा टू बी बिहाइंड द वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वीमेन जब ये अपना टाइटल डिफेंड करेंगे ऑन होम सॉइल. 8 कंट्रीज है, वर्ल्ड क्लास हॉकी होंगे एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल हॉकी इवेंट्स होगा जो न्यूजीलैंड में आपने देखा है 4 years. अगर आपको यहाँ पर रहना है तो मतलब जाना है इस इवेंट में तो आपको हमें सुनते रहना है क्योंकि आपका फेवरेट अनाउंसर आपको कॉल करने के लिए बोलेगा. फिर आपको हॉकी टेक्स्ट करना है 5599 पर फॉर योर चांस टू विन अ डबल पास टू द गेम्स. और हमें स्टैंड्स को पैक करना है, वी हैव टू मेक सम नॉइज और हमारे वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वीमेन को सपोर्ट करना है. टिकट्स आप hockeynz.flicket.co.nz से ले सकते हैं. स्टिक विद हम और बी पार्ट ऑफ द एक्शन. मैं कृष्ण.

0: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत हो.
4: आए आए बताओगे.
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
6: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yar.
7: Kyun? Kya hua?
6: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi to itne documents mange ki bas pooch hoi mat. Ek hafta ho gaya. No rest. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी. दैट्स 0800 564 424.
8: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
9: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
8: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
9: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं. इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड. ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
10: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा.
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: हम
1: Night Cafe on Hum.
3: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. इंडियन इंक थिएटर कंपनी प्रेजेंट्स बलून डॉग. ये एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मर है जेकब राजन, जो अभी स्टेज पर आपके लिए लेकर आएंगे इन द वर्ल्ड प्रीमियर ऑफ बलून डॉग, जो एक डीपली मूविंग और टाइमली न्यू प्रोडक्शन है जो रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी कबूलीवाला से प्रभावित है. और 21st सेंचुरी में इसकी सेटिंग है इस कहानी की ब्यूटिफुली टेंडर टेल, जिसमें अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप बिटवीन अ 5-year-old गर्ल और एक लोनली माइग्रेंट वर्कर के बीच में होता है. और कहा गया है कि सोल्ड आउट प्रीव्यू सीजन के बाद इंडियन इंक्स लेटेस्ट थिएट्रिकल मास्टरपीस में ह्यूमर, हार्ट, लाइव ओरिजिनल म्यूजिक, डांस और प्योर थिएट्रिकल मैजिक होने जा रहा है, जो बहुत आपको आगे तक लेकर जाएगा, जिसमें रिजिलियंस और ह्यूमैनिटी देखने का मौका मिलेगा, करेज, कनेक्शन और सीइंग वन अनदर बियॉन्ड कल्चर, क्लास एंड सर्कमस्टांस. ये क्यू थिएटर इन ऑकलैंड में होगा 3rd to 20th of June. तो आप ये मिस ना करें. दिस इज़ गोइंग टू बी एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस. टिकट्स के लिए iticket.co.nz आप विजिट करें.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hu. Oakland, get ready to laugh until it hurts. Kyunki ab hamare Facebook page par agar aap jaate hain, show us your fun side aur caption kare the photo jo wahan par posted hai, aap draw mein shamil hokar double pass jeet sakte hain. Trivision events ki or se ye show aane ja raha hai. Krishna, Abhishek aur Rajiv Thakur live. Isme iconic characters aur razor sharp wit hoga. Aur ye ek comedy night hai jisko aap miss nahi kar payenge ya nahi karna chahiye. The great comedy night, Krishna, Abhishek aur Rajiv Thakur live. Ye Oakland mein hone ja raha hai for the very first time. VIP seats khatam ho chuke hain, sold out ho chuke hain. To aap apna tickets aaj hi jaldi le le. 18th July ko ye hoga Victory Convention Center. Tickets aap bookmyevent.co.nz se le payenge. Agar aap ko online ticket kharidne mein mushkil रात का शाम सामना अगर आप कर रहे हैं तो आप कॉल कीजिए 021-043-2720 पर और भी जानकारी के लिए. आफ्टर पे ऑप्शन अवेलेबल है. गेट रेडी टू लाफ लाइक नेवर बिफोर. तो द ग्रेट कॉमेडी नाइट, कृष्णा, अभिषेक और राजीव ठाकुर लाइव ओकलैंड में देखने का मौका है आपके पास. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ एंड यू लिसनिंग टू हम.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a Smart Shopping Buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.
2: A story of love, memory and longing against the backdrop of the partition of India.
3: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
2: Director Imtiaz Ali's romantic period drama मैं वापस आऊंगा, starring Diljit Dosanjh, Nasiruddin Shah, Shalmari Bagh and Vedang Raina.
3: ये प्यार जहर की तरह होता है पता है, इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
2: मैं वापस आऊंगा, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
4: Ready to escape and get rewarded with Singapore Airlines? Book your getaway with special fares to destinations across Europe, Asia and beyond and receive a bonus $150 Prezi card when you book online using your MasterCard. That's an extra $150 to spend in Singapore, Thailand, Vietnam, Delhi, London and more. Escape the cold and book your 2026 getaway today at singaporeair.com. Hurry, deals end June 26. T's and C's apply.
5: Nissan Big Deals सिर्फ 22nd जून तक सिलेक्ट न्यू नवारा मॉडल्स पर पाइए $5,000 तक की बचत प्लस एक्सेसरीज भी. टेक एडवांटेज विद द बिग वन ऑन X-Trail एंड डिस्कवर द पेट्रोल V8 बैक्ड बाय Nissan's अप टू 10 ईयर वारंटी. T's and C's apply.
6: हम टाइम चेक. हम न्यूज़ ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक.
7: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. The Immigration Minister admits confidence in her own officials has been knocked by this failed $33 million project. Erica Stanford has ordered a review into the technology upgrade for border control that was canned after 7 years. Labour is promising free maternity scans if elected in November. Leader Chris Hipkins says some pregnant women are paying up to $90 per scan. And the government has more than 150 outdated acts in its sights as part of a legislative cleanup. A prime example is the 1919 Wellington Milk Supply Act, which gave Wellington Council a milk monopoly after World War I and almost led to a court case 5 years ago. In sport, football updates brought to you by Hisense. Another four games tomorrow at the World Cup, including France playing Senegal. Senegal's 1-0 win over France in the opening match of the 2002 World Cup remains one of the greatest upsets in football history. And Saturday's Super Rugby Pacific Grand Final, Hurricanes lock Caleb Delaney sidelined by concussion protocols.
6: Sports News brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
8: Playing Bollywood's biggest hits.
6: Night Cafe. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
9: You're listening to Night Cafe. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. 16 जून है अभी, जून के मिड को भी हमने पार कर दिया है और बहुत ही तेज़ी से समय आगे भागता जा रहा है और विंटर भी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है. पीक विंटर आई थिंक जुलाई में होता है, तो और भी ठंड होने की संभावना है. आप वार्म रहे, जो टू थ्री लेयर्स ऑफ क्लोथिंग रिकमेंडेड होता है पर डे की बेसिस पर, आप वो ज़रूर ध्यान में रखें और वैसे ही फॉलो करें क्योंकि बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा है. जैसे मैं थोड़ा सर्दी ज़ुकाम से भी गुजर रहा हूँ एंड इट इज़ अनोइंग क्योंकि बहुत मुश्किल होता है हर एक चीज़ करना. तो आप भी वार्म रहे, यही हम शुभकामनाएं आपको देते हैं, यही बेस्ट विशेस देते हैं. अभी आपके लिए 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक में लेकर आया हूँ. प्यारे प्यारे गाने तो है ही जो आप बहुत इन्जॉय करेंगे. कुणाल गांजावाला, अरिजीत सिंह, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, अनुराधा श्रीराम, अनिरुद्ध रविचंदर और अरमान मलिक जैसे सिंगर्स हैं जो आप इन्जॉय करेंगे. इनके गाने इन्जॉय करो और फिर उसके बाद में और भी इवेंट्स पर बातें करेंगे. सामाजिक सूचनाएं हैं वो भी आपके लिए लेकर आएंगे.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, I'm playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सहजा योगा ग्लोबल मेडिटेशन ये वीकली फ्री मेडिटेशन सेशंस आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मेडिटेशन क्लासेस आर ओपन टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ एक्सपीरियंस और ये एंटायरली फ्री है क्योंकि आपके मेंटल वेलबींग को ये खास ध्यान में रख के ये मेडिटेशन जो सेशंस है आपके लिए रखा गया है. मरीज बे में एड्रेस है आउटरैम हॉल 478 बीच रोड मरीज बे. एवरी मंडे होगा 7:15 PM टू 8:15 PM. मारिया से बातें करें और जानकारी के लिए 022-303-9918 पर. माउंट एल्बर्ट में अवारा का सी स्काउट्स हॉल रेंज व्यू रोड मरी हॉलबेग पार्क माउंट एल्बर्ट आप जा सकते हैं. सैटरडे 10 AM टू 12 PM रहेगा. कॉन्टैक्ट आरती 022-404-8386 पर. हविक में है द ग्रीन रूम अक्स ब्रिज सेंटर 35 अक्स ब्रिज रोड हविक. एवरी ट्यूजडे होगा 7 PM टू 8 PM 022-566-9445 पर आप कॉन्टैक्ट कर पाएंगे. एंड फाइनली नॉर्थ कोट में 27 लेक रोड नॉर्थ कोट ओकलैंड एवरी ट्यूजडे यहां पर होगा 7 PM टू 8 PM. ओमकार से बातें करें और जानकारी के लिए 022-107-4456 पर. मैं क्रिश आपके साथ.

0: Get ready, New Zealand. Hum is proud to bring you Stick with Hum, your chance to support the Vantage Black Sticks women at the upcoming FIH Hockey Women's Nations Cup. Experience world-class international hockey right here at home as top teams battle for glory. Plus, you could win a double pass to the games. Simply listen for the cue to call from your announcer, then text hockey to 5599 to enter. Stick with Hum and get behind our Vantage Black Sticks women.
1: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale on now. Here's your chance to get beautiful floors and unbeatable value on their range of best-selling carpet and hard flooring. And to make it even easier, ask about their 16 months no payments and no interest offer with QCard. So find the flooring that suits your style and your budget at your local Flooring Extra showroom with trusted advice every step of the way. TC's, fees and credit criteria apply.
2: Flooring Extra. Adore your floor.
3: Bollywood.
4: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
5: Cafe. You're listening to number one hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Please everyone, aapko support karna hai Glow Red for Thel NZ. Global awareness campaign hai by Muskan Care Trust. जो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनेमिया पर जागरूकता फैला रहा है. ये ऐसे कंडीशंस है जो काफ़ी हद तक इनविजिबल होता है लेकिन लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता है. काफ़ी पेशेंट्स रिलाई करते हैं ऑन रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूशंस और ख़ासतौर पर ऑफ्टन एवरी 3 वीक्स पर ये होता है टू सिंपली टू स्टे अलाइव. तो आप भी रियल डिफरेंस इनके ज़िंदगी में लेकर आ सकते हैं बाय बिकमिंग ए ब्लड डोनर. अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी इनक्रेज करें क्योंकि इंटरनेशनल सिकल सेल अवेयरनेस ब्लड डोनेशन ड्राइव होने जा रहा है 20th जून को मनुकाओ एनजेड ब्लड सेंटर. यहां पर आपको पहुंच जाना है. और भी जानकारी के लिए अगर आप अपने डोनेशन को बुक करना चाहते हैं तो muskancaretrust.org.nz आप जाए या फॉलो करें मुस्कान केयर ट्रस्ट एनजेड ऑन फेसबुक पेज. और टुगेदर आप यू कैन शाइन लाइट ऑन थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया. आप सपोर्ट कर सकते हैं ब्लड डोनेशन हीरोज को और ऐसे करके बहुत सारे लाइव्स को सेव कर पाएंगे. ग्लो रेड, डोनेट ब्लड और शेयर होप. ये ही सूचना मुस्कान केयर ट्रस्ट एनजेड की ओर से. मैं कृष आपका साथ दे रहा हूं.

You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और हमारा साथ तो रहेगा क्योंकि हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए Bollywood's Biggest Hits. कुछ सामाजिक सूचनाएं भी आपके लिए हम लेकर आते हैं. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से श्री राम लीला को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे. अगर आप टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ क्रिएटिव विजुअल डायरेक्टर तो आप कॉल करें मास्टर अशोक को 021-179-5459 पर. रामलीला एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होगा. 8 अगस्त को ये होने जा रहा है और भी डिटेल्स बहुत ही जल्दी आप तक पहुंचाया जाएगा. साथ ही में माँ दुर्गा टेम्पल 4/3 ऑनस्लो एवेन्यू पापटोए में माँ भागवती जागरण ये सैटरडे 20 जून को होगा. महाप्रसाद 7 PM होगा और ज्योत प्रचंद ये 9 PM रहेगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए.

0: Coffee on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: वेलकम बैक एवरी वन. इट इज़ आवर फाइनल आवर. ट्यूजडे नाइट नाइट कैफे जारी है. 16 जून है और आपका स्वागत है. इस्तकबाल है वंस अगेन. मैं क्रिश 12 तक आपका साथ दूंगा. इस फाइनल आवर में भी आपके लिए बहुत कुछ रहेगा. इंटरेस्टिंग इवेंट्स और शोज जो आने को है. सामाजिक सूचनाएं क्या कुछ है वो भी बताएंगे जो रहेगा बताने के लिए. साथ ही में बैक टू बैक सॉन्ग्स भी लेकर आए हैं जिसमें प्यारे प्यारे गाने हैं. नेहा कक्कर, राहत फतेह अली खान, उदित नारायण, लता मंगेशकर, कहके सुनिधि चौहान, विशाल ददलानी, श्रेया घोषाल, नीति मोहन और बेनी दयाल जैसे सिंगर्स, धुरंधर सिंगर्स की आवाज़ों में ये जो प्यारा गाना है. आप हमें ज़रूर बताएं ये लाइन आप ऑफ सॉन्ग्स आपको कैसे लगे. एंजॉय एवरीवन.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. Oakland, एक और इवेंट के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाए. Evening of laughter और entertainment होगा with गुज्जू भाई. नी एक्सचेंज ऑफर जिसमें लेजेंडरी सिद्धार्थ रंदेरिया लेकर आ रहे हैं ये शो. ब्रांड न्यू कॉमेडी है जिसमें गुज्जू भाई कॉट अप हो जाते हैं अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर में, जिससे सीरीज ऑफ हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और लाफ आउट लाउड सिचुएशंस हो जाता है. काफ़ी विटी डायलॉग्स है इसमें, इस प्ले में रिलेटेबल फैमिली मोमेंट्स होंगे और क्लासिक गुजराती ह्यूमर होगा. होल फैमिली शो ये होने जा रहा है और आप इन्जॉय कर पाएंगे अपने फैमिली के साथ में. सिद्धार्थ रंधेरियाज़ गुज्जू भाई प्रोडक्शंस आर नोन टू सेल आउट जहाँ पर भी ये जाते हैं, तो लास्ट मिनट तक आप ये ना छोड़े. टिकट्स बुक कीजिए premierTickets.co.nz से और एक्सपीरियंस कीजिए द मैजिक ऑफ गुजरात मोस्ट लव्ड कॉमेडी कैरेक्टर लाइव ऑन स्टेज. ये 3 जुलाई को होने जा रहा है 7:30 PM विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर ओकलैंड में ये होगा. तो टिकट्स आप premierTickets.co.nz से ले पाएंगे. क्रिश का साथ है एंड यू लिसनिंग टू हम.

0: Cafe on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Night Cafe on Hum.
1: You're listening to your number one Hum, playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ हम पॉडकास्ट. आप जरूर सुने, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेकर आया जा रहा है. और इस हफ्ते के पॉडकास्ट में निवेदिता वीज के साथ बातें किया रिसेंटली, और रुजबे ने थैलेसीमिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द साउथ एशियन कम्युनिटी पर बातें हुई है. ये कन्वर्सेशन एक्सप्लोर किया है कि थैलेसीमिया क्या है और क्यों ये साउथ एशियन कम्युनिटी में प्रिवेलेंट है, रोल ऑफ जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, कॉमन सिम्टम्स और इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली स्क्रीनिंग के बारे में भी बातें हुआ है. किस तरह से इस कंडीशन को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स, रेगुलर मॉनिटरिंग और ऑनगोइंग सपोर्ट फॉर पेशेंट्स और फैमिलीज, इस पर भी बातें हुई है. पॉडकास्ट में ये बात हाईलाइट हुई है कि किस तरह से रेजिंग अवेयरनेस इज सो इम्पोर्टेंट और स्टिग्मा को रिड्यूस करना ये भी बहुत ही ज़रूरी है, और किस तरह से इन्फॉर्म्ड कन्वर्सेशंस रखना और इसको इनकरेज करना ज़रूरी होता है. एक इंसाइटफुल और एजुकेशनल डिस्कशन है, तो आप ज़रूर ये सुने. ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर, फुल ऑडियो आपको के लिंक आपके पास आ जाएंगे. साथ ही में ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए फ्यू बिट्स एंड कन्वर्सेशंस विद विजय और पूजा द ब्रेकफास्ट शो के लिए आप बीएफ टेक्स्ट करें 5599 पर, और कैचअप आपका जो पॉडकास्ट है ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट पर जानकारी आपको मिल जाएगा इन ए रिप्लाई मैसेज. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

किसी से भी हो सकता है ये प्यार।

नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। अब हमारी मुलाकात होती है कल, नाइट कैफे लेकर आ जाएंगे, वेंसडे नाइट होगा तो मसाला मिक्स भी हमारे साथ होने जा रहा है, ये भी आप एंजॉय करेंगे हमारे साथ। अपना बहुत ही ख्याल रखें, वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर नाइट, गुड नाइट एवरीवन।

की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: जबरदस्त हिट्स
1: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: हुनुआ और वेटाकरे।
2: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में।
3: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
4: Nissan Big Deals सिर्फ 22nd जून तक। Select new Navara models पर पाइए $5,000 तक की बचत, plus accessories भी। Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8, backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
5: Night Flight.

0: चाहे आप हमके दें चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी हैव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा ट्विटर, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा ट्विटर।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा ट्विटर। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
0: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम हाँ।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: कोई शिकवा ना करेंगे ना आजमाएंगे तुम जहां पाव रखोगे ये दिल बिछाएंगे हम तुम्हारी वफा की दुनिया में प्यार ही प्यार

0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
4: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
3: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
5: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
6: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
7: From friends to lovers to chaos, get ready for a crazy ride. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
8: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है, क्योंकि वो नया होता है।
9: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आता है, और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
7: Cocktail 2, releasing in cinemas on 19th June. Distribution partner Forum Films. Rating TVC.
10: Nissan Big Deals सिर्फ 22nd जून तक, सिलेक्ट न्यू नवारा मॉडल्स पर पाइए $5,000 तक की बचत प्लस एक्सेसरीज भी। टेक एडवांटेज विद द बिग वन ऑन X-Trail एंड डिस्कवर द पेट्रोल V8, बैक्ड बाय निसान्स अप टू 10 ईयर वारंटी। T's and C's अप्लाई।

Flight on Hum. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: Chubby Swag is on.
1: Hey,

0: Flight on Hum.
1: Near the tenure.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम द बीट ऑफ बॉलीवुड,
2: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: हम
3: नाइट फ्लाइट ऑन हम।
4: Gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na g

Pinterest पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: anywhere you get your podcast.
1: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number यार.
2: क्यों? क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी. That's 0800-564-424.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
4: Playing Bollywood's biggest hit.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके। लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस। हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
6: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स। लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
5: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही। अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL। T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
7: MediaWorks complaints. How can I help?
8: My kids won't shut up.
7: I'm not sure that's our problem.
8: They keep reciting lines from one of your radio ads.
7: Aw, cute.
8: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
9: What do you want, son?
10: I want me some of that real southern chicken.
8: 28 times.
7: So where are you now?
8: Eating chicken.
11: Advertise with MediaWorks.
12: New Zealand listens to us.
13: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
14: हाँ, अच्छा
13: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
14: Mrs. Singh,
15: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
16: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
17: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
18: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
19: And award goes to Indelible Homes.
18: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
20: Kahani of Indelible Homes.
0: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
21: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Internal Affairs is being asked to look at whether there are better ways to fund fire and emergency. It will look at whether the current insurance levy system introduced in 1975 should still be used. Minister Brooke Van Velden says one issue is free riding, where people do not insure their property but still rely on the service. A sigh of relief from sector leaders as the government secures cross-party support for the National Infrastructure Plan. All 16 recommendations have been given the thumbs up. Nick Leggett from Infrastructure NZ says it's a huge help.
22: It's really significant, I think, to have opposition and government MPs working together and signalling that they are on the same page.
21: It's believed Labor's free ultrasound policy will do wonders for the profession. The party will fund routine pregnancy scans and additional training positions if elected. Apex Union's Dr. Deborah Powell is stoked.
23: There's a shortage of sonographers in New Zealand, mainly because we don't have enough training positions. So an additional 24 training positions will bolster our numbers significantly.
21: An urgent recall of child vitamins has left parents fuming. Auckland-based Good Vitamin Co. has pulled 3 batches of their kids' gummies over reports of allergic adverse reactions. Parents on social media are demanding answers about what the allergen is, with many sharing stories of their children needing hospital care. In sport, the White Ferns T20 World Cup title defence is on life support after 2 defeats. They've lost to Sri Lanka by 5 wickets in Southampton. Captain Merle Kerr's team shelled plenty of chances on Sky Sport.
24: I guess catches win matches and no one means to drop them, but that's 2 games in a row we haven't been up to a high enough standard.
21: Into rugby with Shift 4, New Zealand coaching legend Sir Wayne Smith has got a new job. He's been appointed head of coaching at Japanese champions Kobe Steelers following the departure of Dave Rennie to the All Blacks.
4: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
25: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
2: Suchit kiya jata hai ki Bind Mati ke pati, yani Shalindra, Sam, Niv, और इश्वानी के पिता सिंगेटो कफीजी के भूतपूर्व निवासी सिंग्स लोयस के मंगल सिंह की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीडी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-663-101 पर संपर्क कर सकते हैं। बिंदमती के पति यानी शैलेंद्र सेम नेव और इश्वानी के पिता सिंगटोका फीजी के भूतपूर्व निवासी सिंग्स लोयस के मंगल सिंह की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीडी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-663-101 पर संपर्क कर सकते हैं। रविराविम्बा के भूतपूर्व निवासी माउंट वेलिंगटन के रामकरण के भाई यानी मैंगरी के नवनीत करण पिंकी नीली और पूनम के पिता मैंगरी के जयकरण प्रसाद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे मैंगरी लोन शमशान भूमि 85 मैकेंजी रोड में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-834-3575 पर संपर्क कर सकते हैं। रविराविम्बा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट वेलिंगटन के रामकरण के भाई यानी मैंगरी के नवनीत करण पिंकी नीली और पूनम के पिता मैंगरी के जयकरण प्रसाद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे मैंगरी लोन शमशान भूमि 85 मैकेंजी रोड में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-834-3575 पर संपर्क कर सकते हैं। इलीट सिनेमा लंबासा फिजी के भूतपूर्व मालिक मगन भाई पटेल की पत्नी यानी ज्योति रचना और प्रमीत की मां रेवा पटेल की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल 3 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-903-255 पर संपर्क कर सकते हैं। इलीट सिनेमा लंबासा के भूतपूर्व मालिक मगन भाई पटेल की पत्नी यानी ज्योति रचना और प्रमीत की मां रेवा पटेल की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल 3 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-903-255 पर संपर्क कर सकते हैं। लोटोका फिजी के भूतपूर्व निवासी शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलिन ऑकलैंड के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी यानी माला रक्षा और सीमा की मां सत्यावती प्रसाद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार को 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस बीडी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-647-520 पर संपर्क कर सकते हैं। लोटोका फिजी के भूतपूर्व निवासी शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलिन के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी यानी माला रक्षा और सीमा की मां सत्यावती प्रसाद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार को 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-647-520 पर संपर्क कर सकते हैं।

0: सूचित किया जाता है कि भूरा एन जोखन लिमिटेड सुबह के स्वर्गीय जय नारायण जोखन की पत्नी यानी रजनीश सेन, अंजनीश, जयंत, मोहिनीश और रोबिन जोखन की मां कमलावती जोखन उर्फ केवला की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार बाद में सुबह फीजी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर संपर्क कर सकते हैं। भूरा एन जोखन लिमिटेड सुभा के स्वर्गीय जय नारायण जोखन की पत्नी यानी रजनीश सेन, अंजनीश, जयंत, मोहिनीश और रोबिन जोखन की मां होटन स्ट्रीट सुभा की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार बाद में फीजी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
2: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
3: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
0: ऑकलैंड में अभी आप 9.5 डिग्रीज टेम्परेचर फील कर रहे हैं। आज का हाई 16, ओवरनाइट कम से कम 9 डिग्रीज रहेगा। बादल छाए रहेंगे, रह रहकर कुछ हल्की बारिश हो सकती है। सनराइज 7:32 AM पर और सनसेट आज का शाम 5:12 पर होगा।
2: Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: Breakfast catch-up.
0: 10 मिनट हो रहे हैं 6:00। नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। आज बुधवार है, 17 तारीख जून। आज की ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। आगे हैं एक बार फिर आपका साथ देने के लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो, और अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक हमारा और आपका साथ इस प्रोग्राम में होने वाला है, जिस दौरान आज एक बार फिर तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा जो है ये प्रोग्राम में हम करने वाले हैं। कुछ ज़रूरी खबरें हैं आपके लिए, कुछ ज़रूरी जानकारियां हैं जो आपको देनी हैं, और फन एंड एंटरटेनमेंट एज यूजुअल आज एक बार फिर आपके लिए जारी रहेगा। आपके मन चाहे गानों का लिए लाजवाब सिलसिला और कारवां 4 घंटों के लिए हम पर रहेगा, और इनाम जीतने के एक बार फिर आज कई लाजवाब मौके जो हैं ये हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो। बस ऑल यू गॉट टू डू इज 104.2 FM या रोवर पर हमारे साथ आपको शामिल रहना है। आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग।
5: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं,
0: और होपफुली वैसे कल का दिन आपका अच्छा रहा होगा। और हर दिन है और हर नई सुबह हमारे जीवन में एक नई उमंग लेकर आती है, नई आशाएं लेकर आती है कि भाई आज हम कुछ अचीव करने वाले हैं।
5: ये तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे नए सवाल भी लेकर आती है। एज द डे प्रोग्रेसेस देन यू गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि यू नो दिन जो है ये कब शुरू होकर कब खत्म हो गया, कई बार लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता, मतलब इतना बिजी डे जो है ये जाता है। सो वट एवर द सिचुएशन इज, चाहे आप भी अपने सवालों के जवाब जो है ये ढूंढ रहे हैं, या फिर सुबह होते ही शाम हो गई और आपको पता ही नहीं चला क्योंकि दिन इतना बिजी था आपके लिए, हम आपके साथ जरूर बने हैं और हमेशा बने रहेंगे इसी तरह से ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, जो कि हम हर घंटे आपके लिए कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत तो हमेशा हम करते हैं कैचअप के साथ, ब्रेकफास्ट कैचअप में, और वो इस घंटे आज आपके साथ हम जरूर करेंगे, जिसके लिए हम तो तैयार हैं। उम्मीद है कि आप भी एकदम तैयार हैं।

0: Sunnyside Up.
1: स्टोरी के यू नो बारे में आपको भी कहीं ना कहीं से पता चला होगा, बट जस्ट इन केस इफ यू नॉट हर्ड अबाउट दिस, तो आपको चलिए हम बताते हैं इनके बारे में. एंड दिस इज बेसिकली एक ऐसे रेस के बारे में जिसे काफी यू नो चैलेंजिंग माना जाता है. आई थिंक गोबी डेजर्ट जो है, यहाँ पर एक रेस जो है ये हो रहा था. एंड अपेरेंटली वहां पर जो अल्ट्रा मैराथन हुआ उसमें एक रनर थे जिनका नाम डियोन लेनॉर्ड जो है ये बताया गया. एंड डियोन लेनॉर्ड जबकि इस रेस में हिस्सा ले रहे थे, तो कमाल की चीज इनके साथ ये हुई कि व्हाइल ही वाज रनिंग ही सडनली डिस्कवर्ड कि इनके बाजू में एक छोटा सा डॉग जो है ये भी भाग रहा है, ये भी दौड़ रहा है. एंड दिस पर्टिकुलर रेस वाज अबाउट 77 miles. ये पूरा का पूरा जो रेस था, ये अल्ट्रा मैराथन जो था, इट वाज बेसिकली अबाउट 77 miles. एंड व्हाइल ही स्टार्टेड डूइंग दिस रेस, तो ये जो छोटा सा डॉगी है जब ये इसके साथ साथ दौड़ रहा था, ही रिफ्यूज टू लीव हिज साइड. और ये पूरा का पूरा रेस जो है इस पर्टिकुलर डॉगी ने ये जो रेसर है डियोन इनके साथ कंप्लीट किया. ही रेन थ्रू दोज इनक्रेडिबल 77 miles विद हिम. और एक्सट्रीम हीट में, सैंड ड्यून्स में जहां पर वो उसके साथ भाग रहा था, उसके बाद चलकर ये जो रेसर है he was deeply touched by the loyalty जो इस डॉग ने उसको दिखाया, क्योंकि वो उसके साथ दौड़ रहा था. he refused to leave his side, and जिसके बाद चलकर वो बेसिकली उसके साथ साथ जब भागा तो उसको कहीं ना कहीं एक किस्म की मोटिवेशन जो ये भी मिली. और कहाँ से ये आया उसको खैर पता भी नहीं है, इस शख्स को, डियोन को पता भी नहीं कि डॉगी एक्चुअली आया कहाँ से. बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो शख्स है डियोन, what he apparently did was, इनको सिंस वो गोबी डेजर्ट में रेस के दौरान जो है मिले थे, गोबी डेजर्ट में रेस के दौरान जब इन्होंने उनको पाया, तो उन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलर डॉगी को अडॉप्ट करने के बारे में सोचा. उन्होंने उसका नाम गोबी रखा आफ्टर द प्लेस जहां पर वो उनको मिले थे. और फिर उसके बाद उन्होंने पूरा लीगल प्रोसीजर जो है ये करते हुए इस डॉग को अडॉप्ट किया. एंड इवेंचुअली उसके साथ वो रीयूनाइट हुए और उसको फिर अपने घर लेकर गए. और वहां से उनका एक ऐसा फ्रेंडशिप शुरू हुआ जिसके बारे में कहा जाता है कि अब जब भी डियोन किसी भी मैराथन में हिस्सा लेते हैं तो गोबी उनके साथ साथ उस मैराथन में भाग लेते हैं.

0: भी कोई स्टोरी है हमारे साथ जरूर शेयर करें। यू कैन कॉपी पेस्ट और 5599 पर भेज सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं हमारे पास, यू नो सनी साइड अप सब्जेक्ट देकर, और ईमेल कर सकते हैं buzz@hamfm.com पर। एंड इट्स ऑलवेज गुड टू शेयर पॉजिटिविटी ना।
1: एब्सोल्युटली, हमें खुद की कम्युनिटी में भी ऐसी कुछ चीजें हो रही विच इज वर्थ टॉकिंग अबाउट, विच इज वर्थ सेलिब्रेटिंग, वी लव टू डू दैट। और जब तक हम तक आप वो चीजें पहुंचाएंगे नहीं तब तक हमको पता कैसे चलेगा। सो इसीलिए इफ यू हैव समथिंग दैट यू'ड लाइक फॉर अस टू टॉक, फॉर अस टू शेयर, buzz@hamfm.com पर जरूर हमारे पास आप ईमेल कीजिएगा।
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: ए देखो हम आ गए।
2: Get ready, New Zealand. Hum is proud to bring you Stick with Hum, your chance to support the Vantage Black Sticks women at the upcoming FIH Hockey Women's Nations Cup. Experience world-class international hockey right here at home as top teams battle for glory. Plus, you could win a double pass to the games. Simply listen for the cue to call from your announcer, then text hockey to 5599 to enter. Stick with Hum and get behind our Vantage Black Sticks women.
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
6: Get 299 deals this week only at Trade Depot. Fridge freezers, 299. Washing machines, 299. Dishwashers, 299. Ovens, 299. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
7: Trade Depot.co.nz.
8: JB Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket on the 25th of June from 5pm with grand opening specials for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket, Thursday, 25th June, 5 to 9pm. JB, you've done it again.
9: Asia is on sale now at Flight Centre. Fly economy return to Shanghai with Air New Zealand from $1,575. Book in store or online. Please T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
10: The beat of Bollywood.
11: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
10: The breakfast show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global headlines.
0: मुख्य खबरों में, US इंटेलिजेंस एजेंसीज के नए असेसमेंट के मुताबिक अब ईरान जब चाहे तब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर सकता है, जिसकी वजह से ईरानियन रिजीम के पास ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की एक बहुत बड़ी ताकत आ गई है। हालांकि फ्राइडे को इस वोटरवे को खोलने के लिए एक अग्रीमेंट साइन होने वाला है, पर सोर्सेस का कहना है कि इस वो से ईरान को समझ आ गया है कि अब उसके पास डिफेक्टो कंट्रोल है जो किसी परमाणु बम से भी ज्यादा पावरफुल वेपन है। इसके अलावा ईरान ने वो के दौरान गल्फ कंट्रीज के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेटेड स्ट्राइक्स करके ये भी सीख लिया है कि वो आगे चलकर इस कैपेबिलिटी का यूज अपने फायदे के लिए कैसे कर सकता है। उधर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल G7 समिट में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने US मिलिट्री स्ट्राइक में मारे गए इंडियन नाविक का मुद्दा उठाया और मैरीटाइम ट्रेड रूट्स की सुरक्षा पर जोर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ट्रेड रुकने से ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है और कई इंडियन सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई है। फिजी में एक सेफ हाउस में रह रहे 3 नेपाली कर्मचारियों के ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होने के बाद ये बात सामने आई है कि करंट लेजिस्लेशन ज्यादातर फॉरेन वर्कर्स के ऑफेंसेस पर ध्यान देता है, ना कि उनका शोषण यानी अब्यूज करने वाले एम्प्लॉयर्स पर। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजर चेसे जिरिकी सुवा ने पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया कि इमिग्रेशन लॉज में फॉरेन वर्कर्स के पेमेंट रूल्स तोड़ने पर सख्त पेनल्टीज और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स की कमी है, जिसे दूर करने के लिए हाल ही में कुछ बदलाव किए गए हैं। उन्होंने बताया

0: कि इमिग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस चलाती हैं ताकि वोकर्स के अब्यूज को रोका जा सके, और साथ ही ये जानकारी भी दी कि पिछले साल 75 प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट्स को देश से निकाला गया था। फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत आज भी कई जबरदस्त मैचेस खेले जाएंगे। सुबह 7 बजे फ्रांस सेनेगल से खेलेगा, जिसके बाद 10 बजे इराक नॉर्वे का सामना करेगा। आज दिन में 1 बजे अर्जेंटीना और अल्जीरिया का मैच खेला जाएगा, जिसके बाद 4 बजे ऑस्ट्रिया जॉर्डन का मुकाबला करेगा। कल ऑल वाइट्स का जो मैच है, इसने सभी को बहुत प्रभावित किया। इस मैच में न्यूजीलैंड और ईरान 2-2 गोल से बराबर ठहरे। सऊदी अरेबिया और यूरुग्वे 1-1 गोल से बराबर रहे। इजिप्ट बेल्जियम के बीच स्कोर 1-1 रहा, जबकि स्पेन और केप वेर्डे नील ओल से बराबर ठहरे। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के अंतर्गत आज मैचेस एक बार फिर जारी हैं, और अभी आयरलैंड और श्रीलंका का मैच जो है ये होने को है। दूसरी आयरलैंड और इंग्लैंड का मैच होने को है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को दूसरी मर्तबा आज हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 6 खिलाड़ी खोकर 150 रन बनाए, जबकि श्रीलंकन वुमेन्स टीम ने 19.4 ओवर्स में 5 खिलाड़ी खोकर 153 रन बनाते हुए इस मैच को 5 विकेट से जीत लिया है। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: सीधा अंदर आऊं
2: मैं लाऊं अपना ए गेम।
3: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 22 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में. आज गुड मॉर्निंग के कुछ मैसेजेस जो है ये आए. और राम राम, जय माता दी, हैप्पी वेंसडे एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे, स्टे ब्लेस्ड. मिस्टर माटा माटा, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग. थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए.
3: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. और आज मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि काफ़ी कम लोगों ने हमारे पास गुड मॉर्निंग मैसेजेस जो है ये भेजे हैं. और आज तो एक और एक कमाल की चीज़ हुई. सॉरी, मेरे गले में बहुत खराश है आज. और तकलीफ भी है थोड़ा, आई डोंट नो व्हाई, क्यों हुआ ये नहीं पता. हाँ, तो आज कम लोगों ने अपने अपने मैसेजेस भेजे, बट वी विल गेट बैक टू दैट. बट उससे पहले मॉर्निंग पूजा एंड विजय, गणेशस ब्लेसिंग्स एंड मैम दिस डे बी वंडरफुल फॉर यू, गणपति बप्पा मोरिया. ये बॉबी मान जी ने हमारे पास आज भेजा है सुबह सुबह. थैंक यू सो मच बॉबी मान जी आपके भी मैसेज के लिए.
2: गुड मॉर्निंग टू ऑल. राज आर वी प्रकाश ट्रांसपोर्ट से, जस्ट फिनिश्ड वर्क ऑन नाइट ड्राइविंग, गोइंग बैक होम, हैव अ ब्लेस्ड डे. ये सुबह 4:30 बजे राज ने भेजा था, इसीलिए सुबह के वक्त उनके मैसेजेस नहीं आ रहे थे. सो अब तक तो शायद जाकर सो भी गए होंगे. बट थैंक यू सो मच राज, कम से कम जाते जाते आपने हमें याद किया एंड सभी को गुड मॉर्निंग विश किया.
3: Yes, thank you so much.
2: Jai Shri Ram, Pooja aur Vijay ji, Ganesh Baba's blessings upon you all. Parma Maharaj ji ki or se ye message aaye hain. And jaise aapne kaha, abhi shayad pehle ke milan mein winter mein kam log jo hai ye
3: सुबह सुबह उठते होंगे.
2: मैंने नहीं बोला भाई.
3: नहीं, मैं बोल रही हूँ. आई मीन, किसका दिल करता है यार सर्दी में उठने का. मेरा तो हरगिज नहीं करता.
2: आपका बिल्कुल मन नहीं करता. खैर, और भी कई चीजें हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारियां देते रहेंगे. अंजनेश हैं मेलबर्न से, इनका मैसेज जो है ये आया है. वेरी गुड मॉर्निंग अंजनेश, थैंक यू सो मच वहां से हमारा साथ देने के लिए. इंटरेस्टिंगली यू नो, मेलबर्न से कई लोग हमारे साथ देते हैं. कल इनफैक्ट अंकित ने व्हाट्स योर टेक में मेलबर्न से कॉल भी किया था.
3: Oh, okay. So,
2: जितने भी लोग आउट ऑफ न्यूजीलैंड से हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रोवा, थैंक यू सो मच आपके साथ, आपकी कंपनी के लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ के लिए. चलिए आगे बढ़ते हुए, अब बारी है कि आपके लिए आज का स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है ये हम लेकर आए. बट बिफोर आई डू दैट, आज एक सवाल आपके लिए हम लेकर आए हैं. आज का हमारा जो सवाल है आपको हमें बताना है. रिसेंटली एक फिल्म ने 15th ऑफ जून को, इनफैक्ट आज 17th ऑफ जून है, 15th वाज ऑन मंडे, इस पर्टिकुलर फिल्म ने 25 इयर्स इन द इंडस्ट्री जो है ये कंप्लीट किए. 2001 में ये फिल्म रिलीज हुई थी. और ये फिल्म जो है इसके बारे में आपको बता सकते हैं कि इट वाज बेसिकली, मैं कुछ क्लूज दे रही हूँ आपको इस फिल्म के बारे में.
2: ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी है ये.
3: ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी है और 1893 की ईरा में सेट की गई है फिल्म की कहानी, ब्रिटिश राज के दौरान. और एक छोटे से गांव की कहानी है जहां पर गांव वालों पर यू नो टैक्स जो है ये लागू कर दिया गया था. नॉट जस्ट वन, बट काफ़ी ज़्यादा टैक्स लागू कर दिया गया था. उस टैक्स से छुटकारा पाने के लिए एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ने एक स्पोर्ट जो है ये खेलने का फैसला किया था, मतलब चैलेंज एक्सेप्ट किया था. तो इस फिल्म का नाम आपको मैं बताना है. यू हैव टू टेक्स्ट द नेम टू अस कि ये कौन सी फिल्म हो सकती है. 5599 BF अपना आंसर, अपना नाम लिखकर हमारे पास भेजे कि हम किस फिल्म के बारे में आज आपसे बातें कर रहे हैं.

0: सकते हैं चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक वी हैव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755 मीडिया वर्क्स मीडिया दैट वर्क्स
1: हम Accurate traffic.
2: Bag and chemist, worth checking first.
3: A bit of sun, a lot of cloud, a high of 17. A bit of traffic heading to the airport. Slow on the southwestern southbound at the airport link and also patchy on George Bolt closer to the terminal. Southern motorway quite quick, 32 minutes Manukau to town. We're slow Papakura through to Mount Wellington and around Ellerslie. Northwestern, 28 minutes in from Massey. Slow patches there to the city. Northern, slow patches Greville to the bridge.
2: Sharp prices every day. Auckland only deals when you least expect them. Bag and chemist, worth checking first.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है जैसे कि drying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है
4: moisture और ventilation का problem लगता है
5: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है
4: oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111 Reliance Ventilation Systems solving ventilation problems for over 18 years
7: If your business needs a boost, a push in the right direction, or some shelter to get you through, KiwiBank can help with Fast Capital, the digital loan application with real-time decisions. It's the fuel for your rocket, the wind in your sails, and an umbrella in the rain that allows you to grow, expand, or provide a buffer for your business. Search KiwiBank Fast Capital to apply online today. This is Kiwi. Eligibility criteria, lending criteria, T's and C's and fees apply.
8: It's time to-

0: Zip Plus. Get game ready at No Leaming.
1: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
1: Breakfast Catch Up. Throwback.
3: फिलहाल अभी
4: सॉरी माय बैड. यस, तो थ्रोबैक की बारी आई है, तो फिलहाल अभी जो मैसेजेस आए हैं वो देख लेते हैं ना पहले.
3: हाँ, देखिए देखिए.
4: तो आज हमारे पास आपने जो सवाल पूछा था उसका सबसे पहला जवाब भेजा है रोनल्ड ने. थैंक यू सो मच रोनल्ड आपके मैसेज के लिए. फिर स्नेहा का आंसर आया है. रिंकू और धृति, थैंक यू आपके मैसेज के लिए. उन्होंने गुड मॉर्निंग भी विश किया है, जवाब भी दिया है. और निलेश ने आपका भी जवाब आया है. सो थैंक यू आपके भी मैसेज के लिए. क्वेश्चन हमने जो पूछा है क्या था क्वेश्चन,
3: कि वो कौन सी फिल्म थी 1991 में आई थी,
4: 2001
3: में आई थी, और कई साल पुराने ब्रिटिश इरा में इस फिल्म की कहानी सेटअप है. और ये फिल्म जो है ऑस्कर्स के लिए भी नॉमिनेट की गई थी. अपना जो ये 25th एनिवर्सरी है, ये अभी इस ये फिल्म सेलिब्रेट कर रही है. इनफैक्ट इस फिल्म को री रिलीज भी किया गया है, और ख़ास तौर पर 25th एनिवर्सरी के मौके पर 12th से 14th जून तक इस फिल्म को स्क्रीन होना था इन थिएटर्स. लेकिन इसका डिमांड इतना ज़्यादा हुआ है कि ये इस फिल्म के स्क्रीनिंग को अभी कल तक और बढ़ा दिया गया है. और ये फिल्म जो है इनिशियली ओरिजिनली रिलीज हुई थी ऑन 15th ऑफ जून इन 2001. इस फिल्म को आशुतोष गवर्कर ने डायरेक्ट किया था.
4: यस, एब्सोल्युटली. और इस फिल्म से जुड़े और भी ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग ट्रिविया हैं, और आज इस फिल्म के बारे में इसलिए हम बातें कर रहे हैं बिकॉज एज वी हैव जस्ट मेंशनड कि इस फिल्म ने 25 साल अपने जो है ये कम्प्लीट किए. आपको पता है ये जो गाना भी हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं, इस गाने का जो हुक है बेसिकली द लाइन चले चलो, ये है. अय्यर रहमान ने इस गाने पे संगीत दिया है, और वहीं पर जावेद अख्तर ने इस गाने के बोल लिखे हैं. लेकिन इंटरेस्टिंगली इन्होंने इस 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान ये बात रिवील की कि इस गाने के लिरिक्स इनिशियली नशा नशा था इंस्टेड ऑफ चले चलो. एंड आमिर खान एंड आशुतोष गवारकर वर वेरी एडमिंट कि ये जो शब्द है नशा नशा मत चेंज करना, बहुत कैची है, बहुत एडिक्टिव है, लोग मीनू बार बार गाएंगे. बट थैंक गॉड जावेद अख्तर सेड कि इन्होंने इनकी बात नहीं सुनी और गाने के लिरिक्स इन्होंने बदले और नशा नशा से हुक जो रखा चले चलो.
3: तो कौन सी फिल्म है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, BF अपना आंसर और नाम 5599 पर भेजें.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: ऑकलैंड में मिला जुला मौसम आज एक बार फिर आप एक्सपीरियंस करेंगे। अभी अराउंड 10.5 डिग्रीज है, आज का हाई 16, ओवरनाइट कम से कम 9 डिग्रीज, बादल छाए रहेंगे, रह रहकर कुछ हल्की बारिश भी आज हो सकती है। सनराइज 7:32 AM पर, सनसेट शाम 5:12 पर होगा।
0: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: Morning Madness।
1: 3 मिनट हो रहे हैं अभी 7:00, हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM और रोव पर आपका हम स्वागत कर रहे हैं। इस घंटे आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे विश करेंगे, आपकी शादी की सालगिरह की खुशियों में आएंगे। मैसेजेस अगर आपने नहीं भेजे हैं, आपको याद आया अभी कि भाई आज 17 जून है, आज तो इनका बर्थडे है, इनको विश करना है, सो अपने मैसेजेस जो है ये 5599 पर आप हमें भेज दें।
3: Absolutely, और जैसे ही आपका मैसेज हमें मिलेगा तो वैसे ही आपको हम हमारे जो बर्थडे ग्रीटिंग्स वाले सेगमेंट के दौरान विश करेंगे। नॉट जस्ट द बर्थडे ग्रीटिंग्स, लेकिन शादी की सालगिरह भी अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्यों प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हो खुद के लिए। आप अगर उनको विश करना भूल गए थे तो मेक इट अ बिट स्पेशल, लेट देम नो कि अच्छा आप इतने बजे हम जरूर सुनिएगा, एक स्पेशल चीज है आपके लिए, एंड देन व्हेन वी विल अनाउंस दे विल फील सो हैप्पी अबाउट इट ना।
1: आप भूले हैं, वो तो नहीं भूले होंगे ना।
3: हाँ, पर उनको लगेगा कि आपको याद है, बिकॉज यू प्लान टू सरप्राइज, दैट्स व्हाई यू डिडंट विश इन द मॉर्निंग, यू नो समथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प आउट हियर, प्लीज प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाना है हमको। पर फिलहाल के लिए चलिए इस घंटे जहाँ पर आपके लिए एक और एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। ये नाम जैसे ही लोगों ने सुना और जैसे ही इनको पता, मतलब लोगों को पता चला कि ग्लोबल सेंसेशन करण औजला जो है अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर ऑकलैंड आ रहे हैं, न्यूजीलैंड आ रहे हैं अपने वन एंड ओनली शो के लिए, तो वैसे ही हर और बस इनका क्रेज जो है धीरे धीरे इतना ज्यादा हो गया कि आपको बस हमारा फेसबुक पेज विजिट करना होगा जस्ट टू सी हाउ क्रेजी पीपल आर टू गेट आवर पास टू गो एंड विटनेस करण औजला। और ऑन द सेम नोट, इफ यू वांट टू विन डबल पासेस, विजिट कीजिए फेसबुक पेज, वहां पर आपको फीचर फोल्डर में पोस्ट दिखेगा, टैग अ फ्रेंड इन द कमेंट सेक्शन टू गो इन अ ड्रॉ, जहां पर आप डबल पास जो है ये जीत सकते हैं। पर एक और एक कमाल की बात ये है कि करण औजला जबकि आ रहे हैं तो इसके लिए पासेस जो है ये आप, मतलब टिकट्स जो है ये आप खरीद भी सकते हैं, एंड यू जस्ट नीड टू विजिट आवर वेबसाइट फॉर दैट,
1: hum.rova.nz, ये आप विजिट कर सकते हैं जहां से आपको टिकट्स जो है इसकी सारी जानकारियां अभी तक जो है ये मिल जाएंगी। और उसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं livenation.co.nz। रिमेम्बर प्री सेल, लोकल प्री सेल जो है आज सुबह 10 बजे से फ्राइडे 19 जून सुबह 10 AM तक रहेगा। लाइव नेशन का प्री सेल जो है ये कल सुबह 10 बजे से फ्राइडे सुबह 10 बजे तक रहेगा। जीपी ऑन सेल फ्राइडे 11 AM से स्टार्ट होगा। सो रिमेम्बर, आज 10 AM इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि 25th of August को स्पार्क अरिना जो है यहाँ में आग लगने वाली है, जब करण औजला और
3: आग लगने वाली
1: हमें नहीं, स्पार्क अरिना में आग लगने वाली है जब करण औजला का पी पॉप कल्चर टूर ये ऑकलैंड में होगा। और इसकी खातिर वी आर रियली रियली एक्साइटेड। ये एक्साइटमेंट जब यहाँ पर हम तैयारी कर रहे थे, इट वाज वेरी वेरी एविडेंट, बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स दे वर रियली एक्साइटेड, ओह माय गॉड इज बैक,
3: यप, एंड दैट एक्साइटमेंट will be there until and unless he comes and performs, और वो perform करके चले भी जाएंगे ना, तब भी लोगों को विश्वास नहीं होगा कि यार ये show देखने को मिला, इनको experience करने को मिला। So it's all happening and it's all happening this year, this time आपके पास opportunity है इसका हिस्सा बनने के लिए। Remember 25th of August को ये हो रहा है Spark Arena में, और अभी हमारे पास मौका है आपको एक double pass जीतने का जो chance हम देना चाहते हैं, जिसके लिए एक question पूछेंगे, उसका जवाब आपको हमारे पास भेजना है। K A सबसे पहले लिखना है, यानी कि करण औजला इसका शॉर्ट फॉर्म, एंड देन अपना आंसर और अपना नाम लिखकर आप 5599 पर हमारे पास सेंड कीजिए। सो आज का सवाल हमारा बहुत ही सिंपल, एक गाना है इनका जो इन्होंने इंडिविजुअली रिलीज किया था बेसिकली, लेकिन उसे बाद में चलकर एक फिल्म में इस्तेमाल किया गया, एंड विकी कौशल, यस विकी कौशल इट परफॉर्मड ऑन द सॉन्ग। उस गाने का जो हुक स्टेप है that got popular. The song was already popular, no doubt about it. Lekin that particular video jis pe Vicky Kaushal ne jab is film mein is gaane ko istemal kiya, jis tarike se dance kiya, to the song got even more popular. Gaane ka title aapko batana hai, kya hai?
1: To kahe ahi apna answer aur apna naam, ye 5599 par jaldi se aap hamare paas bheje. And don't forget, Karan Aujla ke saath special guest aa rahe hain, hitmaker Ikki, inhe bhi aap dekh sakenge in this unforgettable night of music and energy. To Karan Aujla ka wo kaun sa gaana hai jise Vicky Kaushal ki ek film mein istemal kiya gaya, and it got jo hook step hai
3: bahut extremely popular.
1: Extremely popular. Huh.
3: People try doing the hook stop. People try doing the hook step. लेकिन हुक स्टेप करने के चक्कर में अपने टांग बहुत से लोगों ने तोड़े हैं. तो आप भी मैं बता सकते हैं गाने का टाइटल क्या है. रिमेंबर के ए स्पेस आंसर योर नेम 5599 पर आपको सेंड करना है, जिसके लिए हम आपको देंगे सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट्स का टाइम. एंड ऑन द अदर हैंड, पिछले घंटे हमने जो सवाल किया था उसके आंसर्स हमारे पास कई आए. ऐश, देविका, अमन, साथ में नितिका फ्रॉम द गार्डन, आपका भी मैसेज हमें मिला. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन वॉज लगान.
1: So thank you so much aapke answers ke liye. Karan Aujla P-Pop Culture World Tour Auckland 25th of August. Double pass jeetna hai to answers bheje.
4: Hum dil ke bure nahi, bas ek kharabi hai.

0: बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है
0: राशि वाइब्स
2: लीजिए भाई दिस आर योर राशि वाइब्स फॉर टुडे सबसे पहले मेष यानी एरिस आज आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन से आपको सपोर्ट मिलेगा पूजा पाठ में मन लगेगा समझदारी से अगर काम करते हैं तो फायदा होगा दोस्तों के साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारेंगे और हो सकता है कुछ चीजों को लेकर आपको अपोज भी किया जाए
3: वृश्चिक टॉरस आज आपके लिए बताया जा रहा है कि हेल्थ थोड़ा कमजोर रहेगा आपका चोट या दुर्घटना से आपको किसी तरह से हानि पहुंच सकती है आज इसीलिए थोड़ा अलर्ट रहे केयरफुल रहे लापरवाही करेंगे तो समय की बर्बादी के साथ साथ आपका भी नुकसान होगा
2: और उसके बाद मिथुन यानी जेमिनी आज परिवार के बारे में आप थोड़े वरीड हो सकते हैं और आज कुछ गाइडेंस की जरूरत आपको पड़ेगी और ये गाइडेंस आपको मिलेगा किसी से लाइफ पार्टनर का भी सपोर्ट रहेगा घर परिवार में खुशियां रहेंगी कहीं बाहर जाने की प्लानिंग आप आज कर सकते हैं
3: करके ने कैंसर आज आपके लिए बताया गया है लेन देन में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें जरूरी चीजों को समय पर नहीं पाने से आपको गुस्सा जो है ये कुछ ज्यादा आएगा आज गुस्से पर कंट्रोल करें अदरवाइज अच्छे खासे बनते काम जो है और बनते रिश्ते आपके गुस्से की वजह से बिगड़ सकते हैं आज आपके लिए बताया गया है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े बड़े सौदे होंगे और इनका बड़ा फायदा भविष्य में चलकर आपके हाथ जरूर लगेगा
2: सिंह यानी लियो आप काफी क्रिएटिव पर्सन हैं और आज अपने क्रिएटिव कामों में सक्सेस भी हासिल करेंगे ट्रेवल काफी एंटरटेनिंग होगा खाना भी आप अपना मनपसंद एंजॉय करेंगे फैमिली वालों के साथ दोस्तों के साथ कुछ एंटरटेनिंग टाइम स्पेंड करने का मौका भी आज आपको मिल ससकता है
3: और उसके बाद आज वैसे कन्या यानी वर्गो आपके लिए बताया जा रहा है कि कोई बुरी खबर आपको मिल सकती है जिसके लिए मेंटली आपको बहुत तैयार रहना है मेहनत अधिक करेंगे आज मतलब यू विल बी वेरी हार्ड वर्किंग टुडे और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा बस तबीयत पर ध्यान देना भी जरूरी है ऐसा नहीं कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन खुद की तबीयत के बारे में आप भूल जाएं
2: तुला यानी लिब्रा आज सोशल वर्क में काफी बिजी रहेंगे आप दूसरों को हेल्प आउट करेंगे इससे काफी मान सम्मान आपको मिल सकता है और रुके हुए कामों में कुछ तेजी देखेंगे फैमिली का सपोर्ट सभी ओर से मिलेगा और घर बाहर सुख शांति बनी रहेगी आपके लिए
3: इसके बाद आज अगर देखा जाए तो वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो आपके लिए कहा गया है कि बहुत ही एक्साइटिंग कोई खबर आपको मिलेगी जिसकी वजह से पूरा दिन आज आप इतना हैप्पी रहेंगे आपके आसपास भी आप हैप्पीनेस ही फील करेंगे भूले बिस्वे साथियों से भी मुलाकात होगी यू विल स्पेंड सम गुड टाइम और कोई नया बड़ा काम करने का प्लान आप बनाएंगे जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आज आपको मिलेगा
2: धनु यानी सेजिटेरियस किसी बड़ी समस्या का सोल्यूशन आपको मिलेगा और अपने हेल्थ का ख्याल रखें बड़े बूढ़ों की जो सलाह है एडवाइस है ये काम आएगी और कहीं से कोई गिफ्ट भी आपको मिल सकता है
3: मकर यानी कैप्रिकॉर्न आज आपके लिए बताया जा रहा है कि हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है लेन देन के मामले में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें अदरवाइज नुकसान हो सकता है आपका एंड यू वुडंट इवन रियलाइज रिस्क से भरे कामों से जितना दूर रहेंगे आज के लिए आपके लिए उतना अच्छा रहेगा बिकॉज यू डोंट रियली नो हाउ इट विल टर्न आउट फॉर यू
2: कुंभ यानी एक्वेरियस इनकम बढ़ेगा बिगड़े काम बनेंगे आपके बिजी रहेंगे इसका कुछ असर आपके हेल्थ पर भी पड़ सकता है यानी हेल्थ बिगड़ सकता है ख्याल रखें प्लीज अपना बिजनेस से फायदा होगा और ट्रेवल एंटरटेनिंग रहेगा
3: और आखिर में आज मीन यानी पाइसेस आपके लिए बताया गया है कि मान सम्मान मिलेगा बिजनेस है आपका तो अच्छा चलेगा जो प्लान्स आप बना रहे हैं बिजनेस को अपना जो है आगे बढ़ाने के लिए और उससे अच्छी रिजल्ट हासिल करने के लिए इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू बिकॉज आज आपको बहुत सारा फायदा जो है कि होगा काम करते समय कुछ चेंजेस आप नोटिस करेंगे कुछ चेंजेस आप खुद इम्प्लीमेंट करेंगे एंड दीज चेंजेस विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू सो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे और इसी उम्मीद के साथ साथ चलिए आज की इस सुबह मॉर्निंग मैडनेस में आप सभी को एक बार फिर हम वेलकम कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि थोड़ी देर बाद आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
4: चुप हो जाओ पापी हो चुप हो जाओ
5: ड्राइविंग यू होम
6: Drive show with Sandy and Rusby.
7: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था
8: सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने
9: वो भी आई लव यू वाला
8: मैडम ने पकड़ लिया अभी यहाँ किसने बनाया वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा
9: अच्छा आप तो
8: आए आए बताओगे
6: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

0: सेलिब्रिटी अलार्म का वक्त हो चुका है मॉर्निंग मैडनेस में ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। कल एक ही पर्सन ने कोशिश की, उनका भी जवाब गलत हो गया।
1: तो मतलब आज वही आवाज एक बार फिर आपके लिए लेकर आएंगे जिनकी आवाज कल हम लेकर आए थे। This is interesting. Now this is what I like.
0: So इतना हमने कल आपको बताया था कि ये शख्स जो हैं originally New Zealand के हैं। तो आवाज इनकी एक बार फिर आप सुने।
2: And, you know, we're funny people, and you know, and in New Zealand,
3: yes, you are.
2: And especially in New Zealand, growing up, you know, a lot of the things that you see, it's and especially you know, in the Americas.
0: तो ये आज या कल से हमारे सेलिब्रिटी हैं। देखना है कि क्या आज कोई इनकी आवाज पहचान सकता है या नहीं।
1: एक चीज जैसे कि आपने कहा कि न्यूजीलैंड के, वो तो खैर ये खुद इस पर्टिकुलर ऑडियो में सुनाई भी दे रहा है जहाँ पर इज टॉकिंग अबाउट इट। इफ आई आस्क वन क्वेश्चन, वुड यू बी एबल टू आंसर इन अ यस और अ नो?
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: ठीक है,
0: मन करेगा कर दूंगा।
1: नहीं, अगर आप यस और नो में आंसर करेंगे ना तो हो सकता है थोड़ा इजी हो जाएगी for people to actually attempt. तो क्या ये शख्स जो है इन्होंने recently अपना retirement announce किया है?
0: मुझसे तो नहीं कहा उन्होंने।
1: ऐसी खबरें आ रही है कि ये retire होने वाले, though it's true or not, that's a different thing.
0: मैंने नहीं पढ़ा कहीं।
1: Okay. तो मैं कैसे और अच्छा, I'll ask another question.
0: हाँ।
1: Does he belong to the sports industry?
0: No, he does not.
1: Okay, then I'm wrong. क्योंकि मेरे जहन में जो आंसर था ना, वो शख्स स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, पर जब ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से है ही नहीं तो ये कौन हो सकते हैं यार? इवन आई एम थिंकिंग नाउ।
0: सो कौन हो सकते हैं एक बार फिर?
1: न्यूजीलैंड के हैं ये।
0: हाँ, अच्छी तरह से आवाज आप सुन ले।
2: यू नो, वी आर फनी पीपल एंड यू नो, एंड इन न्यूजीलैंड,
3: यस यू आर,
2: एंड स्पेशली इन न्यूजीलैंड ग्रोइंग अप, यू नो, अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट यू सी, इट्स एंड स्पेशली, यू नो, यू एंड
0: तो ये है हमारे सेलिब्रिटी। चलो आसान कर देते हैं आपके लिए।
1: हाँ, थोड़ा एक क्लू दे दो आप।
0: ये पर्सन जो है हॉलीवुड में बहुत पॉपुलर है।
1: ओह, नाउ आई गेट इट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, न्यूजीलैंड से है एंड वेरी पॉपुलर। इनकी इनकी शादी भी हुई है फ्रॉम समवन आउट ऑफ न्यूजीलैंड जो पॉपुलर है, और यहाँ न्यूजीलैंड घूमने फिरने आते रहते।
0: नहीं, मुझे न्योता नहीं था, मैंने गया शादी में, तो मुझे नहीं पता।
1: नहीं नहीं, न्योता नहीं होगा, पर आप जानते होंगे इनके बारे में यार, बहुत बार ये आके गई है, जो न्यूजीलैंड की बहू है बेसिकली ना वो। तो now I know the answer and now I find it very easy.
0: Before you sounded so boring, you know, now you got really excited.
1: मुझे पता नहीं था ना, मुझे जवाब नहीं पता था, now I know. And एक क्लू मैं भी आपको दे सकती हूँ, बहुत पॉपुलर फ्रेंचाइज़
0: था, इसीलिए मैं क्लूज नहीं दे रहा था।
1: बट मैंने थोड़ी ना आपको बताया कि ये जवाब है वो जवाब है, मैं तो अनुमान की बेसिस पे क्लू दे रही हूँ, हो सकता है मेरा अनुमान गलत भी हो। बट हाँ, एक क्लू मैं आपको और दे सकती हूँ, वो है ये कि ये जो शख्स हैं, इन्होंने एक बहुत पॉपुलर फ्रेंचाइज का एक पर्टिकुलर मूवी जो है ये डायरेक्ट किया है।
0: ओके, चलो देखो, अब काफी क्लूज हो गए। BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेजो। देखिए आज कोई सही जवाब दे पाता है या नहीं।
4: Hollywood's most wanted.
5: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
6: मैं लाऊं अपना A game.
4: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: सुबह के मुख्य समाचारों में साउथ वाइकाटो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद रेट पेयर्स पर फाइव फिगर यानी $33,925 का बिल आया है और पुटरूरू वार्ड के काउंसलर जेड लेटिनोविच को सेंसर किया गया है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उन्होंने एक मीटिंग में मेयर के फैसले का जोर शोर से विरोध किया था और दूसरी मीटिंग में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पर क्रिएटिव अकाउंटिंग का आरोप लगाया था। सेंट्रल ऑकलैंड में एक हमले के बाद एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। यह घटना कल शाम 7:45 के वक्त वेलेस्ली स्ट्रीट ईस्ट जो रटलैंड स्ट्रीट के पास है वहां घटी थी। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है। फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत अभी फिलहाल फ्रांस और सेनेगल के बीच मैच खेला जा रहा है। तकरीबन आधे घंटे का मैच पूरा हो चुका है और दोनों टीमें नील ओल से बराबर हैं। सुबह 10:00 इराक नॉर्वे से खेलेगा, 1:00 अर्जेंटीना की भिड़ंत अल्जीरिया से होगी और 4:00 ऑस्ट्रिया और जॉर्डन का मैच खेला जाएगा। FIH विमेंस हॉकी नेशंस कप के अंतर्गत वेंटेज ब्लैक स्टिक्स और इंडिया की टीमें सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो चुकी हैं। दोनों टीमों ने लगातार दोनों दिनों में अपने मैचेस जीते। कल जो मैचेस हुए उसमें USA की जीत यूरुग्वे के खिलाफ 7-2 से हुई, इंडिया ने जापान को 2-1 से हराया, कोरिया और फ्रांस 1-1 से बराबर ठहरे, जबकि वेंटेज ब्लैक स्टिक्स की जीत चिली के खिलाफ 3-2 से हुई। और उसके बाद अब कल अगले राउंड के मैचेस खेले जाएंगे। कल 10:45 AM पर इंडिया यूरुग्वे से खेलेगा, USA जापान का सामना करेगा, कोरिया चिली से खेलेगा और वेंटेज ब्लैक स्टिक्स जो है फ्रांस का मुकाबला करेगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: Accurate traffic.
2: Wardrobes Direct 30th birthday sale on now.
3: Cloudy today with a high of 17. Quite a few issues. Northern, a crash blocking a lane near the Northcote Road on-ramp and a breakdown after Fanshawe. 40 minutes in from Constellation Drive, heavy all the way from Greville. Southern, a breakdown at Te Irirangi has been sorted, but a lot of traffic diverted off the motorway. We're heavy Papakura to Manurewa, clear to Otahu, then slow from there. Southwestern, a crash at the airport link, heavy southbound.
2: Mega savings this month only at Wardrobes Direct 2 showrooms, Mount Wellington and Silverdale.
4: Are Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
5: क्यों? क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे, बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रिस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
6: It's movie night and you can't agree.
7: No, I want to watch that.
6: But you've got a bargaining chip up your sleeve. Tonight you'll be serving spaghetti toasties. It's what you need.
8: TradeDepot.co.nz.
9: Trade Depot is your number one online store for home improvement products. Acoustic wall paneling from $99. Solar panels just $179. Bed frame and mattress, just $379. Save hundreds on beautiful home improvement products. Only at Trade Depot in Onehunga. Or shop online.
8: TradeDepot.co.nz.
10: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
11: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
12: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
13: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।
14: The Breakfast Show

0: इसका बर्थडे भाई?
1: मेरा ही बर्थडे है, चलो लाइन में आ जाओ।
0: हैप्पी बर्थडे टू यू।
2: A very very happy birthday, many many happy returns of the day. आज 17th of June को अगर अपना special day आप celebrate कर रहे हैं, बलविंदर बहल जी ग्लेंडिन में आज आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं। खुशी के इस मौके पर आपके जितने भी परिवार वाले हैं सभी शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं। ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं। इस दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको। चिंतामणि बेन शांतिलाल जी हैं, आपको भी आज का ये दिन अनेकों बार मुबारक हो। आज आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे टू माय ब्यूटीफुल वाइफ रेशमी, ये मैसेज हमारे पास आया है। मे दिस डे बी अ स्पेशल वन एंड मे यू कंटिन्यू योर जर्नी विथ पॉजिटिविटी एंड जॉय। यू आर द बेस्ट इटर्नल कंपेनियन आई कुड एवर आस्क गॉड टू गिव मी। यू हैव गिवन मी टू ब्यूटीफुल किड्स एंड अ रीजन टू लिव ऑन दिस अर्थ। I love you forever, my sweetheart, and you are my sunshine in this dark world. And you are the one that I always wanted from God as my wife. Lots of love and best wishes. Jonathan hai, Jessica hai, aur aapke patni Binesh hai, jinhone aaj aapko bahut sara pyar diya hai aur shubhkamnaen aur badhaiyan di hain. Reshmi ji, salgira aapko bahut bahut bar shubh aur mubarak ho aapke sath. Aur bhi jitne log jahan kahin par bhi aaj apna birthday ya wedding anniversary celebrate kar rahe hain on the 17th of June, ye khaas din aapko shubh aur mubarak ho. Morning madness. आज हमारा जो सेलिब्रिटी अलार्म फाइनली जाकर सही आंसर्स जो है ये भी हमारे पास आए हैं। थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने अपने आंसर्स भेजे हैं। आज अमित हैं, साथ में सोम हैं, सोनल हैं, मोनिशा, मोवीन और सृष्टि हैं। इसके अलावा बॉबी, आपने अपना आंसर जो है ये भेजा है। मुदित, थैंक यू सो मच, कई लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा है। कुणाल हैं, साथ में नेहा हैं और इसके अलावा नितिका, आपने भी अपना आंसर जो है ये हमारे पास भेजा। थैंक यू सो मच। और आज के करेक्ट आंसर, आज का करेक्ट आंसर सेलिब्रिटी अलार्म में तैका वतीती, और बहुत सारे लोगों ने सही आंसर्स हमारे पास भेजे। वैसे कुछ गिने चुने गलत आंसर्स आज भी आए, बट सही आंसर्स आ गए, सो इट कम्स टू एन एंड टुडे। कल एक नए सेलिब्रिटी को आपके लिए हम लेकर आएंगे सेलिब्रिटी अलार्म में, देखेंगे कि क्या कल आप उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं। समय देखें, अभी 19 मिनट रह गए हैं 8 बजने में।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: मॉर्निंग मैडनेस आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा हम लेकर आ रहे हैं. और मॉर्निंग मैडनेस पे आपको पता है कि ऐसी बहुत सी चीजें शेयर करते हैं विच एक्चुअली ब्लोज आवर माइंड अवे. आज एक ऐसी स्टोरी या फिर एक ऐसा डिटेल, नॉट अ स्टोरी बट एक ऐसा डिटेल आपके लिए हम लेकर आए हैं. और ये जो डिटेल है इज बेसिकली अबाउट अस. कभी ऐसा आपने नोटिस किया कि आप किसी मुश्किल में हैं या आप थोड़ा दुखी हैं या आप परेशान हैं, तो अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर, अगर वो आपके लाइफ में नहीं है, यू डोंट हैव अ पार्टनर, या फिर अपार्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, इफ यू नॉट यू नो इफ यू डोंट विश टू टॉक टू देम, आप किस शख्स को कॉल करते हैं, किस शख्स से बातें करते हैं, किस शख्स को ढूंढते हैं जब आप परेशानी में होते हैं. इफ आई आस्क यू दैट क्वेश्चन, तो आपके सवाल का जवाब क्या होगा? बचपन से ये शख्स हमारी लाइफ में है और बचपन से ही शायद हम ऐसे कि हमें कुछ भी होता है तो हम इनका नाम लेकर पुकारते हैं.
1: मी
0: नहीं, जनरली सबके बारे में बोल रही.
1: अच्छा, सबसे पूछ रहे हैं. अच्छा, मुझे लगा मुझसे पूछ रही है.
0: नहीं, आप भी पर्टिकुलरली बता सकते हैं कि व्हाट इज इट फॉर यू, हाउ इज इट फॉर यू द सिचुएशन, बट जनरली सबसे बोल रही मैं. ये
1: मैं खुद को ढूंढता हूँ.
0: आप खुद को ढूंढते
1: हैं?
0: वेरी इंटरेस्टिंग. बट आई एम टॉकिंग अबाउट मम्मीज, माँ, मदर्स. अपेरेंटली ये कहा गया है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें जब चोट भी लगती है, लाइक द फर्स्ट थिंग दैट कम्स आउट ऑफ आवर माउथ इज ओह माँ मर गई, मर गया, लाइक दैट, यू नो, आई एम हर्ट. एंड बेसिकली कहा जाता है कि जब हम परेशान भी होते हैं तब भी हम अपने माँ को ढूंढते हैं, उनसे बातें करने का दिल करता है. एंड इवन व्हेन वी आर एडल्ट्स वो फीलिंग हमेशा हम में रहती है. एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि व्हेन वी हियर आवर मदर्स वॉइस, इवन थ्रू अ वॉइस मेल या फिर एक फोन कॉल के थ्रू, ये हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन, जो हैप्पी केमिकल कहा जाता है, ये रिलीज करता है. और द लव हार्मोन, बेसिकली जो लव हार्मोन माना जाता है, ये रिलीज करता है. और इसकी वजह से हमारा स्ट्रेस कम होता है और कंफर्ट और सेफ्टी की एक फीलिंग जो है ये हमें मिलती है. रिसर्चर्स ने एक्सप्लेन किया कि हमारा ब्रेन जो है इस तरह से फॉर्म हुआ है, इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल एसोसिएशन है हमारा अपनी मम्मी के वॉइस के साथ बचपन से ही. इनफैक्ट नॉट बचपन से, जब से हमारा एग्जिस्टेंस होता है, जब से हम उनके वूम में आते हैं, फॉर्म होते हैं, तब से ही कि हम उनकी आवाज़ तो सुन सुनकर बड़े होते हैं. वी आर क्लोजेस्ट टू हर, क्लोजेस्ट टू हर वॉइस. एंड दैट इज वाई जब हम बड़े भी हो जाते हैं, अडल्टहुड में भी आ जाते हैं, दैट इज वन थिंग वी कैन एसोसिएट विद. एक स्टडी में ये बात भी पता चली है कि हियरिंग अ मदर्स वॉइस ओवर द फोन हैड स्ट्रेस रिड्यूसिंग सिमिलर इफेक्ट्स, जैसे कि अगर आपको हग मिल रहा हो किसी से. और साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है, दिस मे एक्सप्लेन क्यों ओल्ड वॉइस मेल्स कॉल्स या फिर यू नो इमेजिन मेमोरीज आपकी मम्मी की वॉइस का, ये आपको इमोशनली पावरफुल बना देता है ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल मोमेंट्स. हम बार बार क्यों उनकी आवाज़ सुनने के लिए इतना बेचैन हो जाते हैं जब हमारा खुद का मोरल डाउन होता है या खुद मन जो है हमारा थोड़ा उदास होता है. बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कनेक्शन वी हैव विद आवर मदर्स वॉइस इवन बिफोर वी आर बॉर्न.
1: इन सारी चीजों के लिए मेरे पास तो बस एक ही लाइन है. जितनी क्या? भी चीजें आपने अभी बोली हैं, उन सभी चीजों के लिए किसी तरह के ऑफिशियल रिसर्च स्टडी या इन चीजों की
0: जरूरत नहीं है.
1: देयर इज नो नीड फॉर इट.
0: या दैट इज
1: सिंपल एज दैट.
0: दैट इज वेरी ट्रू. बट अक्सर शायद हम ये फीलिंग्स समझ नहीं पाते हैं ना. वी डोंट अंडरस्टैंड या फिर वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. दो हमें पता होता है बट हम उसे एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं होते कि यार ऐसा हो सकता है. बट दिस इज द रियलिटी कि हमारी माँ की आवाज़ हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखती है.

0: वैसे पिछले घंटे एक और बर्थडे मैसेज जो है ये आया था, वो भी जल्दी से देख लेते हैं इस प्रोग्राम में. एंड जो मैसेज है हमारे पास आया, राम राम, टुडे इज माय सन्स बर्थडे एंड माय ब्रदर्स बर्थडे टू. माय ब्रदर लिव्स इन फिजी, वी वांट टू विश बोथ ऑफ देम अ वेरी हैप्पी बर्थडे. माता रानी की कृपा दोनों पर बनी रहे. निलेश एंड नीतू मनुरेवा से थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए.
1: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
0: Almost 12 degrees temperature ho chuka hai aaj ka, high 16, overnight kam se kam 9 degrees rahega, badal chhaye rahenge, reh reh kar kuch halki barish hogi, especially in west of Auckland. Sunset sham 5:12 par hoga.
1: The breakfast show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
1: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
0: वेलकम टू द रश ऑन, हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच. और आज सबसे पहले अभी क्या ट्रेंड कर रहा है,
3: आज एक ऐसी खबर आपके लिए लिख रहा है विच हैज नॉट बीन ट्रेंडिंग जस्ट दिस टाइम, लेकिन ये बहुत सालों से काफी ट्रेंडिंग रहा है क्योंकि ये होता आ रहा है. आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इसके बारे में सुना या फिर कितने लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन पकड़ा हुआ विवाह, ये कभी सुना आपने पकड़ा हुआ विवाह?
0: नहीं, मैं
3: क्या मतलब हो सकता है,
0: आज आज पहली बार सुन रहा हूँ पकड़ा हुआ विवाह. ये दो अलग अलग भाषा है या एक ही है?
3: एक ही भाषा है, बिहार का एक शब्द है ये, और ये बिहार में प्रैक्टिस किया जाता है, जिसे पकड़ा हुआ विवाह या फिर
0: विवाह एज इन शादी.
3: शादी, yes.
0: अच्छा, मैं मुझे पकड़ा हुआ विवाह सुनाई दे रहा है, मैंने विवाह क्या होता
3: है? नहीं, विवाह.
0: अच्छा, ओके.
3: शादी, पकड़ा हुआ शादी बोल लेती हूँ चलो मैं. तो ये बेसिकली एक ऐसा ट्रेडिशन है जो बिहार में आईटी से फॉलो होता हुआ आ रहा है. दो अभी इसके बारे में हम आपको बता सकते हैं कि द कोर्ट हैज बीन इन्वॉल्व्ड, और लीगली अगर देखा जाए तो ये लॉ के हिसाब से लीगल नहीं है. कोर्ट्स हैव बीन कंसिस्टेंट कि अगर पकड़ा हुआ विवाह किसी का भी होता है तो वो लीगली वैलिड शादी नहीं मानी जाएगी. और पटना हाई कोर्ट ने ये रूल जो ये किया है कि मैरिज इज कंडक्टेड अंडर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एट अ गन पॉइंट, बेसिकली वैलिड नहीं होती है लीगली. इसका मतलब ये होता है, पकड़ा हुआ विवाह का मतलब ये होता है फोर्स्ड मैरिज.
0: हाँ, वो पर, उठा कर ले जाते हैं ना.
3: हाँ, अगवा कर लेते हैं लोगों को, लड़कों को बेसिकली. और ये ज्यादातर लड़की के फैमिली वाले करते हैं, और इसलिए करते हैं ताकि अच्छा सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब करने वाला लड़का जो है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला लड़का जो इनको मिले, तो उसकी शादी जो है अपने घर की लड़की के साथ करा देते हैं, ताकि जो हैवी डाउरी डिमांड्स होते हैं बेसिकली वो उनको पूरा ना करना पड़े. और 70s, 80s, 90s में काफ़ी होता था, बहुत से परिवारों ने ऐसी तरह से ही शादी जो ही कराई है, बहुत सी शादियां जो ही हुई है, बहुत से सिचुएशन में जो दूल्हा है उन्होंने रिबेल भी करने की कोशिश की है, लीगल रास्ते भी अपनाए हैं, बिकॉज इट्स बेसिकली अ मैरिज जो फोर्सफुली किया जाता है, किसी की मर्जी से नहीं होता है. और स्पेशली ऐसे सिचुएशन में होता है जहाँ पर लड़के की किडनेपिंग होती है गन पॉइंट में, उसको धमकी दी जाती है और फिर शादियां जो है ये कराई जाती है. एंड इन सम केसेस जो दूल्हे होते हैं उनको होश भी नहीं होता है और उनकी शादी हो जाती है. सो रिसेंटली एक बार फिर ऐसा ही एक सिचुएशन सामने आया अभी के जमाने में, जहां पर इट्स नॉट अलाउड बट स्टिल इट्स हैपनिंग. व्हाट बेसिकली हैपेंड वाज कि एक लोको पायलट असिस्टेंट, बेसिकली जो ट्रेन ड्राइवर हैं, जो ट्रेन ड्राइव करते हैं, वहां पर एक ट्रेन राइड के ही दौरान ये हुआ, पूरा का पूरा ट्रेन जो है ये रोक दिया गया, हॉल्ट पे आ गया ये, और जो लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट था उनको इनफेक्ट किडनैप किया गया और उनका जो विवाह है ये कराया गया इस तरीके से. और करीबन एक से लेकर डेढ़ ढाई घंटे तक ट्रेन जो है रुकी पड़ी रही जब तक कि इसका शादी जो ये कराया जा रहा था.
0: ओके, चलो कम से कम अच्छा है कि अदालत ने इसे मानने से इनकार जो है ये कर दिया, या कहा कि इस तरह की शादियां जो है ये गैर कानूनी होती हैं. ट्रेंडिंग स्टोरीज आपके लिए हम लेकर आते हैं थोड़ी देर बाद. आज व्हाट्स योर टेक आपके लिए हम लेकर आएंगे.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
2: Please use your imagination for the following ad.
3: If I won Powerball, the first person I'd tell would be and would surprise all our friends by
2: imagine winning $7 million this Wednesday. Play in store or online.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
7: From friends to lovers to chaos. Get ready for a crazy ride. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
8: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है.
9: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आते हैं. और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
7: Cocktail 2, releasing in cinemas on 19th June. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
10: For show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
10: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
11: What's your take?
12: Legal Associates की ओर से The Rush Hour आपके लिए हम लेकर आते हैं अपने लीगल ज़रूरतों के लिए राज आशिमा से आप ज़रूर बातें कर सकते हैं आज व्हाट्स योर टेक का टॉपिक लाने से पहले एक और बर्थडे मैसेज है जो काफ़ी देर से आया हमारे पास लेकिन हेलो विजय एंड पूजा गुड मॉर्निंग टुडे इज माय डॉटर्स बर्थडे प्राची वशिष्ठ आज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए प्राची मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अभी वक्त है टाइम कम होता है व्हाट्स योर टेक में क्योंकि रेडियो पर सब चीज़ें जो है टाइम के मुताबिक करनी पड़ती हैं इसीलिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि टॉपिक सुने और सोचकर आप हमारे पास जल्दी से कॉल करें सिंपल सवाल है आपको क्या लगता है एक अच्छा और सच्चा जीवन साथी किस्मत से मिलता है या ढूंढने से एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी किस्मत से मिलता है या ढूंढने से ये आज का हमारा टॉपिक है अ ट्रू लाइफ पार्टनर इज इट फेट और फाइंड गुड मॉर्निंग परविंदर
13: गुड मॉर्निंग
12: कैसी हैं आप
13: मैं बढ़िया आप कैसे हो
12: ठीक हूँ जी बताइए
13: पहले आप बताओ आपको आपका पार्टनर ढूंढने से मिला कि किस्मत से मिला
12: नहीं अभी तो सवाल मैंने पूछा है ना
13: मैं जो कहूंगी शायद बहुत लोग बोले कि ये कैसे मतलब क्या ही सोचती है मुझे तो लगता है कि अच्छा पार्टनर किस्मत से तो मिलता ही है पुराने जन्म के कर्मों से भी मिलता है
12: अच्छा
13: मतलब बहुत ही अच्छे कर्म होंगे पिछले जन्म में आपको बढ़िया पार्टनर मिलता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर बहुत बढ़िया है
12: या तो इनडायरेक्टली आप बोल रही कि पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए थे
13: मुझे लोग बोलते हैं ऐसे कि तूने बहुत ही बढ़िया किया है पिछले जन्म में कि तुझे इतना अच्छा मतलब यू आर लकी मेरे इन-लॉज भी टचवुड बहुत अच्छे हैं जैसे मैं मेरी मम्मी से कभी इतना मजाक नहीं कर पाऊंगी मेरी मम्मी गुस्सा कर जाती है जितना मजाक मैं मेरी मदर इन लॉ से कर लेती हूँ
12: अच्छा दैट्स वेरी नाइस
13: हां और मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे क्योंकि वो आर्मी में थे
12: हां हां
13: बहुत एक खाते टाइम मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, चलते टाइम पैरों से आवाज नहीं आनी चाहिए, सीधे बैठो, ये मत करो, वो मत करो, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मेरे पापा। पर मेरे फादर इन लॉ वही बहुत चिल एंड कूल, मेरी बहुत बनती है उनसे।
12: चलो वाकई आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। थैंक यू परविंदर आपके कॉल के लिए। आप बताओ अहफाज ढूंढा या फिर किस? अच्छा गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग।
14: मुझे लगता है वैसे तो देखो किस्मत है वो बात तो सही है, बट थोड़ा ढूंढने की भी जरूरत होती है, क्योंकि ढूंढोगे नहीं मिलोगे नहीं तो होगा कैसे।
12: चलो।
14: और हाँ बट किस्मत कहीं ना कहीं उसमें है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि कई बार ऐसे भी हो जाता है कि आप सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे होते हैं और किस्मत आपके भरोसे।
12: Well,
14: ये तो मैंने बहुत बड़ी बात बोल दिया।
12: थैंक यू सो मच अहफाज आपके कॉल के लिए। गुड मॉर्निंग, हेलो।
15: हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
12: आई एम गुड, हाउ आर यू?
15: वेरी वेल थैंक यू। सो कोल्ड दिस मॉर्निंग।
12: या इट इज।
15: अबाउट योर टॉपिक, आई थिंक कि किस्मत से मिलता है ऐसा पार्टनर। आप फोन तो कितना भी लोगे, यू नो कितने भी, जैसे आजकल लाइक मेरी सिस्टर है उसका बॉयफ्रेंड था, बहुत अच्छा था, फैमिली बहुत अच्छी है, अभी भी है, मतलब फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन किस्मत में उनकी शादी नहीं हुई। तो वो जो मिलता है वो किस्मत से ही मिलता है, आप हीरे मोती कितना भी ढूंढ लो, पर अगर किस्मत में नहीं है तो चांदी भी नहीं मिलेगा, साफ सा हिसाब है। लेकिन जिसको जो भी मिले एंड में उसको ही आपको अच्छे से आप समझो, आदतों को देखो और फिर शादी करो। ये नहीं है कि हाँ चलो मिल गया कर ली शादी हो गया कब खत्म। और अगर नहीं होता तो टाइमली आप कर सकते हो कि नहीं यू नो हमारी आइडियाज मैच नहीं कर रही है, हमारा मेंटल स्टेबिलिटी मैच नहीं करता या जो भी है रीजन है। पर मिलता वही है जो किस्मत में होता है, ये तो आई एब्सोल्युटली अग्री एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इफ इट्स नॉट इन योर फेट एंड डेस्टिनी यू नॉट गेटिंग इट।
12: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए। गुड मॉर्निंग, हेलो।
16: गुड मॉर्निंग विजय, हाउ आर यू?
12: गुड थैंक यू, आप कैसे हो भाई?
16: बढ़िया बढ़िया सर
12: जी।
16: इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं रिलेट करना चाहूंगा जो पहले लिस्टर ने परमिंदर जी ने जैसे कहा कि कर्मों का तो डेफिनेटली मतलब इट प्लेज अ रोल, बिकॉज दैट्स व्हाई दे से ना कि नॉट ओनली लाइफ पार्टनर, लाइफ की हर सिचुएशन में व्हाटएवर द पर्सन इज गोइंग थ्रू, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड लाइक कर्मा। दैट्स व्हाई दे से ना कि हर रिलीजन में, हर स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि कीप योर ऑरा क्लियर, मतलब बुरा मत करो, बिकॉज व्हाटएवर यू डू यू नो इट कम्स बैक इन सम फॉर्म और द अदर। एंड देन पीपल से कि अरे मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं, यू नेवर नो यू नो लाइक which birth or like how you have hurted somebody. So iske liye definitely my take is ki partners you know or anything like if life partner as well as you know I say in our group in a week when we talk we have a conversation ki jitna life mein life partner is important hai utna similarly you need to have a good manager as well at your workplace. Because aap to ghar mein to aap to rehte ho ki chalo theek hai aap work se matlab aap aage 8-10 ghante aap bahar ho. So similarly even having a good manager वो भी किस्मत से आपको मिलता है कि जो आपकी मतलब पर्सनल लाइफ आपकी खराब ना करे, बिकॉज जो ऑफिस का स्ट्रेस या आपका काम का स्ट्रेस होता है, if you're not in a good environment, you know, that impacts everybody.
12: Yeah.
16: वो आप तक ही नहीं होता है कि मतलब कि चलो आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप कितना भी आप कंट्रोल कर लो, कहीं ना कहीं इट स्टार्ट्स टू स्पिल डाउन विद इन द फैमिली,

0: 0, आपने भी टेक्स्ट किया है किस्मत, कि एक अच्छा जीवन साथी जो है किस्मत से मिलता है। व्हाट्स योर टेक, आज हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें जो हैं ये की गई हैं, और इस रिलेशन में, नॉट डायरेक्टली इस रिलेशन में, बट यू नो ये सारा का सारा जो लाइफ पार्टनर और वो सारी चीज़ों को लेकर कई रिसर्च वगैरह जो है ये भी किए गए हैं। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने 313 से भी ज़्यादा प्रोफाइल्स shaadi.com पर इनको एनालाइज किया था ओवर टाइम, किस तरह से ट्रेडिशनल प्रेफरेंसेस ओवर टाइम चेंज हुए, उन पर एक स्पेशल रिपोर्ट जो है ये भी उन्होंने पब्लिश की थी। सोशियोलॉजिस्ट जो हैं खासतौर पर स्पेशली पीपल हु मूव आउट ऑफ देयर होम कंट्रीज, कि जब इंडियंस अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं, काफ़ी एंग्जाइटी उनको होती है अबाउट लूजिंग देयर कल्चरल आइडेंटिटी, और उस टाइम पर जाकर वो और रिजिड हो जाते हैं अपने ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स को लेकर, बाकी सारी चीज़ों को लेकर, इवन मोर टाइटली देन पीपल बैक होम, ये इसमें पाया गया था। तो इन ऑल दिस थिंग्स कम इन टू प्ले व्हेन समबडी, अभी अपने होम कंट्री में थिंग्स माइट वर्क डिफरेंटली फॉर यू, अब्रोड जब आप शिफ्ट हो जाते हैं थिंग्स माइट वर्क डिफरेंटली फॉर यू, लेकिन मानना जो है मान्यता हर एक इंडिविजुअल का अलग हो सकता है, और वही आज हम आपसे जानना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो,
1: गुड मॉर्निंग
0: जी मैम।
1: मेरे तो ख्याल से है कि जोड़ा तो नसीब से मिलता है और ऊपर वाला तो बना के भेजता है। इट डिपेंड्स आप कैसे अपने रिलेशनशिप को करते हो, लाइक हाउ यू टेक योर रिलेशनशिप। ये दोनों गिव एंड टेक होता है, तो मेरे तो ख्याल से है कि नसीब से ही मिलता है।
0: नसीब से, ओके, थैंक यू आपके भी कॉल के लिए। और अब आप चाहें तो हमें टेक्स्ट कर सकते हैं किस्मत से या ढूंढने से, फाइट और फाइंड, एक ही चीज़, दोनों में से एक चीज़ आप हमारे पास टेक्स्ट करो। देखें किसके लिए अभी तक ज़्यादातर लोगों ने किस्मत की बात जो है ये कही है। एक फाइनल कॉल जल्दी से ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो,
2: गुड मॉर्निंग विजय भाई, कैसे आप?
0: मैं अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हो?
2: मैं बस बढ़िया। एंड फर्स्ट तो थैंक यू सो मच, मेरे को कल अपने वो हॉकी टिकट्स मिल गए।
0: अच्छा, आपने जीते हॉकी के टिकट्स वुमेन्स नेशंस कप के लिए, कांग्रेचुलेशंस भाई।
2: थैंक यू सो मच पूजा मैम के लिए भी,
0: जी जी,
2: और आपको भी। एंड मेरे हिसाब से तो यार किस्मत का पूरा रोल है, ढूंढने से कुछ नहीं, ढूंढते तो सारे के सारे ही हैं। लेकिन किसी की टिकती है किसी की टिकती नहीं है, और जिनको किस्मत से मिल जाती है, जिनकी किस्मत अच्छी होती है, उनकी पूरी टिकी रहती है। अब मैंने क्या, हमारा क्या था, मेरी और मेरी वाइफ की शादी हुई थी 2 साल पहले। अब हम किसी और को डेट कर रहे थे, आई वॉज डेटिंग फॉर अबाउट 5 years, मेरी वाइफ किसी और को 3 साल से डेट करी थी, और फैमिली को पता था कि हाँ भाई उनसे शादी होगी। लेकिन एंड मोमेंट पे जब शादी का पूरा होने वाला था, तब हम दोनों को पता चला कि नहीं, वो पार्टनर्स अच्छे नहीं है। फिर हमने सोचा आने वाली पूरी लाइफ है हमारे सामने 50-60 साल, और 3-2 साल का जो रिलेशनशिप था वो उसके सामने कुछ भी नहीं टिका। तो फिर हम दोनों पता नहीं कैसे मिल गए, शी वॉज माई कॉलेज जूनियर, और हम 10 साल बाद मिले।
0: ओके,
2: तो वो पूरा किस्मत का खेल ही था।
0: 10 साल बाद मिले, फिर पहले प्यार हुआ या पहली शादी?
2: नहीं, पहले हमने डेट किया 6 महीने, पूरा जाना पहचाना सारा खुद को, फिर पता चला कि नहीं ये ज्यादा परफेक्ट पार्टनर है रहता देन जिनको मैं पहले डेट कर रहा था, जिसके साथ पहले था। तो अब 2 साल हो गए, इट्स बीन लाइक आई वाज बेड रिडन फॉर 4-5 मंथ जब इंडिया में था, तब मेरी वाइफ मेरे साथ थी, अगर कोई और होती वो तो छोड़ के चली जाती। और वो तब था जब शादी को बस 1 महीना हुआ था, 1 महीना होते ही आई वॉज ऑन बेड 5 महीने तक।
0: Wow, that's amazing.
2: So she was with me, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, तो मैं बस यही कहता हूँ किस्मत से ही होता है। ढूंढ लोगे तो किस्मत अच्छी मिल जाएगी, वरना तो फिर क्या ही।
0: चलो भैया,
2: मिलनी होती है अच्छी मिलती है जिसकी। तो
0: थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस,
2: थैंक यू
0: कि आपको ऐसा पार्टनर जो है ये फाइनली मिल गया। और अब वक्त नहीं है और कॉल्स लेने के लिए, तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा है 5599। जैसे किसी ने हमारे पास भेजा है, ऐश है वेलिंगटन से, उन्होंने कहा ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, पार्टनर क्यों नहीं मिलेगा, मिल जाता है ढूंढने से। सो ऑल यू गॉट टू डू राइट नाउ इज फेट यानी किस्मत और फाइंड, आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कोई एक वर्ड आप 5599 पर टेक्स्ट करें। और थोड़ी देर बाद वी विल रैप अप एंड सी कि ज्यादा लोगों ने क्या लिखा है अभी तक, जितने भी

0: भी लोगों ने कॉल्स किए हैं, आप में से जितने भी लोगों ने टेक्स्ट किए हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव सेड कि भाई आप ढूंढ भी लो तो किस्मत में अगर नहीं होगा तो वो टिकेगा नहीं। तो आज का हमारा जो सवाल है, व्हाट्स योर टेक का, एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी किस्मत से मिलता है या ढूंढने से? तो अभी जो टेक्स्टिंग प्लेटफॉर्म है आपके लिए खुला हुआ है, से फॉर अनदर 6-7 मिनट्स, जिस दौरान अपने टेक्स्ट मैसेजेस आप हमें भेज सकते हैं। ऑल यू गॉट टू राइट इज, अगर आप हिंदी में लिखना चाहें किस्मत से या ढूंढने से, ऑल गुड, और अगर नहीं तो फेट या फाइंड, इन दोनों में से कोई एक वर्ड जो है ये आप हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं। 29 मिनट हो रहे हैं अभी 8 बजकर, और लगे हाथों आपको अपडेट भी दे देते हैं, फीफा वर्ल्ड कप का जो मैच अभी खेला जा रहा है फ्रांस और साथ में सेनेगल के बीच, ये मैच जारी है और फ्रांस और सेनेगल अभी भी दोनों टीमें निल ओल से बराबर हैं।
1: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
2: Hollywood's most wanted.
3: Gundi khad jao ya seedha andar aao.
4: Brought
2: to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
2: Accurate traffic.
3: Would you trade in your house?
4: Fine spells with a high of 17. Most motorways slow. The northwestern just hammered. 58 minutes messy to town. Heavy all the way from Upper Harbour. Northern 42 from Constellation Drive. Heavy from Greville. We've had a crash blocking a lane near Northcote Road. Southern, a breakdown to Iranangi sorted, but we're still really crawling from Drury to Monaco, and then 44 minutes Monaco to town. Southwestern, heavy southbound through Mount Roskill.
3: Trade in your house with Generation Homes. Visit generation.co.nz for more information.
5: Are you Babita? Thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
6: Kyun? Kya hua?
5: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne documents maange ki bas pooch hoi mat. Ek hafta ho gaya. No response. Phir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
7: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424.
8: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.
9: ओकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships call Karam Hundal on 027-514-6477.
10: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
12: The Rush Hour आपके लिए on the breakfast show with Vijay and Pooja हम लेकर आ रहे हैं और बहुत से ऐसे बेहतरीन opportunities आपके लिए लेकर आते हैं हम हमारे show के दौरान, जहां पर आपको विजेता बनने का मौका भी हम जरूर देते हैं. और आज ऐसा ही एक मौका आपके लिए हम लेकर आए हैं. एंड दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी ट्राइविजन इवेंट्स की ओर से, जहां पर अ प्योर एंटरटेनमेंट नाइट ऑफ कॉमेडी फन एंड मस्ती एंड मजा कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव इन ऑकलैंड होने जा रहा है द ग्रेट कॉमेडी नाइट के तहत.
13: और ये दोनों आने वाले हैं हमको एंटरटेन करने के लिए, जिसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट जो है ये बना है. और ये रहेंगे, याद रहें, विक्ट्री कॉन्वेंशन सेंटर में 18th ऑफ जुलाई को, जिसके लिए VIP टिकट्स तो सोल्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन बाकी टिकट्स अभी भी अवेलेबल हैं. bookmyevent.co.nz विजिट करते हुए टिकट्स आप जल्द से जल्द ले लें, जहां पर आफ्टर पे ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल हैं, जो आपके लिए थिंग्स इजी कर सकते हैं टू बाय योर टिकट्स. बट रिमेंबर, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड. ऐसा एक अनोखा प्रोग्राम, अनूठा प्रोग्राम आपकी खातिर तैयार किया गया है. और ये 18th ऑफ जुलाई को होगा. टिकट्स आप खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ पासेस भी जीतने के मौके हैं.
12: एब्सोल्युटली, हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हमारे साथ डबल पासेस जो है ये जीतने के लिए. और डबल पासेस जीतने के लिए एक छोटी सी चीज आपको करनी है. ऑल यू नीड टू डू इज आपको विजिट करना है हमारा फेसबुक पेज, दैट्स हम 104.2 FM विद द ब्लू टिक. और इस पेज को जब आप विजिट करोगे तो वहां पर आपको एक पोस्ट जो है ये दिखेगा. इट्स बेसिकली अ पोस्ट वी हैव डन पोस्टेड, जिसमें आपको यू नो कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर ये दोनों दिखेंगे. पर इस पोस्टर का आपको करना क्या है, आपका काम ये है कि आप इस पोस्टर को अपना एक कैप्शन जो है ये दीजिए कमेंट सेक्शन में. What you need to do is, जैसे ही फेसबुक पेज विजिट करेंगे, फीचर्ड फोल्डर में आपको ये पोस्ट पिन दिखेगा, एंड देन यू कैप्शन द फोटो, एंड इन द कमेंट सेक्शन जब आप अपना कैप्शन जो है ये देंगे, तो आपको क्या करना है कि आपका जो जवाब है या आपका जो कैप्शन है उसके बदले आपका नाम ड्रो का हिस्सा जो है ये बनेगा, एंड दैट इज द अपॉर्चुनिटी जिसके जरिए आप हमारे साथ डबल पास जो है ये जीत सकते हैं.
13: So make sure you get that done as quickly as possible ताकि आपका नाम ड्रो में हम शामिल कर सकें. और bookmyevent.co.nz विजिट करते हुए द ग्रेट कॉमेडी नाइट के लिए टिकट्स अपने आप जल्द से जल्द ले लें.
2: Let's go.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Traffic. Ice hockey games this weekend.
2: Fine and cloudy, a high of 17. In on the northern motorway, 26 minutes, Constellation to the city, 50 from Silverdale. Crash near the Northcote Road on-ramp cleared. Heavy from before Greville to Sunninook and slow Takapuna to the bridge. Northwestern 52 and from Massey, just heavy all the way in. Southern 37 from Mataco, crash at Redoubt cleared. Heavy Drury to Mataco and again from Mount Wellington. Southwestern slow southbound at Mount Roskill.
1: Hard hitting, high intensity, fun for the whole family. Search ice hockey tickets.
3: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now. With up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden, queen size, now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
4: At Bunnings, you know you're going to get the lowest prices every day. Because where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
5: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
6: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
7: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
6: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
8: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
9: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
10: Nissan Big Deals, सिर्फ 22nd June तक. Select new Navara models पर पाइए $5,000 तक की बचत, plus accessories भी. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8. Backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
11: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
13: अभी वक्त है आज का हमारा इस घंटे का थ्रोबैक हम आपके लिए लेकर आए हैं और अगले घंटे क्या वक्त हो ये भी कहानी आपके लिए होगी इस प्रोग्राम में। देर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग और साथ में फिफा वर्ल्ड कप अपडेट्स वगैरह जो है ये भी हम आपको बारी बारी से इस प्रोग्राम में देते रहेंगे। अभी मैं आपको बताऊं जर्मनी के एक शख्स के बारे में और इन्होंने एक गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय पुटिंग 65,000 लेगो ब्रिक्स टुगेदर।
14: 65,000 लेगो ब्रिक्स,
13: हाँ,
14: और बनाया क्या है इसे?
13: इन्होंने बनाया है दुनिया का सबसे बड़ा लेगो ब्रिक सॉसेज।
14: सॉसेज?
13: हाँ,
14: ब्रिक्स।
13: टॉमी श्मिट इनका नाम है। 45 इयर्स की उम्र में भी इनको लेगो का शौक उसी तरह से बना हुआ है और उनका कहना है कि उनके पास ये आइडिया आया फ्रॉम सॉसेज प्रोड्यूसर एक है उनसे और उन्होंने कहा कि उनको हमेशा अच्छा लगता है टू टेक अनयूजुअल चैलेंजेस और इसीलिए उन्होंने किया 65,000 लेगो ब्रिक्स।
14: इतना पेशेंस भैया होना चाहिए आपके पास और इतना प्यार होना चाहिए लेगो से। एंड आई नो लेगो इज सच अ थिंग जिससे बहुत से लोग जो है बहुत ज्यादा यू नो अटैच्ड रहते हैं, लाइक दे लव टू क्रिएट ऑल दीज थिंग्स लेगो का इस्तेमाल करते हुए। सो यू शुड ऑल्सो हैव दैट पैशन एंड देन ओनली आपको ये 65,000 लेगो ब्रिक्स इतना बड़ा नहीं लगेगा जितना फिलहाल हमें लग रहा है। बट यू नो द पैशन दैट सम पीपल हैव, द पेशेंस दैट सम पीपल हैव टू क्रिएट मैजिक।
13: एग्जैक्टली। इस सॉसेज को अब डिस्प्ले पर रखा गया उस सॉसेज प्रोड्यूसर के ऑफिस में, हेडक्वार्टर्स में। 6 feet इसका लेंथ है और 6 feet and 6.7 inches ये जो सॉसेज है इसका लेंथ है, तो कई लोगों से भी ये लंबा है।
14: वेरी इंटरेस्टिंग यार, द क्रिएशंस दैट सम पीपल डू इज अमेजिंग एंड वर्थ टॉकिंग अबाउट, वर्थ प्रेजिंग। सो ऐसे बहुत से मैजिकल चीजें जो है ये होती रहती है और इनके बारे में चर्चा आपके साथ हम करते रहते हैं। पर फिलहाल अभी थोड़ी देर बाद 9 बज जाएंगे और फिर इसके बाद जैसे कि इन्होंने बताया व्हाट्स गोइंग ऑन और आज का क्या वक्त हो भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आई वुड हैव टू टेक परमिशन टू लीव। आज थोड़ा जल्दी जो है निकलना पड़ रहा है ड्यू टू सम इम्पोर्टेंट वर्क और इसी वजह से अभी मैं आपसे अलविदा ले रही हूँ, लेकिन कल ठीक सुबह 6 पर एक बार फिर आ जाऊंगी आपका साथ देने ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। लेकिन जाते जाते आप सबके साथ और आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: Totoy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: Hum, time check.
2: Good morning, is samay theek 9 baj rahe hain.
1: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
3: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. A man has been charged with murder after a death in central Auckland. Police were called to Wellesley Street East just before 7 last night and found a man critically injured. He died on arrival to hospital. A 23-year-old will appear in court today. No one else is being sought. Police are making an urgent new appeal on the 40th birthday of a Canterbury mother now missing for 10 months. Rowena Walker disappeared with no digital footprint or verified sightings. Police believe she was a victim of foul play and plan at further searches. They say someone in the community knows what happened and strongly urge her partner at the time to reconsider talking to them. The Taxpayers Union claims there's no money left in Labor's capital gains tax pot for its maternity promise. The party's pledging to fund pregnancy scans if elected, but the union's James Ross says data doesn't match.
4: Labor need to front up on whether they want this policy to extend to the family home, to shares, or to KiwiSaver, but whatever it is, voters need to know about it before the election.
3: The space race is heating up in New Zealand. Dawn Aerospace has announced it has raised nearly $50 million in its latest funding round. The Christchurch and Netherlands-based company is due to begin commercial operations with its Aurora space plane next year. In sport, Rugby League with Machinery House, it's must-win for Queensland heading into State of Origin Game 2 at the MCG tonight. Kalen Pong is back after being sent off in Game 1.
5: New game in Melbourne. Lots to look forward to. Obviously, lots to learn from that first game, but it's exciting.
3: And All White's viral sensation Tim Payne is reportedly moving from the Wellington Phoenix to Paraguay Champions Club Olympia after the FIFA World Cup.
1: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
6: World's best, hamari good brands bhi hai.
1: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
2: 12 and a half degrees temperature, Auckland mein abhi aap feel kar rahe hain aaj ka high 16 overnight, kam se kam 9 degrees, badal chhaye rahenge with some showers kabhi kabhar, sunset sham 5:12 par hoga.
1: For show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
8: What's going on? Kya bakte ho?
9: Are kehna kya chahte ho?
2: हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ कहानियां जो हैं ऐसी हम लेकर आते हैं जिन्हें सोचकर या जिन्हें सुनकर आपको लगे यार ऐसा भी हो गया है, अब ये भी पॉसिबल हो गया है. ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है मैं पढ़ रहा था, हालांकि ये एक अच्छा इन्वेंशन हम कह सकते हैं, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनको इसकी ज़रूरत होगी. और फॉर डेकेड्स या फिर सेंचुरीज ऐसा यू नो गोइंग टू द वॉशरूम टू द टॉयलेट हैज़ बीन पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लिंगो, और चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी कल्चर हो, लेकिन अब शायद AI इसको एकदम ऑब्सोलीट कर दे, स्पेशली फॉर सम पीपल जिनको कहना है कि मुझे, जो कहेंगे कि मुझे टॉयलेट जाना है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से अब ऐसा टॉयलेट तैयार किया गया है जहां आपको जाने की जरूरत नहीं लेकिन टॉयलेट आपके पास आएगा. इस साल के शंघाई इंटरनेशनल एज्ड केयर असिस्टिव डिवाइसेस एंड रिहैबिलिटेशन मेडिकल एक्सपो में चाइनीज एक्सेसिबिलिटी टेक्नोलॉजी ब्रांड एक है, उन्होंने अनवेल किया है अपना स्मार्ट टॉयलेट विच कैन एसेंशियली, जिसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एक AI पावर्ड ऑटोनोमस रोबोट टॉयलेट की तरह. ये डिज़ाइन किया गया है उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनको किसी तरह की डिसेबिलिटी है, सेमी डिसेबिलिटी है या फिर मोबिलिटी इश्यूज़ हैं. और थैंक्स टू द AI 3D ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम, ये स्मार्ट टॉयलेट जो है आसपास के एनवायरनमेंट को नेविगेट करता हुआ अपने यूज़र तक खुद जाकर पहुँच सकता है. But it's a lot more than a glorified mobile toilet. Once it has been used, it once again activates its slider to travel back to its docking station to get rid of its smelly load. और रोबोट टॉयलेट्स जो हैं, ये इनका जो डेडिकेटेड लॉकिंग या डॉकिंग स्टेशन है, ये हुकअप हो जाता है घर के एग्जिस्टिंग प्लम्बिंग सिस्टम से, सो इट फ्लशेस एवरीथिंग टू द सिस्टम थ्रू लो नॉइज ग्राइंडर, जिसकी वजह से कोई अनवांटेड ब्लॉकेजेस भी नहीं होता है, और जब ये खाली हो जाता है इट बिगिंस अ थरा सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम, एक प्रेशराइज्ड वाटर जेट और यूवी लाइट के जरिए टू एंश्योर कि वो सैनिटाइज रहें और अपने अगले कॉल के लिए तैयार भी रहें. To ensure that the air remains fresh and breathable, जहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है, ये स्मार्ट टॉयलेट uses a heavy-duty odor neutralizing system featuring a foam shield and activated charcoal filters. ये टॉयलेट is already available Chinese market में for around $13,000. अभी ये पता तो नहीं है कि क्या और कब इसे चाइना से बाहर बेचा जाएगा या भी नहीं, वो भी एक अलग सवाल है. लेकिन टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई, अब आपको टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं, जरूरत पड़े तो टॉयलेट आपके पास आ सकता है.

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: कम्युनिटी में हमारे क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारियां हर सुबह आपको हम देते रहते हैं. मुस्कान केयर ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंटरनेशनल सिकल अवेयरनेस ब्लड डोनेशन ड्राइव. इसी शनिवार को रहेगा मैनुकाओ न्यूजीलैंड ब्लड सेंटर में, जिसमें आप जाकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं. साथ ही में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया को लेकर अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हैं. इस पर एक स्पेशल पॉडकास्ट जो है ये भी किया गया है, जो रोवर पर आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पर सैंडी और रुजबे ने निवेदिता शर्मा विज, जो कि एक सीजन्ड हेल्थ प्रोफेशनल हैं, और उनसे बातें की हैं मादा विद लिव्ड एक्सपीरियंस और क्या है ये सब कुछ, इसके बारे में जानकारियां यहां पर आपको मिलेंगी. इसके अलावा सहज योगा मेडिटेशन ने फ्री वीकली मेडिटेशन सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं. आउटर ये होता है मरिस बे में, आउटर होल 478 बीच रोड मरिस बे. एवरी मंडेज को 7:15 से 8:15 पीएम मारिया को 02230399918 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. माउंट एल्बर्ट में ओइराका सी स्काउट्स होल रेंज व्यू रोड में, और एवरी सैटरडे को 10 AM टू 12 PM आरती से आप बातें करें 02240483386 पर. हॉविक में द ग्रीन रूम अक्सब्रिज सेंटर 35 अक्सब्रिज रोड हॉविक, एवरी ट्यूजडे 7 to 8 PM 02256699445 पर. और नॉर्थ कोर्ट में 27 लेक रोड में एवरी ट्यूजडे को रात 7 to 8 PM तक यहां ओमकार से आप बातें कर सकते हैं 02210744452 पर. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए ला रहे हैं श्री राम लीला. ये 8th of August को होने जा रहा है, और इस के लिए बड़े ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं. आप भी एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्शन में शामिल होना चाहते हैं एज अ क्रिएटिव विजुअल डायरेक्टर, तो मास्टर अशोक से आप बातें कर सकते हैं 02117954599. इस नंबर पर उनसे आप ज़रूर बातें करें या उनको मैसेज कर सकते हैं. माँ दुर्गा मंदिर 4x3 ऑनस्लो एफ पापाटोयटोय में माँ भगवती का जागरण इसी शनिवार को रहेगा रात 7 PM. महाप्रसाद यानी भोजन आपके लिए, उसके बाद ज्योति प्रचंड होगी रात 9 PM से, और माता का जागरण जो है ये रात में होगा, तो आप जाकर इसमें ज़रूर हिस्सा ले सकते हैं. आपके पास भी कम्युनिटी की कोई खबर है जो और लोगों तक आपको पहुँचानी है, buzz@hamfm.com buzz@hummfm.com पर अपने ईमेल्स आप हमें जरूर भेज सकते हैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Hey, देखो आ गए.
2: Keep calm because Punjabi swag is on.
5: Hey, hey, पहले दिनों तेरे उत्ते आँख रखिए, तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दल मंगी.

0: Dear. Streaming on Rover.
1: Jen didn't think she needed a DVS system.
2: Oh, I've got insulation in that.
1: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
2: Ah, yeah.
1: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट। squirrel.co.nz
4: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 फॉर सन टूर्स। दैट्स 0800 478686। लिमिटेड स्पेसेस।
5: Bunnings brings you the lowest prices on solid energy 15-litre kindling box, just $13.40. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Lowest prices are just the beginning.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा, कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
9: Beating pump prices is easy when you take a bus, and you won't even have to wait long. There are 45 bus routes around Auckland that run at least every 15 minutes from 7am to 7pm, 7 days a week, and a whole bunch that keep running till midnight with reduced frequency, so you can spend your money on a night out instead of just getting there. Chances are, there's a frequent or late night bus that's going your way. Check the AT Journey Planner, then just turn up and go.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 21 मिनट हुए हैं 9 बजकर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. आपको हमने पहले भी बताया है कि इसी संडे को इंटरनेशनल योगा डे ये मार्क किया जाएगा. ये 12th ग्लोबल इवेंट जो होगा, ये 12th एडिशन 12वें साल में ये प्रवेश कर रहे हैं. और इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इसको लीड करने वाले हैं कोलकाता के रेड रोड पर. एंड एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस बार मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया और अराउंड द ग्लोब योगा सेशंस में हिस्सा लेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स में हिस्सा लेंगे. और पिछले कई सालों में योगा डे जो है एक इंडियन थीरी से आगे बढ़कर एक ग्लोबल फिनोमिना बन चुका है. एंड प्रपोजल जो है ये रखा गया था यूनाइटेड नेशंस के सामने टू प्रमोट हेल्थ, माइंडफुलनेस और वेलबींग. योगा जो वर्ड है कहते हैं कि ये संस्कृत से आया है, युज या युजिर शब्दों से. युज या युजिर का मतलब होता है टू यूनाइट और टू ज्वाइन टुगेदर. और योगा जो है ये प्रैक्टिस सिंबलाइज करता है यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. और ताकि ह्यूमन और नेचर के बीच में एक हार्मनी बना रहे. आज योगा जो है दुनिया भर में प्रैक्टिस किया जाता है फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए. इस साल का जो योगा डे थीम है वो है योगा फॉर हेल्थी एजिंग. और जैसे हमने पहले आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इस आइडिया को पहली बार प्रपोज किया था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपना भाषण कर रहे थे 2014 में. उन्होंने डिस्क्राइब किया था योगा को कि एक इनवैल्यूबल गिफ्ट है जिसका कोई वैल्यू नहीं है. और कैसे ये एक हार्मनी क्रिएट कर सकता है माइंड और बॉडी का. और जो प्रपोजल है इसको भारी सपोर्ट मिला था उस टाइम पर. और 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन 69

0: and most nationalities participating in a single yoga session. और योगा डे जो है 21st जून को क्यों सेलिब्रेट या मार्क किया जाता है, क्योंकि वो समर सोल्स्टिस से कोइंसाइड करता है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. और समर सोल्स्टिस जो है, सोल्स्टिस कुछ लोग कहते हैं, ये एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है बहुत सारे कल्चर्स में. और सॉरी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में इसको एसोसिएट किया जाता है लाइट, एनर्जी, रिन्यूअल, बैलेंस, इन सभी चीज़ों के साथ. तो इसीलिए 21st ऑफ जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये साल का सबसे लंबा दिन होता है और इसी संडे को ये एक बार फिर मार्क किया जाएगा. तो इंटरनेशनल योगा डे के बारे में ये कुछ खास जानकारियाँ रही है आपके लिए. फीफा वर्ल्ड कप का मैच फ्रांस और सेनेगल के बीच पूरा हो चुका है. फ्रांस की जीत सेनेगल के खिलाफ 3-1 से हुई है. थोड़ी देर बाद 35 मिनटों बाद इराक और नॉर्वे का मैच शुरू होगा. दिन में 1 बजे अर्जेंटीना अल्जीरिया से खेलेगा. 4 PM ऑस्ट्रिया वर्सेस जॉर्डन. ये सारे मैचेस जो है खेले जाएंगे, जिन पर अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे. और अगर आप फिजी फुटबॉल में दिलचस्पी रखते हैं तो याद रखें बिग फिजी फैक्ट ये इसी फ्राइडे से खेला जाएगा सुब्रेल पार्क लंबासा में. जो फर्स्ट राउंड ऑफ मैचेस हैं फ्राइडे को 1 PM लोटोका वर्सेस नसीनू, 3 PM बा वर्सेस नंडोंगा, 5 PM रेवा वर्सेस नावुआ और 7:30 PM लंबासा वर्सेस सुवा मैचेस जो है ये खेले जाएंगे, जिन पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे.
1: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
2: Hollywood's most wanted.
3: Gundi ghar dao ya seedha andar aao.
4: Brought
2: to you by Indelible Homes. Build your dreams.

हम से बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेडली लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कॉकटेल 2 पिक्चर के रिलीज होने का, और उसी का ये गाना आपके लिए हम पेश कर रहे थे. डोंट फॉरगेट FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप, अगले राउंड के मैचेस कल खेले जाएंगे. इंडिया एंड न्यूजीलैंड आर ऑलरेडी थ्रू टू द सेमीफाइनल्स. नोचो में ये मैचेस हो रहे हैं. 8 वर्ल्ड क्लास टीमें जो है एक दूसरे का मुकाबला कर रही हैं. रिजल्ट्स तो हम आपको बता ही चुके हैं. डोंट फॉरगेट hockeynz.flicket.co.nz hockeynz.flicket.co.nz विजिट करते हुए आप टिकट्स जो है ले सकते हैं. एंड गो आउट एंड सपोर्ट आवर वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वीमेंस टीम जो टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं और सेमीफाइनल्स तक भी पहुंच चुकी हैं. हालांकि उनका एक मैच अभी बाकी है, और अगर पासेस आप जीतना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास. रिमेंबर, अपॉर्चुनिटी है टू विन पासेस. ऑल यू गॉट टू डू इज आप हॉकी लिखें और 5599 पर अपने नाम के साथ अभी हमारे पास उसे भेज दें. आपके पास अराउंड 5 मिनट्स का टाइम होगा. रिमेंबर, यू गॉट 5 मिनट्स जिस दौरान अपने मैसेजेस जो हैं ये आप 5599 पर हमारे पास भेज सकते हैं. हॉकी लिखें, अपना नाम लिखें और उसे भेज दें. साथ ही में याद रखें लेजेंडरी सिद्धार्थ रंडेरिया ये आ रहे हैं गुज्जू भाईनी एक्सचेंज ऑफर लेकर. अब आज 17th of June हो चुका है, 3rd of July तकरीबन 2 हफ्ते, बेसिकली यू कैन से 2 हफ्ते बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त प्ले जो है ये होने जा रहा है विक्ट्री कॉन्वेंशन सेंटर में. और एक ये ब्रांड न्यू कॉमेडी है जहां पर गुज्जू भाई को एक बहुत ही अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर मिलता है, और क्या होता है ये आप देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा. premiertickets.co.nz विजिट करें और जल्द से जल्द अपने टिकट्स इसके लिए आप ले लें.

0: नट खट जट लटक मटक लचक मचक लचक मचक चाल चलत जा।
1: ए छोरा गांडा।

0: Show.
1: समय देखिए अभी 24 मिनट रह गए हैं 10 बजने में. द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आप हमारे साथ दे रहे. याद रहे फाइनल फ्यू डेज अब बाकी हैं हमारे पास जब हम क्यू थिएटर में द बलून डॉग ये जाकर एंजॉय कर सकते हैं. और जेकब राजन जस्टिन लिविस ने मिलकर इस बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है. ये कहानी जो है इज इंस्पायर्ड रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो कहानी थी काबुलीवाला से और इसको डेवलप किया जस्टिन ने और जेकब ने मिलकर और इसे सेट किया इन द 21st सेंचुरी ऑकलैंड. एक बहुत ही खूबसूरत कहानी 5 साल की एक लड़की और एक बहुत ही लोनली माइग्रेंट वो का कैसे इनके बीच में दोस्ती होती है और परिवार की आंखें कैसे खुलती हैं टू सेट एन अनकम्फर्टेबल ट्रूथ्स. तो इसका जो प्रीव्यू सीजन है ये सोल्ड आउट रहा. यू कह सकते हैं इट्स अ थिएट्रिकल मास्टरपीस. लाइव बैंड ओरिजिनल म्यूजिक डांस थिएटर का जादू मास्टरपीस ये सब कुछ इमोशन सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. ऐसा लगेगा देखने पर कि यू आर पार्ट ऑफ इट. ये आपकी कहानी है या आप इस जिंदगी में शामिल हैं. रेजिलियंस और ह्यूमैनिटी दोनों की ये बहुत ही खूबसूरत कहानी बलून डॉग जिसके लिए अब टिकट्स अवेलेबल हैं. याद रहे फाइनल फ्यू डेज की खातिर iticket.co.nz आप विजिट करें और लेट्स गो आउट. जस्टिन लुइस ने इसे डायरेक्ट भी किया है. किस तरह से इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है और किस तरह से इस स्टोरी को समझकर इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने तैयार किया है इट्स डेफिनेटली वोथ प्राइजिंग डेफिनेटली वोथ गविंग डेफिनेटली सपोर्टिंग वोथ सपोर्टिंग ये प्रोजेक्ट जो है. सो मेक श्योर आप iticket.co.nz विजिट करें और जल्द से जल्द टिकट्स इसके लिए आप ले सकते हैं.

0: भ्रमण में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम शॉप एंड स्कैन टू विन अ शेयर ऑफ $800,000 एट वूलवर्थ्स। Just buy 3 participating products and scan your everyday rewards card for your chance to win instant money off your shop. In store only at Woolworths. T's and C's apply.
2: MediaWorks complaints. How can I help?
3: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
2: Thank you.
3: It's all I can think about.
2: What does it sound like?
3: Yeah, I'd rather not.
2: Go on, why don't you have a crack?
3: Okay, got a plumbing problem.
2: Oh, I need a bit more than that.
3: They've got your back.
2: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
3: Oh, okay.
4: There's no better plumber to give it a crack.
2: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
3: No, I want a plumber.
5: Advertise with
6: MediaWorks.
5: New Zealand listens to us.
7: JB Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket on the 25th of June from 5 p.m. with grand opening specials for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket, Thursday, 25th June, 5 to 9 p.m. JB, you've done it again.
8: Nissan Big Deals, sirf 22nd June tak. Select new Navara models par paye $5,000 tak ki bachat, plus accessories bhi. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8, backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
11: What's going on?
12: 19 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। आपको याद होगा न्यूज हेडलाइंस में हमने आपको बताया था कि कल 7:45 के वक्त सेंट्रल ऑकलैंड में एक व्यक्ति पर गंभीर रूप से हमला जो है ये किया गया था। अब खबर आ रही है कि जिस व्यक्ति पर हमला किया गया था उसकी मृत्यु हो गई है। एमरजेंसी सर्विसेज को बताया गया था कि कई लोग एक झगड़े में इन्वॉल्व थे और ये लोग एक दूसरे को जानते थे। एक्टिंग डिटेक्टिव सीनियर सर्जेंट स्कॉट विल्सन ने बताया ऑकलैंड सिटी CIB के कि विक्टिम को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन वहां पहुंचने पर उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में 23 या ओल्ड एक व्यक्ति पर मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं और आज बाद में उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल जहां पर यह घटना घटी थी इंक्वायरीज चल रही हैं और एक सीन गार्ड जो है ये अभी वहां पर मौजूद हैं। तो मामले पर कुछ और जानकारी अगर मिलती है तो ये हम आपके लिए हम पर जरूर लेकर आएंगे। अभी एक और जो पॉलिटिकल सर्वे है ये किया गया है, टेलबोट मिल्स पोल फॉर एनेक्टा कंसल्टिंग, इसका रिजल्ट सामने आया है जिसमें ये देखा गया है कि ग्रीन पार्टी का सपोर्ट जो है ये बढ़ा है। लेबर वाज डाउन 2 points to 34%, नेशनल अभी भी 29 पर है, ग्रीन ऊपर गया है टू 13%, न्यूजीलैंड फेस्ट फेल 2 points to 12%, एक्ट 1 point नीचे 6% पर, टेपाटी माउरी इंक्रीज टू 2.6% और अपॉर्चुनिटी पार्टी रोज टू 3.3%। और जो पोल है उसके मुताबिक सपोर्ट फॉर लेबर, ग्रीन्स और टेपाटी माउरी एट अ कम्बाइंड 49% ahead of National NZ Fest and Act which come to 47%. इस पोल का जो प्रोजेक्शन है अगर देखें तो लेबर वुड विन 42 सीट्स, ग्रेन्स 16 सीट्स, टेपाटी माउरी 3 सीट्स, जिसकी वजह से लेफ्ट ब्लॉक को 61 सीट्स मिल जाएंगे इफ़ ऑल करंट पार्लियामेंट्री पार्टीज रिटेन्ड देयर रिप्रेजेंटेशन। सो दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अपडेट्स और भी अगर कुछ हमारे हाथ लगते हैं तो ये आपकी खातिर हम ज़रूर लेकर आएंगे। वैसे आपको ये भी पता है कि इसी शनिवार को सुपर रग्बी का ग्रैंड फाइनल जो है ये होने जा रहा है, वेलिंगटन में फाइनल खेला जाएगा। टिकट्स जैसे ही ओपन किए गए फॉर सेल, विद इन 15 मिनट्स सारे के सारे टिकट्स वे सोल्ड आउट। So you can expect a capacity crowd and I believe there would be some people traveling from Waikato or वेलिंगटन के फैंस तो होंगे ही. एंड इट इज़ गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रीफाइंग एटमोसफियर इसी शनिवार को. हरिकन्स ने ग्रैंड फाइनल में अपनी जगह बनाई. ये सीज़न उनके लिए पूरा का पूरा बहुत ही अच्छा रहा. टॉप ऑफ द टेबल इन्होंने फिनिश किया और सीरीज विंस और उसके बाद क्विंसलैंड रेड्स और ब्लूज को भी इन्होंने हराया. चीफ्स ने बहुत ही इम्प्रेसिव फाइनल कैंपेन जो है ये इन्जॉय किया, ब्रम्बीज को हराया. फिर क्रुसेडर्स जो कि डिफेंडिंग चैम्पियंस थे उनको भी हराया. और जिन फैंस को टिकट्स मिले हैं दे विल ऑल्सो बी ट्रीटेड टू ए हाफ टाइम परफॉर्मेंस. जो है म्यूजिशियन स्टैन वॉकर परफॉर्म करने वाले हैं एट द इंटरवल. और इन्होंने आखिरी बार 2013 फाइनल में परफॉर्म किया था. जब ये फाइनल हुआ था उस समय पर चीफ्स ने ब्रम्बीज को हराया था. सो क्या स्टैन वॉकर चीफ्स के लिए लकी है या इट विल बी हरिकन्स जिन्होंने बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है थ्रू आउट द ईयर वो इस टाइटल को अपने नाम करेंगे. आपको क्या लगता है विच टीम आर यू बैकिंग आउट ऑफ द टू जो अब फाइनल्स तक पहुंच चुकी हैं, चीफ्स और क्रुसेडर्स? 5599 पर आप हमें टेक्स्ट करके बता सकते हैं. सैटरडे को 7 PM जो मैच है ये शुरू हो जाएगा. अपडेट्स हम पर आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे.

अभी तो 10 मिनट रह गए हैं 10 बजने में. 10 मिनटों के बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट और फिर काशिका मा टाइम में आपका साथ देने के लिए आ जाएंगी. आज की दो बातें, पहली बात जो है इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है, अच्छी तरह से आप सुने इसे. इन तीनों बातों का हमेशा ख्याल रखें, लिखे वही जिसके नीचे अपना हस्ताक्षर कर सकें, सोचे वही जो बेझिझक बोल सकें, और बोले वही जिसका जवाब सुन सकें. लिखे वही जिसके नीचे दस्तखत खुद के कर सकें, सोचे वही जो बेझिझक बोल सकें, और बोले वही जिसका जवाब आप सुन सकें. उम्मीद है इन बातों पर आज अमल जरूर आप करेंगे. हम कल वापस आएंगे आपका साथ देने के लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. होपफुली आज अपना बाकी का दिन आप एंजॉय करेंगे और अच्छी तरह से गुजारेंगे. खुश रहें, मुस्कुराते रहें. वी विल ऑल सी यू टुमारो ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.

0: Words Adda.
1: तो आपके साथ एक्सपर्ट अड्डा में मुझे सिर्फ यही बताना है कि क्योंकि ये मेंस हेल्थ वीक है और मोस्टली क्या होता है, आई ट्राई टू रोल इट आउट एंड मैं जब बात करती हूँ कि क्या खास होता है तो आदमियों के लिए, मेन के लिए खास तौर पे, दे शुड नो दैट SPF प्रोटेक्शन आपके लिए भी कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी स्किन केयर कितनी इंपॉर्टेंट है. काफ़ी मिसकंसेप्शंस होते हैं यू नो फॉर द यूसेज ऑफ सनस्क्रीन, कि भाई ये सनस्क्रीन कौन इस्तेमाल कर सकता है कौन नहीं, एंड कहते हैं कि मिथ्स होते हैं इट्स अराउंड द स्किन, जो जिनका स्किन थोड़ा डार्कर स्किन है उनको नहीं करना चाहिए, या होता है कि अर्ली साइंस ऑफ एजिंग जो होते हैं, पिगमेंटेशन होती है उन चीज़ों से हो जाती हैं. लॉन्ग टर्म आपको पता है कि आपकी स्किन कितनी खुद की डैमेज हो जा सकती है. तो किसी ने कहा कि यू नो बात कर रही थी कि ये जब सनी होता है ना उसी समय सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना होता है, दैट इज़ डेफिनेटली नॉट देयर. यूवी रेस जो हैं उनको क्लाउड्स के बीच में से भी निकलना आता है और एक सिग्निफिकेंट एक जो परसेंटेज होती है अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है वो क्लाउड्स से भी पेनिट्रेट होकर आती है, आपकी स्किन पर वो इफ़ेक्ट करने लगती है. सो डेलाइट है और आपको पता है कि ये आपको एक यूवी एक्सपोजर मिल रहा है, भले ही बादल हों तो आपको फिर भी सन प्रोटेक्शन लगाना चाहिए, स्क्रीन प्रोटेक्शन लगाना चाहिए. एक मॉर्निंग में एप्लीकेशन लगा ली बहुत हो गया, अरे भाई नहीं ऐसा नहीं होता. आपके लिए सनस्क्रीन, जैसे आप उठते हैं तैयार व्यार हो जाते हैं सनस्क्रीन लगा लीजिए. चलिए मान लीजिए सुबह 8 बजे का एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी कम होने लग जाती है ठीक इसी तरह से ये सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन भी कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक स्वेट पोल्यूशन आपके कपड़ों से जो कभी कभी टच करता है स्किन से, नेचुरल ब्रेकडाउन होता है सनस्क्रीन का. ये क्या होता है कि इसकी प्रोटेक्शन आपको कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए, जस्ट लाइक यू रिचार्ज योर फोन, सिमिलरली आपको रीअप्लाई करना पड़ता है सनस्क्रीन लोशन जब आप बाहर ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं. हायर SPF का मतलब होता है कंप्लीट प्रोटेक्शन. SPF 50 इट्स ऑन अ वेरी हाई परसेंटेज और कहते हैं ये सन प्रोटेक्शन के लिए अच्छा रहता है, बट एक बात है कि इट डज नॉट रियली गारंटी यू दी कंप्लीट प्रोटेक्शन, क्योंकि इसमें एक चीज़ जो होती है वो होती है हायर SPF का मतलब होता है कि इंटेंस एक्सपोजर जो होता है आपका, थोड़ा उसमें फ़र्क पड़ जाता है. बट ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि भाई हमने हाई SPF लगा रखा है तो हमारा पूरा दिन निकल जाएगा, इट डजंट गो लाइक दिस गाइस. इसी के साथ साथ सनस्क्रीन मेरे एक स्किन केयर के लिए रूटीन है. अब ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है ओवरऑल, क्योंकि सनस्क्रीन हमें प्रिवेंट करता है आने वाले हार्म से, यानी कि एक स्किन बैरियर बन जाता है जहाँ पे आपकी स्किन को क्लीन रखता है और साथ साथ आपके लिए एक सफिशिएंट मॉइस्चराइज़र भी लेकर आता है, एक एडिक्वेट एक बैरियर या एक शील्ड आपके लिए बन जाता है और फिर एक ये स्ट्रक्चर बन जाता है, एक फाउंडेशन बन जाता है आपके लिए, आपकी स्किन के लिए, जो आपकी हेल्थी स्किन के लिए, आई कैन से दैट. सो अल्टीमेटली कहते हैं जैसे कि डार्क स्किन जो होती है उसके लिए सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, अरे भाई मेलानिन जो होता है ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन तो ऑफकोर्स यूवी रेडिएशन से लेकर आता है, बट कभी पूरी की पूरी रिस्क जो है ना एलिमिनेट नहीं करता, प्रीमेच्योर एजिंग या वो स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता. तो इट इज़ अ यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट बॉयज़, आप सुन रहे हैं मेंटल मेंस जो हेल्थ वीक है इसके दौरान, आपसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ दैट फॉर अ बेटर स्किन एप्लीकेशन फॉर मेन, डू ट्राई एंड हैव योर स्किन रूटीन प्रॉपर. अपना क्लेंजिंग मॉइस्चराइजिंग आप भी कर सकते हैं, आपकी स्किन को हेल्थी बनाना है आपको डेफिनेटली बीच हॉलीडेज, क्रिकेट मैचेस, पर्टिकुलरली सनी डेज पर, इनमें तो खास तौर पे ज़रूरत होती है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है आपको एंड देन यू आर सॉर्टेड. ठीक है, ऑफिस आउट आउट का वक्त आ रहा है, कहाँ से सुन रहे हैं ये बताइए, 5599 पे मुझे टेक्स्ट कीजिए.
0: My time with Kashika.
2: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में. हाफी तो नहीं.
3: Get ready, New Zealand. Hum is proud to bring you Stick with Hum, your chance to support the Vantage Black Sticks women at the upcoming FIH Hockey Women's Nations Cup. Experience world-class international hockey right here at home as top teams battle for glory. Plus, you could win a double pass to the games. Simply listen for the cue to call from your announcer, then text HOCKEY to 5599 to enter. Stick with Hum and get behind our Vantage Black Sticks women.
4: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
5: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
6: We've got double glazing.
5: Have you still got that cold, damp feeling?
7: Yeah, we do.
5: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
8: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
9: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
8: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
9: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मा'स फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मा'स इडली और डोसा बैटर। अम्मा'स फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
10: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.

0: Service. Waiting weeks for your FPOS setup? That's lost revenue. Shift4 gets your business up and running and taking payments in under a week. Tailor your setup from day one with flexible plans and customizable options that can bring business costs down. Make the shift today.
1: Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Office shout out.
3: Office shout out की वक्त आ चला है और ऐसे में आ गया है मेरे पास टेक्स्ट. पूछे कहाँ से. अच्छा ये तो हमारे दोस्त हैं जो वेलिंगटन में हैं. I am very sure it is for from there, but I am not sure now. 3159. Okay. Yeah, Ash from Wellington. Absolutely right. Very happy, sunny and men's ka dhyan rakhne wali. Good morning, Kashika ji. Kashish Foods ke saujanya se. Aha, kya baat hai. Ye Kashish Food ka ek packet aapke liye virtually maine bhej diya. Chalo, khush. Thank you so much. Aapka message aagaya. It really means a lot. Aur jab hum baatein karte hain about, abhi jaise aapne suna, ke FIH Hockey's Women's Nation जो कप है वो 21 जून तक चल रहा है और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये ब्लैक स्टिक्स का वुमेन का जो एक टाइटल वो डिफेंड करने वाली हैं उसमें हम थोड़ा सा उनके अंदर जोश भर सकते हैं. अब 8 कंट्रीज इसमें खेल रही वर्ल्ड क्लास हॉकी और वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल हॉकी इवेंट्स जो हम न्यूजीलैंड में देखने वाले हैं. अगर आप चाहते हैं कि इसमें भाग लेना, मिलके यहां पे चिल्लाना, उनको पंप अप करना, तो आप हॉकी लिखिए 5599 पे और शायद आप डबल पास जीत सकते हैं. hockeynz.flicket.co.nz की वेबसाइट पर आप जाकर डिटेल्स भी ले सकते हैं. अगर मैं पॉइंट्स टेबल की बात करती हूँ तो इंग्लैंड इज ऑन नंबर 1, इंडिया इज ऑन नंबर 2, स्कॉटलैंड इज ऑन नंबर 3, इटली इज ऑन 4, यूरोगे इज ऑन 5, वेल्स इज ऑन 6, कोरिया इज ऑन 7 एंड ऑस्ट्रिया इज ऑन 8.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: बीट ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: वैसे आपको बता देते हैं कि हमारे ब्रेकफास्ट शो एंड ड्राइव शो के बहुत ही ज़बरदस्त दिग्गज जो हैं ये अपने पॉडकास्ट लेकर आते हैं, चाहे कैचअप करना ब्रेकफास्ट का बीएफ लिख के भेजिए या फिर हमारी विनिंग टीम सैंडी एंड रुस्बे, इनका आप अनफिल्टर्ड ड्राइव में अब एक नेक्स्ट पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन थैलेसमिया।

0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: एक बात से मैं चाहती हूँ कि आप सावधान रहें, क्योंकि पुलिस इन ऑकलैंड जो है ये वॉर्न कर रहे हैं जो सिटी सेंटर में हैं, कि जो लोग आप रास्ते में देखते हैं दे आर ड्रेस्ड अप एज मॉन्क्स, रिपोर्टेडली पता चल रहा है कि दे आर डिमांडिंग कैश. अब अथॉरिटीज़ ने बताया है कि यू नो सोशल मीडिया पे भी एक स्कैम री इमर्ज होकर आ रहा है कि लोग कुछ मॉन्क्स के लिए तरह तैयार होते हैं, और कुछ पोस्ट जो थी सीन बाय आरएनजेड जो सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि मॉन्क्स जो है ब्राउन्स बे एरिया में, रोजलैंड एरिया में एज वेल एज सेंट्रल सिटी में नज़र आए हैं. एक पोस्ट से और भी पता चला कि कुछ मॉन्क्स जो थे वो रोटोरुआ में नज़र आए, और ऐसे में बताया जा रहा था कि समबडी सजेस्टेड कि उनका जो बिहेवियर था बहुत ही वियर्ड था, और वो दूसरों के पास अप्रोच करने लग जाते हैं सीबीडी में. ऑल दो कुछ अनहर्ड सिचुएशन ऐसी कोई नहीं थी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको ऐसे अप्रोच कर रहा है, कुछ सर्कमस्टांसेस अपने बता रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको पुलिस को कॉन्टैक्ट कर रहा है. और साथ साथ इफ़ यू आर अप्रोच बाय समवन जिन्होंने मॉन्क वाले कपड़े पहने हुए एंड दे आर बींग यू नो उनके हाथ में कुछ शायद कुछ ब्रेसलेट्स हैं या कुछ हैं, और वो आपसे कहते हैं कि इसके बदले में हमें कैश दे दो या कुछ, इनसे बात ही मत कीजिएगा. डू नॉट इंगेज विद देम. सो दिस इज़ जस्ट वन थिंग, सम यू नो वी वुड लाइक टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस. बी वेरी वेरी केयरफुल इफ़ यू आर इन दीज एरियाज.

0: चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: Please use your imagination for the following ad.
2: If I won Powerball, the first person I'd tell would be and would surprise all our friends by
1: imagine winning $7 million this Wednesday. Play in store or online.
3: At Bunnings, costs are kept low by buying in bulk, so you save more. And that means low prices for all kinds of useful supplies, like all-set 50-litre modular storage container, only $8.99. Finished Quantum dishwashing tablets, 72-pack, $34.99. Philips LED Cool Daylight 19-watt globe, only $24.95. Where you find a competitor's lower price and the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
4: To get the best value from your mechanic, bringing it into Midas stops a lot of confusing thoughts like, should you ask AI first? Offer a contra deal?
5: You don't need your toilets cleaned, do you?
4: Find a cheaper mechanic in Invercargill? Pretend you know what they're talking about?
6: Pretty sure the carbonara's playing up.
4: Pray, plead, sob, beg, bargain. So save the mental gymnastics and bring it into Midas for straight answers and mates rates prices. Midas, for peace of mind motoring.
7: The red hot sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
8: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
9: Want $500 phone dollars to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.
10: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
11: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
12: ये ड्रीम तो मुझे लगता है हम सबको डेफिनेटली बिना किसी रुकावट के आ सकती है. एंड दिस इज़ नथिंग लेस देन पैसा. ऑफ कोर्स ये पैसे का खेल है, माया है. और मनी जो अगर आपको आता है तो इट्स अ पावर. एक्चुअली ये देखा जाए तो ये रिसोर्सेस और पावर को बताता है टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, या फिर क्या आप लाइफ में चाहते हैं. हमारी पोटेंशियल, हमारी एनर्जी, हमारी पावर, किस तरह से हम किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो आपने ड्रीम किया $100 का एक बिल, विच मीन्स $100 का नोट, उससे रिप्रेजेंट करता है दैट देर इज़ एन एबिलिटी टू ट्राई समथिंग न्यू या एक्साइटिंग. और ये अपॉर्चुनिटी जो है टू डू समथिंग जो आप शायद पहले कभी नहीं कर चुके हैं, तो इस तरह की एक आपके लिए अच्छा एक चुनौती आ जाती है सामने. नेगेटिवली अगर मैं बात करूँ इस बात के लिए, तो एक $100 का बिल रिप्रेजेंट करता है कि आपका पावर सो समथिंग शायद आपने शायद पहले नहीं किया हो. एंड उसमें लगता है इट फील्स अ बिट क्रेजी, या शायद आपको कुछ वो डेंजरस लगती हो चीज़. और भी रिफ्लेक्ट कर सकता है अबाउट योर फीलिंग्स दैट किसी और से रिलेटेड कि वो डेंजरस है, विद सम न्यू अपॉर्चुनिटी जो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे. इट ऑल्सो कैन रिप्रेजेंट आपकी खुद की फीलिंग्स दैट आपको लगता है कि कुछ चीज़ें रिस्की हैं, कुछ चीज़ें अनप्रडिक्टेबल हैं, विद द अपॉर्चुनिटीज प्रॉबेबली जो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे. तो कई तरीके से इस मनी की ड्रीम को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं. एंड श्योरली एक चीज़ तो मैं कह ही सकती हूँ, हम चाहते हैं कि हमारे सपनों में ये पैसे नोट ज़रूर बरसते ही रहें. और मोस्टली कहते हैं ना कि अगर आप ये ड्रीम जब करते हैं और आपके सामने कुछ और आता है तो या लेट मी नो। बेसिकली देखा जाए तो लोग कहते हैं पैसा देख लिया तो उसका ऑपोजिट होता है, पैसा भागने लग जाता है, लेकिन कभी कभी उसकी तरफ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। ऑल राइट, हियर वी गो। आ चुका है दस दिन तक का ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक।

थ्रोबैक की तरफ मैं पहुंच रही हूं और एक ऐसी फिल्म की तरफ पहुंच रही हूं। 22 फरवरी के दिन 1991 को ये फिल्म रिलीज की गई। म्यूजिक वॉज बाय राम लक्ष्मण, जिन्होंने हम आपके हैं कौन फिल्म को जैसे कमाल का म्यूजिक दिया था। इस फिल्म में दो गुड लुकिंग एक्टर्स ऑफ 90s विच वर सलमान खान एंड रवीना टंडन थे। फिल्म थी पत्थर के फूल। ये फिल्म जो पर्टिकुलर थी, इस फिल्म में दरअसल विनोद मेहरा जी ने ये फिल्म की थी और ही डाइड बिफोर द फिल्म रिलीज्ड। तो इनकी आवाज़ को डब किया था मराठी एक्टर सचिन खेड़ेकर ने। और उसके बाद जब ये फिल्म रिलीज़ की गई तो इसे डेडिकेट किया गया था इन द मेमोरी इन द स्टार्ट्स ऑफ द क्रेडिट। अगर आप इस फिल्म को पत्थर के फूल देखेंगे तो ज़रूर विनोद मेहरा जी के लिए वो आप एक ट्रिब्यूट उनके लिए देख पाएंगे, उनकी मेमोरी के लिए उनके लिए डेडिकेट करी गई थी ये फिल्म। अच्छा, इसके साथ साथ एज आई सेड गुड लुकिंग फेस तो रवीना टंडन, इन्होंने फिल्म फेयर का लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता था। तो ये कितनी सारी चीज़ें इसमें थी। एंड एक चीज़ जो खास इसमें नोट करने वाली थी, इसमें जितने भी गाने थे खाली एक गाने को छोड़ के सारे के सारे सॉन्ग्स SP बालासुब्रमण्यम जी ने गाए। रीज़न कि उनकी आवाज़ सलमान खान के साथ क्या मैच करके गई थी और इट बिकेम लाइक कि हाँ भाई, उनकी आवाज़ के बिना वो उनका कुछ नहीं होने वाला। सो GP/CP की फिल्म थी एंड इसमें सलमान खान ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल अदा किया था। डेब्यू किया था रवीना टंडन ने। बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म हिट जरूर हुई थी एंड वन ऑफ द हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ हिंदी सिनेमा इस फिल्म को माना गया था, जिसमें बहुत सारी जगहों को घुमा दूंगी मैं अभी आपको। सुनो और घूमते चले जाओ।

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now.

0: or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
1: Thinking about becoming a teacher? Visit the Ministry of Education's Become a Teacher store at the Auckland Showgrounds on the 16th and 17th of June. Discover what teaching involves, explore your study options, and find out where a career in teaching could take you.
2: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
3: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. Police will be giving an update on missing woman Rowena Walker this afternoon. The Canterbury mother vanished without a trace 10 months ago. Mel Logan with more.
4: A renewed call for answers from police on Rowena's 40th birthday. They believe she was a victim of foul play last August, and a further search is planned. Police say it's disappointing and frustrating that her partner at the time, who has the right to silence, is unwilling to help with their inquiries.
3: Productivity loss through injury here has been costed at $8.7 billion. ACC's latest report shows about 20 million working days were lost in 2025. It's the equivalent of 50,000 people taking a whole year off. Workplace fatalities were also two times higher than in Australia. And artificial intelligence is proving to be a bit of a barrier for New Zealand's legal industry. A report shows an increase in demand, but junior lawyers are struggling to find jobs. Louise Hall-Strutt from Altitude Recruitment says technology is a double-edged sword.
5: It definitely has taken away a little bit of the junior roles. There has been a sharp drop in terms of junior hiring. I think firms are taking on less graduates.
3: In sport, the Silver Ferns have named an experienced netball squad of 12 for next month's Commonwealth Games. Karen Berger will captain the side with Kate Heffernan as her vice-captain. Midcourter Kimiora Poi and defender Catherine Hall are both carrying injuries and will need to prove their fitness before departing for Glasgow, Scotland. And in football, superstar Kylian Mbappe scored two goals as France beat Senegal 3-1 in their opening FIFA World Cup game today, and Norway leading Iraq 2-1 at halftime. Two goals for Norwegian star Erling Haaland. Football updates brought to you by Hisense.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
6: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस।
7: सूचित किया जाता है कि शैलेंद्र सैम नेव इश्वनी के पिता बिनमती के पति सिंगाटोका फिजी के भूतपूर्व निवासी तथा सिंग्स लॉयर के मंगल सिंह की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 021-663-101 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, शैलेंद्र सैम नेव इश्वनी के पिता बिंदमती के पति सिंगाटोका फिजी के भूतपूर्व निवासी तथा सिंग्स लॉयर के मंगल सिंह की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए आप 021-663-101 पर संपर्क कर सकते हैं। रवि रावि बाव फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट वेलिंगटन ऑकलैंड के रामकरण के भाई मैंगरी के नवनीत करण पिंकी नीली और पूनम के पिता मैंगरी ऑकलैंड के जयकरण प्रसाद की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे मांगरी लॉन सिमेट्री में किया जाने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए 021-08-34-3575 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, रावि रावि फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट वेलिंगटन ऑकलैंड के रामकरण के भाई मैंगरी के नवनीत करण पिंकी नीली और पूनम के पिता मैंगरी ऑकलैंड के जय करण प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे मैंगरी लॉन सिमेट्री में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 021-08-34-3575 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि ज्योति रचना प्रमीत की माँ इलीट सिनेमा लंबासा फिजी के भूतपूर्व मालिक मगन भाई पटेल की पत्नी रेवा पटेल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 3 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 021-903-255 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, ज्योति रचना और प्रमीत की मां इलीट सिनेमा लंबासा फिजी के भूतपूर्व मालिक मगन भाई पटेल की पत्नी रेवा पटेल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार 18 जून यानी कि कल दोपहर 3 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए आप 021-903-255 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि लाउटुका फिजी के भूतपूर्व निवासी शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलिन ऑकलैंड के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी माला रक्षा और सीमा की मां सत्यवती प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार 19 जून को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 02103647520 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने। लाटू कॉफी जी के भूतपूर्व निवासी शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलैंड ऑकलैंड के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी माला रक्षा और सीमा की माँ सत्यवती प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार 19 जून को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए आप 02106475200 पर संपर्क करें। भूरा और झोकन लिमिटेड सुवा के स्वर्गीय जय नारायण झोकन की पत्नी रजनी सेन अंजनीश जयंत मोहनीश और रोविन झोकन की मां हॉटन स्ट्रीट सुवा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्कल की कमलावती झोकन कियोला की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार बाद में फिजी में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 02233268 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने। भूरा और झोकन लिमिटेड सुवा के स्वर्गीय जय नारायण झोकन की पत्नी रजनीश जैन अंजनीश जयंत मोइनीश और रोविन झोकन की मां हॉटन स्ट्रीट सुवा की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्कल की कमलावती झोकन कियोला की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार बाद में फिजी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02233268 पर संपर्क कर सकते हैं।
6: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में 11:07 हो चुके हैं. आपका साथ मैं काशिका निभा रही हूँ 12 बजे तक, और कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए ये मुमकिन हो जाता है. वैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हम करते हैं, लेकिन हमारी 6 वर्ड की स्टोरी सुपरहिट हो गई है, क्योंकि आप जो हैं सुपरहिट बनाने वाले. इसे इसके साथ साथ रेस्क्यू मी, रिसाइकिल मी, आज क्या बात, कोई ऐसा आपके पास टिप होगा या कोई ऐसी बात होगी जो आप शेयर कर सकते हैं, जिसे हम रेस्क्यू भी कर सकते हैं, उसको फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर आप बता सकते हैं मुझे. और कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए ये मुमकिन हो जाता है. बाय द वे, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इसमें मुमकिन हो जाती हैं, जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. करण औजला आ रहे हैं अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ मैसिव हिट, क्योंकि 4 टॉपिंग हिट्स आपके लिए लेकर आएंगे. एंड इनके साथ साथ स्पार्क अरेना पे बिल्कुल स्पार्क करने के लिए 25 अगस्त को आप तैयार हो सकते हैं. बी द फर्स्ट, अगर आप आंसर करते हैं एक क्वेश्चन, आपको के ए लिखना है, और करण औजला से रिलेटेड मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगी कि करण औजला का एक फेवरेट सॉन्ग आपका क्या है. 5599 पे आपको के ए लिखना है, करण औजला का शॉर्ट फॉर्म हम तक पहुंचा देना है, एंड आपका नाम हम ड्रॉ में ऐड कर लेंगे फॉर द डबल पास. 22nd of June के दिन ब्रेकफास्ट शो में ये ड्रॉ होने वाला है. वैसे हमारी टिकट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए hum.rova.nz पर आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो livenation.co.nz पर भी आप क्लिक कर सकते हैं. चलिए फेसबुक के पेज पर भी पहुँच जाए, एक और डबल पास शायद जीतने के लिए आपको ये भी चांस मिल जाए.

0: डायन खाया जात है।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम हाँ।

0: ईट बेटर लिव बेटर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एलर्जीज जो हो जाती हैं वो शुरू हो जाती हैं, इट बिकम्स अ रिएक्शन जब आप कुछ मॉडरेट एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, कुछ इचिंग ऑल ओवर द बॉडी और उसके बाद कुछ रैपिडली आप जब चल रहे होते हैं, तेज़ चल रहे होते हैं तो आप ब्रीद शायद नहीं कर पाते. इट्स एस्टिमेटेड दैट 2.3 to 5% ऑफ द केसेज जो हैं ये ट्रिगर होती हैं जस्ट बाय डूइंग एक्सरसाइज. सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था इन द 70s, जहाँ पर कोई एक लॉन्ग डिस्टेंस का रनर था, वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे और एक बार नहीं कई बार वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे. एंड सर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, तो जब उन्हें टेस्ट किया गया तो उनके ब्लड में जो था इट कंटेन्ड सम सिग्नेचर ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन विच इज़ कॉल्ड एनाफिलैक्सिस. अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उनको ये एलर्जिक सिम्टम्स जो हो गए थे इट वॉज बिकॉज वो एक्सरसाइज करते थे, उसके बाद वो सी फूड खा लिया करते थे. जब वो सी फूड नहीं खाते थे तो उनको इस तरह की एलर्जी नहीं हुआ करती थी. नाउ सच काइंड ऑफ केसेस जो हैं ये फूड एलर्जेंस को ट्रिगर कर देते हैं. एंड ये सब टाइप जो है इसको हम कह सकते हैं वो फूड यू नो जैसे शेलफिश और फिर नट्स हैं, एग्स हैं, मिल्क है, वीट है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी इफेक्ट करने लग जाते हैं. ये सिम्टम्स जो हैं एलर्जी में बढ़ जाते हैं, इची रैश, स्वेलिंग ऑन द लिप्स, टिंगलिंग माउथ, फिर या वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन आफ्टर द एक्सरसाइज, इस तरह के केसेस बताए जाते हैं. तो एक्सरसाइज जो करने के बाद जो आपको कभी कभी ये ट्रिगर होता है इवन बाय एन एरोबिक एक्सरसाइज, कुड बी आफ्टर जॉगिंग या फिर फुटबॉल या डांसिंग, इनसे इक्वली कोई भी एज का हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है. बट ये पहला डायग्नोस अगर आपको पता है ना, ये एडल्टहुड में पता चलता है. एक स्टडी के ज़रिए पता चलता है दैट ये इनिशियली साइंटिस्ट ने कहा था कि फूड एलर्जी से हो सकता है, बट इट इज़ बेसिकली द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ, द वे यू आर एक्चुअली डूइंग थिंग्स. लाइक जैसे मैंने बताया आपको, एक्सरसाइज की, उसके बाद सी फूड खा लिया और सी फूड खाने के बाद उनको सडनली वो एलर्जन स्टार्ट हो गए, तो दे मस्ट बी समथिंग विच मस्ट बी यू नो रिएक्टिंग टू देम. और ये आपके बिहेवियर के जो चेंजेस होते हैं, जहाँ पे एक एक्टिविटी आप किस तरह से करते हैं उसके बाद आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं. बी वेरी केयरफुल, बी यू नो माइंडफुल जब भी आप कुछ भी नया कर रहे हैं और आपको लगता है कि उसमें आपको एक रिएक्शन होने वाला है. एंटी एस्टम आप कुछ चीज़ें ऐसे भी खा लेते हैं, लेकिन हेल्थी हैबिट आप ज़रूर अपनी मेंटेन करें और अपने पैटर्न को ज़रूर कोशिश करें फॉलो करने के लिए कि हाँ क्या ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा. ऑल राइट, आपने लिख के भेजा 3403 कोका, हाँ आई नो, बट आपको के ए लिखना था. तो चैम्पियंस एंथम आपने लिख के भेजा हरदीप, कहाँ हो बड़े दिनों बाद. एंड साथ साथ के ए आपने सॉफ्टली लिख के भेजा, तो आपकी एंट्री ले ली, लेकिन आपको के ए आपको लिखना था. कमिंग अप नेक्स्ट इज द सिक्स वर्ड स्टोरी.
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
4: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
5: First impressions happen before customers walk through the door. If your signage looks faded or hard to read, people assume more than you think. Speedy Signs creates sharp, professional shopfront signage that makes your business look open, confident, and ready for business. Sometimes the quickest way to lift foot traffic is simply to upgrade your signage. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz today and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
6: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
8: And award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
9: कहानी of Indelible Homes.
10: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमचे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 फॉर सन टूर्स, दैट्स 0800 478686। लिमिटेड स्पेसेस।
11: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
12: अच्छा, six word story की तरफ मैं पहुंच चुकी हूँ और आज वैसे किसी ने अपनी six word की story मेरे साथ share तो नहीं की है, लेकिन doesn't matter, मैं तो तैयार हूँ क्योंकि मुझे पता था कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें कुछ नहीं मिलता तो ring on her finger. He rejoiced. Ring on her finger. He rejoiced. तो yes, it makes sense definitely. And मैं अपने आप को पास कर देती हूँ. Okay, अभी पास

0: premiertickets.co.nz के जरिए जल्दी जाइए और टिकट्स खरीद लीजिए. ऑल राइट, मेरे पास सिक्स वर्ड स्टोरी आ गई. 4281, थैंक यू टू रेस्क्यू मी. टू हार्ट्स वन जर्नी एंडलेस मेमोरीज. टू हार्ट्स वन जर्नी एंडलेस मेमोरीज. ब्यूटिफुल, थैंक यू.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

और राइट, आपके लिए माहौल बनाने के लिए इंडियन इंक थिएटर कंपनी बलून डॉग लेकर आ रहे हैं और ये बहुत सक्सेसफुली चल रहा है और ये 20 जून तक चलने वाला है, जहां पर काबुली वाला जो है कहानी रविंद्रनाथ टैगोर जी की थी, इसको वर्ल्ड प्रीमियर के साथ जेकब राजन जो हैं अवार्ड विनिंग परफॉर्मर लेकर आ रहे हैं एट द क्यू थिएटर, और ये 20 जून तक है। अपनी टिकट्स खरीदिए iticket.co.nz के जरिए, जल्दी जाइए। कुछ फन फैक्ट्स, कुछ अच्छी बातें, आप थिएटर में जाके अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस ये पा सकते हैं। एक 5 साल की बच्ची और एक माइग्रेंट की कहानी, आई एम श्योर आप रिलेट कर पाएंगे, जहाँ पे लाइव ओरिजिनल म्यूजिक, डांस,

0: शिकार।
1: वाह,
2: हाउ
1: अद्भुत।
3: बात तो वैसे अद्भुत ये है कि ऑप्टिमिज्म जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये ऑप्टिमिज्म जो है ये शीप फार्मर्स में आ रही है, क्योंकि ग्लोबल शॉर्टेज हो चुकी है जहाँ पे प्राइसेस ऑफ वूल एंड मीट जो है ये बूम पर हैं समय। तो हॉक्स बे ने वेलकम किया आफ्टर डेवलपमेंट, आफ्टर फाइनल फाइनेंशियल स्ट्रगल ऑफ द इंडस्ट्री। एक वजह से पता चल रहा है दैट अभी इस समय इन डिमांड वूल काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, सो विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई थिंक हमारी इकोनॉमी में बहुत फ़र्क भी पड़ सकता है। चलिए इसी बात पर एक ठहाका लगा लेते हैं, हंस लेते हैं, क्योंकि आपको हंसाने के लिए आ रहे हैं नन अदर देन 18 जुलाई के दिन कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर। ये आपके लिए लाइव आ रहे हैं पहली बार, और इन्हें आपने शायद कपिल शो में देखा है और ग्रेट कॉमेडी नाइट, पता नहीं कहाँ का, तो ग्रेट कॉमेडी नाइट आपके लिए रही है बाय नन अदर देन ट्राई विजन इवेंट्स। और ये पहली बार है जब ये दोनों परफॉर्म करने वाले हैं आपके लिए हमारी सुपर सिटी में विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में। bookmyevent.co.nz के जरिए आप जाके टिकट खरीद सकते हैं। अगर खरीदने के अलावा आप कुछ जीतना चाहते हैं, हमारे फेसबुक के पेज पर जाएं, अपना फन साइड दिखाएं, हमारे पोस्टर पे कैप्शन करें उसको और पोस्ट कर दीजिए, हो सकता है आप डबल पास जीत जाएं। तो चलो यहाँ बहुत ही इजी हो गया आपके लिए जीतना। और अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ फाइनेंशियल चेंज आपके लिए चैलेंज बन रहा है, तो आप धर्मेश्याम से बातें करें 0210-432-720 पर, और आपके लिए शायद आफ्टर पे के ऑप्शन वो तैयार कर सकते हैं।
4: 80s के रेट्रो गाने

0: या रॉक एंड रोल? Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
3: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.
4: Flooring Extra. Adore your floor.
5: It's cold outside and the couch is on your mind.

0: Eat better, live better.
1: Rescue me, recycle me.
2: रेस्क्यू में रिसाइकल में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ दैट कभी कभी हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि हम क्या करें इनका. तो जैसे कि कपड़े, अगर मैं कपड़ों की बात करती हूँ तो कोई वेयरेबल क्लोदिंग है आपके तो आप उनको डोनेट कर सकते हैं चैरिटीज़ जो यहाँ पर हैं और फिर उनको वो रिसाइकल करके आगे बेच देते हैं. अगर वो टॉन है या फिर अनयूजेबल गारमेंट्स हैं तो इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं जहाँ पे रिटेल में टेक बैक स्कीम होती है. एक टेक बैक स्कीम होती है, यह स्पेशलिटी टेक्सटाइल होता है रिसाइकलर्स, उन तक भी अगर आप इसे पहुंचाएंगे तो समझ लीजिए इट विल हेल्प यू आउट. तो चलिए ये दो तीन चीज़ें जो थी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बता दी हैं, लेकिन अभी के लिए ये दिल से दिल तक का प्यारा सा गाना.
0: दिल से दिल तक.
2: याद रहे माँ दुर्गा टेम्पल ऑनस्लो एवेन्यू में 20 तारीख को होने वाला है माँ भगवती जागरण. ज़रूर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं. एंड साथ साथ आपको बता देती हूँ कि न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए श्री राम लीला लेकर आ रहे हैं. मास्टर अशोक से संपर्क करें इफ़ यू वांट टू जॉइन द टीम ऑन 021-179-5459 पर.

0: brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
1: I hope I'm pronouncing it right, but Telemundo's FIFA World Cup kick-off किया, एक स्कोर किया उन्होंने गोल जो कि एक व्यूअरशिप जो है वहाँ पे रिकॉर्ड शाटर कर दिया. तो नेटवर्क स्पैनिश लैंग्वेज कवरेज के हिसाब से ओपनिंग गेम विच वॉज होस्टेड नेशन मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका में एक हिस्ट्री बनी विद मल्टीपल फ्रंट्स, जहाँ पे इट वॉज द मोस्ट वॉच्ड फीफा वर्ल्ड कप ओपनिंग गेम एवर रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज एंड द मोस्ट वॉच्ड मेन्स गेम इन स्पैनिश लैंग्वेज in television history. Throwback. तो चलिए इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है बुधवार, यानी कि हमवार. मेरी मुलाकात आपसे होगी वो दिन कहलाएगा गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार. अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में सभी को याद रखिएगा. अभी के लिए चलती हूँ. कल सुबह 10 बजे कशिश फूड्स की ओर से माई टाइम लेकर मैं फिर हाजिर जाऊँगी. दिस इज़ काशिका साइनिंग ऑफ. कमिंग अप नेक्स्ट इज़ नन अदर दैन केतन इन लंच बॉक्स. इनका साथ दीजिएगा.